0: आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

जी हाँ, दुख की रात कितनी भी लंबी हो, अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का उजाला किसी के रोके नहीं रुकता और उस अंधेरे को एक पल में मिटा देता है। कल क्या हुआ था उसे रात के अंधेरे के साथ ही छोड़ दीजिए। आज एक नई शुरुआत का दिन है, क्योंकि जिंदगी जो है ना, जिंदगी सिर्फ महज एक जिंदगी का सफर नहीं है, ये सुहाना सफर है और इसे बनाना आपके हाथों में है।

एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की तीसरी तिथि, तदनुसार 24 मई सन 2026। प्रातः के 5:57 होने को हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

0: FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने को है। अब अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से। दिल्ली से आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयास

0: के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के लिए नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। श्री गोयल की यात्रा के दौरान बातचीत का और दौर ओटावा में आयोजित किया जाएगा। दोनों पक्ष इस वर्ष के अंत तक एक संतुलित और आपसी हित के समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामलों से जुड़े 5वें उपकार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जन सूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतहर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। वंदना में सबसे पहले जननी जन्मभूमि मातृभूमि को नमन।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में ये मातृवंदना। इस मातृवंदना के बाद आइए करते हैं प्रभु चरणों में नमन। इस भक्ति रचना के साथ संत मीराबाई की रचना को स्वर दिया है लता मंगेशकर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह और साथियों के स्वर में संत सूरदास जी की ये रचना। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी का प्रसारण और कार्यक्रम है वंदना। अगला भक्ति गीत सुनिए।

श्रोताओं, अभी आपने सुना हरिओम शरण के स्वर में ये भक्ति गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये है कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: इसी भक्ति रचना के साथ कार्यक्रम वंदना अब यही संपन्न होता है। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। समय हुआ है कार्यक्रम चिंतन का। आज का चिंतन केंद्रित है विषय नेकी कर दरिया में डाल। चिंतक हैं श्री अनिल मुंशी।
1: बहुत पुरानी कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। इसका मतलब साफ है कि आप नेकी जरूर करें, पर किसी प्रकार का बदला अपनी नेकी के लिए न चाहें। नेकी एक बहुद्देशीय विशाल शब्द है। ये संसार बहुत उम्दा दिखाई देता है, मगर इस संसार में मनुष्य के लिए इस दुनिया के मजे लेना बहुत समय तक नहीं मिल पाते। दुनिया बेइंतहा हसीन है, मगर इसके हुस्न को देखने वाली आंखें बहुत जल्दी बुझ जाती हैं। इसलिए हर धर्म ये कहता है कि इससे पहले कि हमारी आंख इस संसार में बुझ जाए, कोई नेकी का काम कर लो। हम अक्सर अपने बुजुर्गों से सुनते हैं कि भाई कुछ ऊपर के लिए भी छोड़ जाओ। उनका आशय ये होता है कि संसार में कुछ नेकियां कर जाओ। अब नेकी का गणित लगाएं तो नेकियां कई प्रकार की होती हैं। जैसे सड़क पर कोई पत्थर पड़ा है और आपके दिल में ये ख्याल आया कि कोई गाड़ी या कोई पैदल चलने वाले को इस पत्थर से ठोकर लग सकती है, आपने वो पत्थर हटा दिया, ये भी नेकी है। किसी अंधे को रास्ता पार करा दिया, ये भी नेकी है। भूखे को खाना खिला, ये भी नेकी है। किसी अंधे को रास्ता पार करा दिया, ये भी नेकी है। भूखे को खाना खिलाना, कर्जदार का कर्ज अदा करना, पड़ोसी का ख्याल रखना, दो लड़ने वालों में सुलह करा देना, किसी गरीब यतीम बच्चे की मदद करना, देश से प्रेम करना, देश के लिए उसके विकास के लिए कार्य करना, ये सब नेकी है। कोई आपस में झगड़ने पर उतारू है तो उससे न झगड़कर उससे नरमी से पेश आइए, ये भी नेकी है। ईसा मसीह के जीवन की एक घटना याद आ रही है। एक बार एक आदमी ईसा मसीह के पास आया और उनसे कुछ सवाल करने लगा। ईसा मसीह ने उसका अच्छा उत्तर दिया, मगर वो आदमी आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और उनसे झगड़ने पर उतारू हो गया। मगर वो जिस कदर ईसा मसीह को बुरा भला कहता, ईसा मसीह उसकी प्रशंसा करते। इसी समय ईसा मसीह का एक दोस्त आ गया और बोला, जनाब आप ये क्या कर रहे हैं? वो आपसे बदतमीजी कर रहा है और आप उस पर मेहरबानी कर रहे हैं? ईसा मसीह ने कहा, मुझे उसके दुर्व्यवहार की कोई चिंता नहीं और ना मुझे उसके दुर्व्यवहार से कोई फर्क पड़ने वाला है, मगर मेरे अच्छे व्यवहार और सत्य वचन को सुनकर वो कुछ ना कुछ शिक्षा जरूर प्राप्त कर लेगा और हो सकता है कि वो सुधर जाए, ये मेरे लिए नेकी होगी। किसी चट्टान की मिट्टी पर की जाने वाली खेती केवल दिखावे की खेती होती है, जरा सा पानी पड़ा और सब खेती धुल गई। इसलिए कहा जाता है कि नेकी सच्चे दिल से करो। दिखावे के लिए या शोहरत के लिए नेकी बिल्कुल ऐसी है जैसे सैलाब का एक झटका सब कुछ अपने साथ बहा ले जाता है और मनुष्य के हाथ कुछ नहीं आता। एक सच्चा आदमी जो नेकोकार होता है, वो हर प्रकार की नकारात्मक सोच से बहुत ऊपर उठ जाता है। उसके मन में दूसरों के लिए भलाई और नेकी करने के अलावा कुछ नहीं होता। जैसे ही नेकोकार आदमी की किसी दूसरे आदमी से मुलाकात होती है तो वो आगे बढ़कर उससे नमस्कार या सलाम कर लेता है। इसका मतलब ये है कि वो उस व्यक्ति की भलाई चाहता है। जब ऐसा नेकोकार आदमी किसी से वार्तालाप करता है तो बहुत नरमी से बात करता है। नेकोकार आदमी किसी से ऐसा वादा नहीं करता जिसको वो पूरा ना कर सके। अगर किसी के ऊपर एहसान किया तो वो अपने एहसान का ताना नहीं देता और ना ही एहसान को जताता है। छोटों से हमदर्दी करता है और बड़ों का अदब करता है। सच्चा नेकी करने वाला वही व्यक्ति होता है जो कमजोरों पर जुल्म न करे और ताकतवर के सामने अपना सिर कभी न झुकाए, यही नेकी है।
0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन केंद्रित था विषय नेकी कर दरिया में डाल। चिंतक थे श्री अनिल मुंशी। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी का प्रसारण। समय है श्री रामचरितमानस के गायन पाठ का। गायक सर सुरेश वाडकर के।

जब स्वयं उनके अपने मन में संशय उत्पन्न हुआ था। प्रभु की ये बाण अर्थात अभिलक्षण है कि वे अपने भक्त के मन में अभिमान नहीं पनपने देते, और यदि ऐसा होता देखते हैं तो वैसा ही उपचार करते हैं जैसे एक माता अपने शिशु की पीड़ा की परवाह न करते हुए उसका घाव चिरवा देती है। काकभुशुंडी को ये सौभाग्य प्राप्त है कि जब जब प्रभु मनुष्य रूप धारण करते हैं तब तब वे अवधपुरी जाते हैं। वहां श्री राम जन्मोत्सव देखते हैं और 5 वर्षों तक वहां निवास करके श्री राम की बाल लीलाएं देखने का आनंद प्राप्त करते हैं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस का गायन पाठ, गायक सर सुरेश वाडकर की थी। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी का प्रसारण। समय हुआ है कार्यक्रम कृषि सहमाइकी का, टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग, इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं श्री पुष्पेंद्र सिंह।
1: नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं हमारे शिवपुरी जिले में टमाटर एक प्रमुख सब्जी वाली फसल है जो खरीफ सीजन में लगाई जाती है और ये लगभग 7 से 8 महीने तक चल जाती है यहाँ। तो इस एक लंबी अवधि वाली फसल होने के नाते इसमें जो उर्वरक प्रबंधन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अन्य

0: विषयों के साथ, जैसे आपको कीट प्रबंधन, रोग प्रबंधन या जल प्रबंधन करना रहता है, उसी तरह उर्वरक प्रबंधन भी बहुत आवश्यक विषय है। और इसके लिए किसान भाई एक तो अपनी मिट्टी का नियमित जांच करवाते रहें, उसमें जो पोषक तत्व की उपलब्धता है और उसका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य का मतलब है कि उसमें कार्बन की उपलब्धता है, इससे पीएच मान है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या विद्युत चालकता है, वो इस सब चीज़ों को भी समय समय पर जानकारी लेते रहें किसान भाई, जो मृदा परीक्षण के माध्यम से जाना जा सकता है या उसकी जानकारी रखी जा सकती है। लेकिन सामान्य एक जो रिकमेंडेशन है, टमाटर में 100-50-50 का एक रिकमेंडेशन आता है जो एनपीके का होता है। इसके अलावा एनपीके के अलावा उसमें और कई महत्वपूर्ण जो दूसरे तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, उनकी भी आवश्यकता होती है, जिनके अभाव में फल में विकृतियां या कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं। तो इसलिए आवश्यक है कि किसान भाई मृदा परीक्षण करवा के अपनी मृदा की जांच जो रिपोर्ट है उसको रखें और जानकारी रखें कि उसमें किन पोषक तत्वों की उपलब्धता है, किन की कमी है और कैसा है, उसी के अनुसार जो हम ना पोषक तत्वों का जो प्रबंधन करें। तो जैसे हम देखते हैं कि अगर आप एक संतुलित प्रयास करते हैं या समन्वित उर्वरक प्रबंधन का प्रयास करते हैं, तो उसमें जो जैविक खाद है उसका भी प्रयोग करें, जो मृदा के स्वास्थ्य को सुधारता है और कार्बन के तत्व को बढ़ाता है मिट्टी में। उसके कारण जो है ना, बहुत सारे जो सूक्ष्मजीवी गतिविधियां हैं वो बढ़ जाती हैं और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनका उपलब्धता को भी बढ़ाते हैं। तो जो कार्बन तत्व है उसका ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, और ये टमाटर की बात कर रहा हूँ, लेकिन टमाटर के अलावा जो भी फसल है, सभी फसलों के लिए आवश्यक होता है कि हमारी जमीन में कार्बन तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, यानी 0.5 से ऊपर होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। और ये समस्या देखी जा रही है कि वर्तमान में कई जमीनों में, कई खेतों में जो कार्बन की मात्रा है 0.5% से कम हो रही है, तो एक समस्या है। तो टमाटर में भी इसको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके अलावा देखना पड़ेगा कि जैसे टमाटर की फसल होती है वो उसकी 2-3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। जैसे सबसे पहले टमाटर को हम नर्सरी तैयार करते हैं या नर्सरी क्रय करते हैं, मान लीजिए कि हम खुद स्वयं अपनी तैयार कर रहे हैं, तो एक पहली अवस्था हो गई। यहाँ जो है लगभग, अगर हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, जो कम ग्रेड के फर्टिलाइजर होते हैं, जैसे 10-10-10 या 5-5-5, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की कम मात्रा होती है, उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रारंभिक अवस्था में है पोषक तत्वों की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो इस तरह से कम रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो वृद्धि अवस्था आती है। वृद्धि अवस्था का मतलब होता है ट्रांसप्लांटिंग करने के बाद जो फ्लावरिंग अवस्था आने तक की जो अवस्था होती है, ये इसमें सबसे ज्यादा जो ऊपर का विकास होता है वैसे ही जमीन के अंदर जड़ों का विकास होता है। तो जड़ों के विकास की अवस्था में जो फास्फोरस तत्व होता है उसका पर्याप्त मात्रा में होना आवश्यक होता है। तो किसान भाई जिस भी तरीके से हम फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से जिसे केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, तो जो बेसल उपयोग करते हैं जब फसल लगाते हैं उस समय देते हैं, या टॉप ड्रेसिंग करते हैं, या कि आप जैसे हाईटेक एग्रीकल्चर में जा रहे हो, जैसे आपने ड्रिप करवा रखी है, मल्चिंग करवा रखी है, तो ड्रिप के माध्यम, वेंचुरी के माध्यम से भी हम फर्टिलाइजर देते हैं। तो देखें इस अवस्था में जो है ना फास्फोरस की पर्याप्त मात्रा जानी चाहिए, जिससे जड़ों का अच्छा विकास हो, और जब जड़ों का विकास अच्छा होता है तो पौधे का विकास भी अच्छा होता है। उसमें उसके बाद की जो गतिविधियां हैं फसल की, जैसे फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और ये सब चीजें, तो अच्छा होता है। लेकिन इसके बाद जब तीसरी अवस्था आती है कि फ्लावरिंग और फ्रूटिंग मैच्योरिटी, जब फल की वृद्धि होती है, उस अवस्था में पोटाश की आवश्यकता ज्यादा होती है। देखें जैसे मिट्टी में जितना पोटाश है उसके हिसाब से टमाटर को पोटाश ज्यादा लगता है, तो पोटाश की कमी नहीं होनी चाहिए, इससे जो है ना आपके फल ज्यादा बनेंगे, अच्छे बनेंगे और उसमें चमक शाइनिंग रहेगी, उससे आपको बाजार में कीमत भी अच्छी मिलेगी। इसके अलावा जो अन्य मुख्य पोषक तत्वों के अलावा जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, उसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और बोरान, ये तीन तत्व भी होते हैं जो टमाटर के लिए आवश्यक होते हैं। और अगर ये आपकी मिट्टी परीक्षण में जानकारी है कि इन पोषक तत्वों की कमी है, तो सूक्ष्म पोषक तत्व जो मिक्सचर आते हैं बाजार में मिल जाते हैं, उनका उपयोग भी आप ड्रिप के माध्यम से कर सकते हैं, या स्प्रे भी किया जा सकता है इनका, जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनका फोलियर एप्लीकेशन भी किया जा सकता है। इससे आपकी फसल जो है ना स्वस्थ बनी रहेगी और उसमें फल भी अच्छे लगेंगे, जिसकी मार्केट में कीमत अच्छी मिल सकती है।
1: श्रोताओं, अभी आप कार्यक्रम कृषि सामयिकी में जानकारी ले रहे थे टमाटर में संतुलित उर्वरक उपयोग। इस विषय पर आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई श्री पुष्पेंद्र सिंह ने। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण, जानिए आज यानी 24 मई 2026 को प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रम की संक्षिप्त सी रूप।

0: श्रोतो, अब से कुछ ही देर बाद यानी कि सुबह 7:05 पर राष्ट्रीय एकता पर होगी लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा। फिल्म संगीत का आनंद ले सकते हैं आप सुबह 7:20 पर और सुबह 10:30 पर। फरमाइशी फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर और सुबह 9:20 पर। सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी रोज की तरह आप सुनेंगे सुबह 7:45 पर। बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा होगा सुबह 9:00। जरूरी चर्चा के विषय रहेंगे भारतीय संस्कृति में गंगा दशहरा का महत्व, ग्रीष्म अवकाश छुट्टियों के लिए नहीं वरन सीखने का अवसर, मोबाइल पर नहीं हकीकत से खेलें, और एक वार्ता सुनवाएंगे बच्चों के लिए कि ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग कैसे करें। सुबह भोपाल से अनुप्रसारित कार्यक्रमों में सुबह 10:00 जिले की चिट्ठी का अनुप्रसारण किया जाएगा। सुबह 11:00 से आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम आप सुनेंगे भोपाल केंद्र से ही। इनमें प्रमुख कार्यक्रम है, दिन में 1:00 होगा महिला कार्यक्रम, 1:00 रहेगी श्रीमती मोनिका चतुर्वेदी की। जरूरी चर्चा के विषय रहेंगे दुनिया में शांति सद्भाव और एकता का प्रतीक राष्ट्रमंडल, सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हमारे त्योहार गंगा दशहरा, अपनी क्षमता खुद पहचाने और इसे करियर बनाए, माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातें, और सुबह 1:30 पर लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे। सुधीर बाबू पांडे होंगे आज के कलाकार। दिन में 1:45 पर सुगम संगीत कलाकार रहेंगे बद्री प्रसाद नागर, और शाम 5:00 युववाणी का अनुप्रसारण किया जाएगा। ये भोपाल केंद्र से ही अनुप्रसारित होगा। जरूरी चर्चा के विषय रहेंगे गर्मी में लू से बचाव करें, मारखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातों का पालन करें, सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें। ये सभी कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति रहेगी। शाम 7:21 पर होगा ग्रामीण कार्यक्रम चौपाल। तो ये थी जानकारी आज की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित कार्यक्रमों की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने को है अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम्। प्रवाचकः दिव्यानंद झा। अथ वार्ताः। नवदिल्ल्यां हैदराबाद हाउस स्थले अद्य विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अमेरिका देशीयेन विदेश सचिवेन मार्को रूबियो इत्यनेन समं द्विपाक्षिक संवादं करिष्यति। एतौ क्षेत्रीय वैश्विक शांति सुरक्षा संबद्धान विषयान समेत्य अनेकेषु भिन्न विषयेषु चर्चां करिष्यतः इति आशास्ते। अमेरिका विदेश मंत्री गतदिने प्रातः 4-दिवसीय यात्रा प्रसंगे भारतं संप्राप्तः। द्विपक्षीय संबंधान सुदृढीकर्तुं अपि च वाणिज्य रक्षोर्जा सुरक्षा प्राविधिकी हिंद प्रशांत व्यूह रचने इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहयोग विस्तारार्थं तस्य ईशा भारत यात्रा नितरां महत्वाधायिनी वर्तते। गतवासरे सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह भारतामेरिका व्यापक वैश्विक रणनीति संधिं सुदृढयितुं चर्चाम् अकरोत्।

0: प्रधानमन्त्री कार्यालयस्य विज्ञप्त्यनुसारि अमेरिका विदेश मन्त्रिणा रक्षा प्राविधिकी व्यापार निवेशोर्जा सुरक्षा सम्पर्क शिक्षा पारस्परिक जनसम्बन्धादिषु विविध क्षेत्रेषु द्विपक्षीय सहयोगस्य निरन्तर प्रगतेः विषये प्रधानमन्त्री संसूचितः। अस्मिन् अवसरे श्रीमोदी शान्ति प्रयासेभ्यः भारतस्य सतत समर्थनं पुनरुदीरितवान् अपि च सम्भाषण कूटनीति माध्यमेन विवादानां शान्तिपूर्ण समाधानाय पुनरेकदा आह्वानं कृतवान्। वाणिज्योद्योगमन्त्री पीयूष गोयलः अद्यारभ्य भारतीय व्यापार नेतॄणाम् एकेन प्रतिनिधिमण्डलेन सह कनाडादेशस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। वाणिज्य मन्त्रालयेन सूचितं यत् श्रीगोयलः व्यापार निवेश भारत कनाडा व्यापकार्थिक सहभागिता वार्तालापं प्रवर्तयितुं ओटावा टोरंटो नगरयोः द्विपक्षीय समागमं करिष्यति। संसदीय कार्यसूचना प्रसारण राज्यमंत्री एल मुरुगुनः अवदत् यत् प्रशासनं 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति स्वप्नं साकारयितुं प्रतिबद्धमस्ति। चेन्नईस्थिते आईसीएफ इति संस्थाने आयोजितं आजीविका मेलनं सम्बोधयन् सः उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः नेतृत्वे देशः आधारभूत संरचना विकासे वृत्त्यवसराणां वृद्धौ व्यापार सुगमतायां च तीव्रगत्या प्रगतिं करोति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। भारतीयर्तु विभागेन अद्य पूर्वीयोत्तरप्रदेशाय पूर्वीय मध्यप्रदेशाय विदर्भाय च अतितापपरा रक्तवारणिकी सञ्चेतना प्रसारिता। भारतस्य उत्तरपश्चिमीय मध्य पूर्वीय दिग्विभागेषु कतिपयक्षेत्रेषु समाना एव स्थितिः आगामि 7 दिवसपर्यन्तं भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। अन्ते क्रीडावार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रो लखनऊ नगरे इकाना क्रिकेट क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे श्रेयस अय्यरेण अर्जितानां एकोत्तर शत धावनांकानां बलेन पंजाब किंग्स दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 7 क्रीडकैः पराजितम्। क्रीडान्ते अय्यरः स्पर्धा पुरुषः घोषितः। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं मुंबय्याम् अपराह्णे 3:30 मुंबई इंडियंस दलं राजस्थान रॉयल्स दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं कोलकातायां कोलकाता नाइट राइडर्स दिल्ली कैपिटल्स दलयोः द्वंद्वं भविष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमरीका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को होगी। बैठक में विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
2: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में बोइंग कंपनी के वैश्विक लोक नीति और व्यावसायिक रणनीति के कार्यकारी उपाध्यक्ष जेफ शौकी से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने विमानन और अंतरिक्ष निर्माण क्षेत्र में भारत अमेरिका सहयोग को आगे बढ़ाने के उपायों पर चर्चा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा के 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे जिसका उद्देश्य व्यापार निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर बातचीत को आगे बढ़ाना है। इस समझौते के नियम और शर्तें इस साल मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भारत यात्रा के दौरान तय की गई थी। दोनों देशों का साझा लक्ष्य वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर 70 अरब कैनेडाई डॉलर तक पहुंचाना है। भारत रूस सैन्य तकनीकी सहयोग पर अंतर सरकारी आयोग के अंतर्गत भूमि मामले से जुड़े 5वें उप कार्य समूह की बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। रक्षा मंत्रालय के अपर जनसूचना महानिदेशालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों ने ऑपरेशनल तालमेल और द्विपक्षीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से सार्थक विचार विमर्श किया। प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा सहयोग के नए तरीकों की तलाश के लिए शत्रुजीत ब्रिगेड का भी दौरा किया। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति हितधारक संगठन या संस्था 21 जुलाई तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ एक वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में ये घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत ने विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ उतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। IPL क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हराया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से दोपहर 3:30 बजे से होगा। दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए राष्ट्रीय एकता पर लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा।

श्रोताओं, हमारा भारत देश विश्व के मानचित्र पर एक विशाल देश के रूप में चित्रित है। प्राकृतिक रचना के आधार पर तो भारत के अलग अलग रूप और भाग है। उत्तरी का पर्वतीय भाग, गंगा यमुना सहित अन्य नदियों का समतलीय भाग, दक्षिण का पठारी भाग और समुद्र तटीय मैदान। नदियों और पर्वतों के कारण ये भाग एक दूसरे से मिल नहीं पाते हैं। इसी प्रकार से जलवायु की विभिन्नता और अलग अलग क्षेत्र के निवासियों के जीवन आचरण के कारण भी देश का स्वरूप एक दूसरे से विभिन्न और अलग दिखाई देता है। इन विभिन्नताओं के होते हुए भी भारत एक है, ये बात हम सब

0: भी जानते हैं कि चंद्रगुप्त, अशोक, विक्रमादित्य, भारत के कई अनेक शासकों ने भारत को एक करने की कोशिश की। उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली। साथ ही हमारे देश का साहित्य, उसने भी सभी प्रकार की विभिन्नताओं और असमानताओं को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। ये साहित्य कोई एक भाषा में नहीं लिखा गया, अपितु ये देश की विभिन्न भाषाओं में होने के कारण मेल मिलाप का संदेश देता हुआ देशभक्ति की भावना को प्रबल करता है। श्रोताओं, विचारों की एकता सबसे बड़ी एकता होती है, इसीलिए ये साहित्य अलग अलग भाषा में होने के बाद भी सबके विचारों को एक करते हैं। हमारे देश की भाषा अनेक है, सभी भाषाओं को एक जैसा सम्मान मिला है। इन सभी भाषाओं से रचा हुआ साहित्य हमारी राष्ट्रीय भावनाओं से ही प्रेरित है। आज हम सब अलग अलग त्यौहार बहुत अलग अलग तरीके से मनाते हैं, हमारी मान्यताएं भी अलग होती हैं उन्हें लेकर, लेकिन फिर भी भाव एक ही होता है, प्यार का, भक्ति का, देशभक्ति का और भाईचारे का। श्रोताओं, प्राचीन काल से ही भारतीय धर्म और संस्कृति ने समग्र राष्ट्र को एक सूत्र में बांधे रखने का अनुपम प्रयास किया है। समस्त भारतीय धार्मिक संपदाओं का भारी रूप अलग अलग होते हुए भी उनकी आत्मा भारतीयता से परिपूर्ण है। यही कारण है कि देश में राष्ट्रीय एकता का स्वरूप आज भी कायम है। भारत देश लोकतांत्रिक देश है, जहां प्रत्येक धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र एवं प्रदेश के व्यक्ति को समान रूप से अधिकार है अपने स्वयं के निर्णय लेने का। राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति हमारा प्यार ही हमें देश से और आपस में जोड़े हुए है, और यही वो देश प्रेम की भावना है जो हमारे वीरों में कूट कूट के भरी थी। उन्होंने न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई बनकर देश की रक्षा की, बल्कि एक भारतीय, एक हिंदुस्तानी बनकर, एकजुट होकर अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। उसे दुश्मनों के आगे कभी झुकने नहीं दिया। ये सबसे सटीक उदाहरण है हमारी देश की एकता का, और ये हमारे देश की एकता का ही प्रतीक है कि भले ही कई बुराइयों ने, अनैतिक शक्तियों ने हमारे देश को, हमारे देश की एकता को खंडित करने का दुस्साहस किया हो, परंतु हमारा देश ऊंचाइयों और बुलंदियों को छूता गया और आज विकासशील देशों की गिनती में गिना जाता है। श्रोताओं, किसी भी देश की उन्नति, उसका विकास निर्भर करता है उस देश की एकता पर। यदि देश में एकता और भाईचारे का वातावरण बना रहता है तो देश प्रगति करता है, खुशहाल बनता है। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा, FM बैंड 100.2 MHz पर। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को है। अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। त्रिषा शर्मा की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई। और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और जनमानस को आध्यात्मिक रूप से जोड़ने के लिए प्रत्येक नगर में

0: गीता भवन के निर्माण की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विकास कार्यों के साथ साथ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना का भी विस्तार हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कल सिंगरौली महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने सिंगरौली को प्रदेश का सबसे विकसित और आधुनिक शहर बनाने की घोषणा की।
1: हमने अपने बच्चों के प्रोत्साहन को देने के लिए उनके साथ भी समय बिताया। विकास के लगभग 550 करोड़ के अलग अलग कामों का लोकार्पण किया। 1000 करोड़ से ज्यादा के कामों की स्वीकृति सिंगरौली में हुई है। आने वाले समय में सिंगरौली सुव्यवस्थित शहर में सबसे अच्छा शहर बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं।
0: इससे पहले डॉक्टर यादव ने 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन भी मुख्यमंत्री ने किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पहले रक्षा उपकरणों का आयात करता था, लेकिन आने वाले कुछ समय में यह रक्षा उत्पादों का एक प्रमुख निर्यातक बनकर उभरेगा। उन्होंने कल महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सांवली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा।
2: सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोविड-19 की अवधि को छोड़कर विगत 10 वर्षों में इस वर्ष समर्थन मूल्य पर गेहूं का सर्वाधिक उपार्जन किया गया है। किसानों को अब तक उपार्जित गेहूं का 20,680 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ राज्य सरकार के चार्टर्ड विमान से भोपाल पहुंच गई। इससे पहले आरोपी समर्थ सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशमी पर कल प्रदेश में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राज्य शासन ने समस्त जिलों में गंगा दशमी पर्व पर आयोजित गतिविधियों एवं कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले मुख्य अतिथियों की सूची जारी की है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा में और अन्य मंत्री जिलों में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शिवपुर में भी कल गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में जिले भर में दीपदान, जल स्रोतों का पूजन, कलश यात्राओं के आयोजन के साथ रामेश्वर धाम त्रिवेणी संगम पर मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी जिले के ग्राम कसीहवा में शॉर्ट सर्किट से हुए एक हादसे में 3 बच्चों की मृत्यु की घटना पर शोकाकुल परिजनों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि

मृत बच्चों के परिजनों को राज्य सरकार की ओर से 6-6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला रेडक्रॉस सोसाइटी सीधी की ओर से परिजनों को 20-20 हजार रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता राशि दे दी गई है। वहीं रायसेन जिले के गैरतगंज तहसील के सागौर ग्राम में कल 3 बालिकाओं की कुएं में डूबने से मौत हो गई। वे गांव के पास एक कुएं पर नहाने गई थीं। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। अब रुख करते हैं खेल की खबरों का। रांची में 25 मई तक आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नितिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। नितिका ने 4.10 मीटर की शानदार छलांग लगाकर न केवल प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त किया बल्कि एशियन गेम्स 2026 के लिए निर्धारित क्वालिफाइंग मार्क भी हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उन्होंने 9 से 12 जुलाई तक ऑर्डोस चीन में आयोजित होने वाली प्रथम एशियन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने नितिका आकरे को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं आईपीएल में लखनऊ में खेले गए मुकाबले में कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स के 197 रन के लक्ष्य को पंजाब किंग्स ने 18 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 2:30 बजे और दूसरा मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले का नौगांव सबसे गर्म रहा, जहां पारा 46.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा खजुराहो में 46.4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। गुना जिले में भी गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां पर तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल में भेल दशहरा मैदान पर कल मशहूर संगीतकार एआर रहमान का लाइव कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। रहमान को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। खंडवा से होकर गुजरने वाली जयपुर और हैदराबाद के बीच चल रही स्पेशल ट्रेन को अब स्थायी साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित किया जाएगा। गुना के जिला पंचायत विश्राम गृह में 26 मई को युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा और इंदौर में 9 से 13 जून तक ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सरकार प्रदेश के हर जिले के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर। तुषार शर्मा की मौत के मामले का सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ करेगी सुनवाई और प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए 2:10 पर। नमस्कार।

एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सुना लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया फिल्म ममता का ये गीत। रोशन के संगीत से रोशन नर्म नाजुक बोल मजरूह सुल्तानपुरी की। जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हम आपको मजरूह साहब की कलम का जादू का असर आप देखेंगे। एक ऐसे अजीम शायर गीतकार जिन्होंने 6 दशक तक हिंदी सिनेमा को गुनगुनाना सिखाया। एक ऐसे शायर जो अदब की महफिलों से निकलकर जब सिनेमा की दुनिया में उन्होंने कदम रखा तो गीत लिखने की पूरी परिभाषा ही बदल दी। आइए मजरूह साहब के गीत लिखे गीतों का आनंद उठाएं।

हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए ऐ मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

0: पर यकीन अब कम सही हा, हा। मैं सादा दिल मुजरिम सही हा, हा। इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथ देखिए साहिब।
1: ये गाना था फिल्म तीसरी मंजिल से। नासिर हुसैन की इस फिल्म में और भी बहुत सारे मस्ती भरे प्यारे प्यारे गीत थे, ओ हसीना जुल्फों वाली और भी बहुत सारे गीत। और नासिर हुसैन, आर डी बर्मन और मजरूह सुल्तानपुरी की तिकड़ी 70 के दशक में भी कामयाबी की गारंटी बनी रही। फिर एक फिल्म आई यादों की बारात। इस फिल्म का एक गाना जिसमें

की पीढ़ी के लिए भी एक अजीब सा नशा और ताजगी है। गिटार उस आइकॉनिक इंट्रो धुन के साथ जब शुरू होता है तो हर कोई गुनगुनाने लगता है।

श्रोताओं, एक आधे घंटे या 25 मिनट का प्रोग्राम इतने बड़े शायर गीतकार के लिए बहुत कम समय है, लेकिन क्या करें, हमारे पास समय भी इतना है। लेकिन बने रहिएगा आकाशवाणी शिवपुरी के साथ। आगे और भी जो फिल्म संगीत के कार्यक्रम हैं, हो सकता है आपको वहाँ पर मजरू साहब की कलम का जादू सुनने को मिल जाए। उन्होंने साल 19 मजरू सुल्तानपुरी साहब को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया और वह ये सम्मान पाने वाले भारतीय सिनेमा के पहले गीतकार थे। साल 2000 में 80 वर्ष की उम्र में ईमान शायर इस फानी दुनिया को अलविदा कह गया और मजरू साहब अक्सर अपनी एक मशहूर शायरी कहा करते थे कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बनता गया। वाकई ही वे अकेले ही निकले थे, लेकिन अपने पीछे वे शब्दों और यादों का एक ऐसा विशाल कारवा छोड़ गए जो जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेगा, हमारे दिलों में गूंजता रहेगा संगीत के माध्यम से। और अब इसी गीत के साथ कार्यक्रम फिल्म संगीत से दीजिए अनुमति। नमस्कार। FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी।

कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों को मेरा यानी आपकी रेडियो साथी मोनिका का सस्नेही अभिवादन। नमस्कार श्रोताओं, आज का कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले बात शुरू करते हैं एक सुविचार से। श्रोताओं, जिंदगी में हमें अगर आगे बढ़ना है तो खुद की मेहनत करनी होगी। जी हाँ, और उसके लिए आज से ही शुरुआत करनी होगी। सफल लोग अलग नहीं होते हैं, बस उनकी आदत अलग होती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा सुधार करिए और आप स्वयं में एक बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। जो स्वयं को बदल सकता है वह अपनी किस्मत को भी बदल सकता है, और किस्मत कर्तव्य, लगन और अनुशासन से बनती है। हौसले बुलंद रखिए श्रोताओं और आगे बढ़ते रहिए। आज के इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे ही व्यक्तित्व का जिक्र करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन से अपनी किस्मत को चमकाया, अपने देश का नाम रोशन किया। बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला, जी हाँ, बचेंद्री पाल की, जिनका जन्म आज ही के दिन 24 मई 1954 में हुआ था। उनका जन्म नकुरी गांव उत्तराकाशी उत्तराखंड में हुआ। मेधावी और प्रतिभाशाली छात्रा थी। 23 मई सन 1884 में उन्होंने सुबह 1:07 पर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। वे दुनिया की 5वीं और महिला और भारत की पहली महिला एवरेस्टर बनी। उनके मिले सम्मान की बात करें तो उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 1994 में महिलाओं की पहली इंडियन हिमालयन एक्सपेडिशन की लीड की, और 1997 में महिलाओं के पहले राफ्टिंग अभियान को लीड किया हरिद्वार से कोलकाता तक गंगा नदी में। श्रोताओं, खास बात करें अगर तो माउंट एवरेस्ट चढ़ाई के दौरान 22 मई को कैंप 3 में बर्फ का तूफान आया था और कई पर्वतारोही घायल हुए, पर बचेंद्री पाल ने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन शिखर पर तिरंगा फहराया। आज वे युवाओं, खासकर लड़कियों को पर्वतारोहण के लिए ट्रेन करती हैं। और श्रोताओं, आज की तारीख याद दिलाती है कि बहुत ही कम उम्र के क्रांतिकारी की, जिन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में देश पर अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो शहीद हो गए देश की आज़ादी के लिए। शहीद आज़म भगत सिंह उनको अपना गुरु मानते थे। बात कर रहे हैं करतार सिंह साराभा की। साराभा लुधियाना पंजाब में उनका जन्म हुआ। 16 नवंबर को मात्र 19 साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी शहादत दी। अंग्रेजों को देश से भगाने के लिए गदर पार्टी से जुड़े पकड़े गए, जेल में बहुत सी यातनाएं दी गई उस नन्हे से कुमार को, पर देश के लिए उन्होंने कभी गद्दारी नहीं की और लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी पर लटक गए। भगत सिंह हमेशा अपनी जेब में उनकी फोटो रखते थे कि, और अगर कोई कहता था कि कौन है तो वो ये कहते थे कि मेरे उस्ताद हैं ये। ऐसे देश के वीरों को शत शत नमन। देश के लिए हमारी जो भावनाएं हैं वो हमें हमेशा यही कहती हैं कि हमें देश हित के लिए ही अपना हर कदम उठाना चाहिए। आज हम देश में रहकर अगर अपने देश हित के बारे में नहीं सोचते हैं तो ये बहुत गलत है। आज बहुत जगह से बहुत सारी बातें हमको सुनने को मिलती है, और अगर वो देश हित में है, होती हैं, तो उन पर अमल करना हमारा पहला कर्तव्य है। जैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया संकट के प्रभाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को बचाने और आत्मनिर्भर बनने के लिए 7 प्रमुख अपील की गई हैं। इन अपीलों का उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना और देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना है।
तो इन 7 अपील पर भी हमें अमल करना चाहिए ताकि हमारा देश रुके नहीं, थमे नहीं, बस बढ़ता रहे। अब ये 7 अपील क्या है? ये है वर्क फ्रॉम होम, यानी तेल की खपत और ट्रैफिक को कम करने के लिए कार्यालयों में ऑनलाइन मीटिंग्स और घर से काम करने को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोने की खरीद से बचे, विदेशी मुद्रा के संरक्षण के लिए कम से कम 1 वर्ष तक सोने या गैर आवश्यक आभूषणों की खरीदारी से बचे। पेट्रोल और डीजल बचाएं, निजी वाहनों का कम उपयोग करें और सार्वजनिक परिवहन यानी कि मेट्रो, बस, कारपूलिंग या इलेक्ट्रॉनिक वाहन को प्राथमिकता दें। कुकिंग ऑयल यानी कि खाना पकाने का तेल का उपयोग घटाएं, इससे आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा और तेल की खपत भी कम होगी। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ें, रासायनिक उर्वरक का जो हम निर्भर हैं उसको कम करें, जैविक या प्राकृतिक खेती को अपनाएं, स्वदेशी अपनाएं, विदेशी ब्रांडों की जगह वोकल फॉर लोकल का पालन करें और मेड इन इंडिया उत्पादन का उपयोग करें। विदेशी यात्रा से बचें, देश या देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचाने के लिए 1 वर्ष तक गैर जरूरी विदेशी यात्राओं से बचें। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 7 बातें हम तक पहुंचाई हैं, हर भारतीय का कर्तव्य है कि उनका जहां तक हो सके पालन करें।

और श्रोताओं, अब शिवपुरी क्षेत्र से जुड़ी कुछ खबरों पर नजर डालें हम। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आज किन जगह पर विद्युत प्रभाव बंद रहेगा। डाक बंगला उपकेंद्र अंतर्गत आने वाले 11 केवी भीड़ फॉर्म हीटर पर मेंटेनेंस का कार्य किए जाने के कारण 24 मई को उक्त फीडर से जुड़े क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय बंद रहेगा। उक्त 11 केवी भेड़ फीडर के बंद रहने से प्रातः 5 बजे से प्रातः 10 बजे तक माधव नगर, गणेश कॉलोनी, नवाब साहब रोड, पार्क वर्मा कॉलोनी, टोगरा रोड के पास, आईटीबीपी गेट के सामने, राइन मार्केट और विजयपुरम कॉलोनी के आसपास सभी क्षेत्र प्रभावित रहेंगे। साथ ही जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विजय राज जी की अध्यक्षता के गत दिवस खरीफ 2026 की तैयारी एवं रवि 2025-26 को लेकर कृषि एवं संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मत्स्य कृषि, अभियांत्रिकी और बीज निगम विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। और आपको बता दें आज मौसम की जानकारी, अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री रहेगा। तो थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए, घर से निकलते हुए थोड़ी सावधानी, पानी की बॉटल साथ लेके निकलें, अपने आप को पूरा ढक कर निकलें। और आज हम आपको बता दें कि आज एक वैश्विक मंच और एक ऐसे विशेष दिवस के बारे दुनिया जान रही है जो इतिहास, संस्कृति को साझा मूल्यों के अनूठे धागों में पिरोता है। आज है राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे। तो इन सब जानकारियों के बाद अब जो घड़ी है वो हमसे कह रही है कि अब हमें कार्यक्रम समेटना होगा। तो कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी से दीजिए अनुमति। नमस्कार श्रोताओं।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने को है अगला प्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाए।

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना जुलाई से लागू होगी, स्वास्थ्य साथी योजना के लाभार्थी भी इसमें शामिल होंगे। महाराष्ट्र विशेष जांच दल ने नाशिक टीसीएस दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ समझौते पर काफी हद तक सहमति बनी, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलना भी शामिल। मौसम विभाग ने दिल्ली सहित उत्तरी, मध्य और पूर्वी भारत में आज भीषण लू की आशंका व्यक्त की। और गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों सहित कई विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्री रूबियो कल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए 4 दिन की यात्रा पर भारत पहुंचे।
3: क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को होगी। बैठक में विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड की परिकल्पना के अनुरूप प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में क्वाड की वर्तमान पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी और हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों तथा आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
2: श्री रूबियो ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, व्यापार और निवेश तथा ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक कल्याण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की बात दोहराई और बातचीत तथा कूटनीति के जरिए संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील को दोहराया। विदेश मंत्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर अमरीकी दृष्टिकोण साझा किया। उन्होंने भारत को अमरीका का अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदार बताया। इस बीच श्री रूबियो ने कहा है कि अमरीका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में अमरीकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमरीका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
4: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
2: पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना इस वर्ष जुलाई से शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के साथ वर्चुअल बैठक के बाद कल कोलकाता में इसकी घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य योजना स्वास्थ्य साथी के अंतर्गत मौजूदा लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया जाएगा। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर के संबंध में अगले महीने सहमति पत्र पर नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या मौजूदा 117 से बढ़ाकर 469 करने के संबंध में केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अलीपुरद्वार, कालिम्पोंग और दक्षिण दिनाजपुर जिलों में नए मेडिकल कॉलेज खोलने और उत्तर बंगाल के लिए एक नए एम्स के प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना के साथ साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा पेशेवरों का प्रशिक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान बोर्ड के 23वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में स्वस्थ भारत की परिकल्पना विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने में प्रमुख भूमिका निभाएगी।
3: हम सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में 2047 तक विकसित भारत बनाना है। जब हम 2047 तक विकसित भारत की बात करते हैं तो स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि जब हम स्वस्थ होंगे तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
2: सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
5: विकसित भारत जी रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। नए कानून में मजदूरी का भुगतान समय पर पारदर्शी और जवाबदेही के साथ करने पर विशेष जोर दिया गया है। इसके अलावा तय समय के भीतर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया है। वीबीजी रामजी एक्ट 2025 को इस महीने की

0: 11 तारीख को अधिसूचित किया गया था और यह इस साल 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने TCS कंपनी के एक केंद्र से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि कल 4 आरोपियों मतीन पटेल, निदा खान, दानिश शेख और तौसीफ अतर के खिलाफ अभियोग पत्र दाखिल किया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में अगले कुछ दिन में 7-8 अन्य आरोपियों के खिलाफ अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल से बातचीत के बाद ईरान के साथ एक समझौते पर काफी हद तक सहमति बन चुकी है। उन्होंने कहा कि समझौते में होर्मुज जल डमरू मध्य खोलना भी शामिल है। एक रिपोर्ट।
4: श्री ट्रंप ने कहा कि समझौते के अंतिम पहलुओं और विवरणों पर चर्चा जारी है, शीघ्र ही इसकी घोषणा की जाएगी, लेकिन उन्होंने समझौते की समय सीमा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि समझौते के बारे में इसराइल के साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन से बात की गई है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने अमरीकियों पर विरोधाभासी बयान देने का आरोप लगाया। अमेरिका और ईरान के बीच 8 अप्रैल को युद्ध विराम पर सहमति बनी थी और तब से दीर्घकालिक शांति समझौते के लिए बातचीत जारी है। अमेरिका द्वारा ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी के कारण ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद कर दिया है। समझौते को लेकर मुख्य रुकावटें ईरान के परमाणु कार्यक्रम के भविष्य और होर्मुज जल डमरू मध्य पर उसके प्रभाव तथा क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति से संबंधित रही है। समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा।
1: अमेरिका में व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी की घटना हुई है। घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इस बीच सीक्रेट सर्विस ने घटनास्थल के पास ही एक संदिग्ध व्यक्ति को गोली मार दी। इस दौरान एक नागरिक भी गोली लगने से घायल हो गया। घटना के समय अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ही मौजूद थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल ओटावा, टोरंटो में द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और भारत कनाडा व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA पर चल रही बातचीत को आगे बढ़ाना है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में आज भीषण लू चलने की आशंका व्यक्त की है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों में भी ऐसा ही मौसम रहेगा। गुरविंदर सिंह ने रांची में फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने 10.09 सेकंड के नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ ये उपलब्धि हासिल की। गुरविंदर का पिछला कीर्तिमान 10.17 सेकंड था। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने 10.20 सेकंड के साथ रजत पदक जीता। प्रणव प्रमोद को 10.29 सेकंड के साथ कांस्य पदक मिला। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मैच दोपहर 3:30 बजे से मुंबई में खेला जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म के 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इस श्रृंखला में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण कल और सोमवार को 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर किया जाएगा। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल सुबह 9:10 से आकाशवाणी से जुड़े रहें। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरतनाज।
5: धन्यवाद।

श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला गीत आपने फिल्म क्रिमिनल से सुना। कुमार शानू और अलका याग्निक की आवाज इस गीत में। इंदिवर की रचना को संगीत से सजाया एमएम करीम ने, और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता साथी हैं सूरतगढ़ राजस्थान से नरेश वर्मा, भूपेंद्र सुथार, रोहिता शर्मा, श्रीपाल शर्मा, गुलशन मिघानी, कुंदन कटारिया, विकास पारिक और कमल पारिक। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से खत आया है गौरव, नताशा, नीलिमा, प्रगति, सुरेश और उनकी पूरी मित्र मंडली का। कमलागंज बाबू क्वार्टर के पीछे शिवपुरी से कन्हैया कुशवाहा, भारती कुशवाहा, ध्रुव, सोनम, गगन, अशोक, दुर्गेश और सुरेंद्र सागर का खत भी इसी गीत की फरमाइश के लिए था। बरेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, राजेश और अर्जुन ने ही इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई। काली माता मंदिर के पीछे करैरा से मनोज झा, मिथलेश झा, नैना, मोनू, विकास झा। शिवाजी चौक राजीम, छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव हमें खत लिख रहे हैं। अगला गीत हमने लिया है फिल्म फना से, आवाज शान और कैलाश खेर की है। इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंची है रिंगनी छत्तीसगढ़।

दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, दतरेगी से भगवत वर्मा, पुणे से अर्चना सानेकर, उनका पूरा परिवार।

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फना का ये गीत। कैलाश खेर और शान की आवाज, प्रसून जोशी की रचना, जतिन ललित का संगीत। और भी गीत हैं आपकी पसंद के, फिलहाल एक अंतराल आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
1: बोल बोल के थक गया।

0: नया किडबैग चाहिए।
1: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
0: चले ले आ गया नया किडबैग।
3: RBI कहता है
4: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: और इस अंतराल के बाद हम उन श्रोताओं की पसंद का गीत सुनवा रहे हैं जिन्होंने फिल्म पद्मावत का ये गीत सुनना चाहा है। नीति मोहन की आवाज़ है, सिद्धार्थ गरिमा ने लिखा है, संजय लीला भंसाली की ये धुन से सजा हुआ गीत है। आइए पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम बता देते हैं। गणेश कॉलोनी शिवपुरी से कालीचरण ओझा, उषा शुभम, कुमकुम, शिवानी, हरिओम, गुड्डी, रितेक, ऋतु, हर्षित, दिनेश और बबीता ओझा। सूरतगढ़ थर्मल राजस्थान से सौरवी भवित्यम, स्मृति जोशी ने इस गीत की फरमाइश के लिए खत पहुंचाया है। कोटा राजस्थान से हरिओम शर्मा, कविता शर्मा और प्राहिता शर्मा। न्यू ब्लॉक शिवपुरी से सौरभ गौड़, आकांक्षा गौड़ और इशिता गौड़ ने इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। एक खत और नजर आ रहा है, ये है अंबिकापुर रायगढ़ से चरणजीत कौर, नैना गुप्ता, इन्होंने भी इसी गीत की फरमाइश के लिए हम तक अपना खत पहुंचाया है। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से अपनी ही पसंद के कुछ फिल्मी नगमे और भी गीत हैं आपके लिए। फिलहाल एक अंतराल आते हैं, एक बार फिर से कहते हैं कहीं जाइएगा नहीं।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: किसे?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो आ जाइए संतराल के बाद, अब हम उन श्रोताओं की पसंद का गीत सुनवा रहे हैं जिन्होंने फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का गीत सुनना चाहा है। सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाज़ है इस गीत में, गरिमा वाही और सिद्धार्थ सिंह ने इस गीत को लिखा है, विकी प्रसाद का संगीत। फरमाइशी नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले गीत सुन लीजिए, उसके बाद।

श्रोताओं, अभी आप जो गीत सुन रहे थे, हमने आपसे कहा था कि फरमाइशी नाम आपको बताएंगे गीत के बाद। तो ये जो फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा का आपने गीत सुना सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में, इसे पसंद किया था सूरतगढ़ राजस्थान से अनिल कौशिक, शोभा पारितोष और आशुतोष, नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से ही डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, मधु और डॉक्टर प्रांजल। मनोज कपूर ग्वालियर अलकापुरी से खत लिख रहे हैं। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा मराठा, कार्तिक भाऊ मराठा, परी संजना मालती, स्वाति चौधरी, प्रयाग चौधरी और ललिता नारायण खर्चे, इन सब ने इसी फिल्म की इस गीत की फरमाइश हम तक पहुंचाई थी। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं फिल्म सरफरोश का ये गीत कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर की रचना, जतिन ललित का संगीत। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सारिनी जिला बैतूल से अमित खतरकर, निहारिका खतरकर, शिवपाल यादव, अनामिका अवंतिका, शिवालिका पारसमणी वाघ, पंजाब राव नीलामकर, संदीप पाटिल, क्षत्रिय रोड विष्णु मंदिर मार्केट शिवपुरी से सेवकराम धाकड़, यशोदा, सखी, कृष्णा, सपना, संदीप, अवधेश, अभिषेक, पुष्पेंद्र, हरिओम और अरविंद धाकड़। आदर्श नगर मालोट से खत लिख रहे हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी।

श्रोताओं, कार्यक्रम समेटे उससे पहले आपको बता दें कि कुछ और आप ही की पसंद ये गीत लेकर हम हाजिर होंगे सुबह 9:20 पर। तो बने रहिए आकाशवाणी शिवपुरी के साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम हमारे साथ। फिलहाल कार्यक्रम आपकी फरमाइश से अभी अनुमति दीजिए। नमस्कार। FM बैंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए बच्चे सुने अपना साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सब

0: प्यारे बच्चों, जय हिंद। बाल सभा सुन रहे हमारे नन्हे श्रोताओं को आपकी अपनी दीदी का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत बच्चों। और हमें पता है कि आप पूरे एक हफ्ते इस प्रोग्राम का इंतज़ार करते हैं, है ना? अपनी छुट्टियों का, गर्मियों की जो छुट्टियां पड़ी हैं स्कूल की, उनका आनंद ले रहे हैं ना? अब आप कहेंगे काहे का आनंद दीदी, इतनी गर्मी में बस घर में रहना होता है। अरे तो बच्चों, यही तो मौका है अपने शौक को पूरा करने का, अपनी जो हॉबीज़ है उसको और निखारने का, कुछ और नया सीखने का। अभी आपको कोई टेंशन नहीं है। टेंशन मीन्स आपको स्कूल नहीं जाना है, बैग नहीं जमाना है, कुछ इस तरह का जो रूटीन वर्क है ना, वो अभी आप उससे थोड़ा रिलीफ में है। तो जो ये गर्मी की छुट्टियां है ना, ये आराम की नहीं बल्कि कुछ नया रचनात्मक है ना, वो करने का अवसर है। अवसर है अपना मन पसंद जो आपको कुछ सीखना है, कुछ कला आपके अंदर है उसको और निखारना है, ये वो अवसर है। जैसे हमारे बहुत से जो नन्हे दोस्त हैं उनको ड्राइंग करना पसंद है, राइट? म्यूज़िक पसंद है, डांस पसंद है, पेंटिंग या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स जैसे गिटार है, सितार है, तबला है या फिर कीबोर्ड है ना, ये सब बजाना अगर पसंद है तो आप सीख सकते हैं अभी इस टाइम पर। और बहुत से हमारे छोटे जो बच्चे हैं ना, वो तो ये भी सोचते होंगे कि काश हमें भी मम्मी जैसा खाना बनाना होता। तो ये मौका है, सीख लीजिए आप भी खाना बनाना, छोटी छोटी चीज़ें बनाना। नींबू की शिकंजी है, चाय है, सैंडविच है, सीखिए, छोटे से स्टार्ट कीजिए। और हमारे बहुत से श्रोता जो है ना, जो नन्हे दोस्त हैं हमारे, उनको हरियाली से लगाव है, पेड़ पौधे पसंद है, तो आप वो सीखिए कि कैसे पेड़ पौधों को मंस क्या खाद डालें, क्या बीज बोए, ये सब चीज़ें। यही मौका है आपकी गर्मियों की छुट्टियों में। आप घर को व्यवस्थित करना सीखिए अपनी मम्मी के साथ, के हमें घर अच्छे से कैसे व्यवस्थित रखना चाहिए, सीखिए ये सब बातें। किताबें, जिन्हें किताबें पढ़ने का शौक है वो किताबें पढ़ें, आपकी वोकैबुलरी सुधरेगी, इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी। और इन छुट्टियों का जब आप लाभ उठाकर जब ये सब सीखेंगे ना, तो आप जब स्कूल जाएंगे तो आपको एक नई एनर्जी मिलेगी, सच में। तो अपनी हॉबी को निखारिए, यही मौका है। अब आपको और अच्छे से इस विषय पर कि ग्रीष्म अवकाश, ये जो आपकी गर्मियों की छुट्टियां है ना, तो ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग कैसे करें, आपके भैया सोनू श्रीवास्तव आपको बता रहे हैं। तो ध्यान से उनकी बात सुनिए कि सोनू भैया आपको क्या बता रहे हैं। आइए श्री सोनू श्रीवास्तव से सुनते हैं बच्चों के लिए, बच्चों की भविष्य को सुधारने के लिए ये वार्ता, ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग कैसे करें।
1: बच्चों, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। बच्चों के मन में गर्मियों की छुट्टियों का मतलब ढेर सारी मौज मस्ती, जल्दी उठने की चिंता, ना स्कूल कॉलेज जाने की परवाह है, बस खेलकूद मस्ती, दोस्तों के साथ घूमने की। और हमेशा से यह ख्याल रखना चाहिए कि हमें गर्मियों की छुट्टी का सदुपयोग कैसे करना चाहिए। हम सब ये जानते हैं कि संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि जो समय बीत जाता है उसे वापस नहीं प्राप्त किया जा सकता। प्राणियों के जीवन का समय सीमित है और इसका एक एक पल बड़ी तेजी से बीतता जा रहा है। छुट्टियों का मतलब और मूल्य हमें समझना चाहिए। छुट्टियों में आने वाले समय, लक्ष्य और भविष्य के लिए खुद को और अधिक ऊर्जा के साथ तैयार करना चाहिए, जिसे आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सके। इस समय क्लास की पढ़ाई लिखाई व होमवर्क का तनाव नहीं होता, ऐसे में अपने मन के अंदर झांकने की कोशिश करनी चाहिए, अपनी कमियां और अपनी क्षमताओं को जानने का प्रयास करना चाहिए और उन कमियों को दूर करने तथा क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्य में स्वयं के अलावा मित्रों, गुरुजनों और परिवारजनों की मदद ले सकते हैं। लोगों की यह शिकायत रहती है कि काम बहुत से करने हैं पर समय नहीं मिलता। बच्चों, बहुत से काम जिन्हें हम बहुत ही महत्व एवं उपयोगी समझते हैं, इन छुट्टियों में हम वह कार्य कर सकते हैं। छुट्टियों का उपयोग अपने व्यक्तित्व विकास के लिए भी किया जा सकता है। बच्चों, इन गर्मियों की छुट्टियों में अपनी रुचि के अनुसार तैराकी, घुड़सवारी, नृत्य, गायन, वादन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें निपुणता हासिल की जा सकती है। इसके अलावा कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपकी छुट्टियों को मजेदार बनाने में मदद करेंगे और उससे कुछ अच्छा भी सीखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर बागवानी करना सभी के लिए खुशनुमा एहसास होता है और इससे हम हर पल प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखते हैं। इन छुट्टियों में आप एक पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करना सीखें। अपने द्वारा लगाए गए पौधे को बड़ा होते देखना अपने आप में रोमांचकारी अनुभव होगा। इससे आप जीवन का मतलब समझ पाएंगे। इसी के साथ कुछ पेड़ भी अपने मोहल्ले के पार्क में लगाएं और उनकी देखभाल भी करें। धीरे धीरे बागवानी आपकी हॉबी बन जाएगी और पर्यावरण को हरा भरा व प्रदूषण मुक्त रखने का महत्व भी सीख जाएंगे। बच्चों, अपने समय का थोड़ा सा हिस्सा रसोई के छोटे मोटे कामों में भी लगाएं। अपनी माँ के निर्देशक में रसोई में काम करना भी सीखें, जिससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे। छुट्टियों में स्कूली किताबों के अलावा धार्मिक पुस्तकें व साहित्य, महापुरुषों की जीवन गाथाएं, विज्ञान व सामान्य ज्ञान की पुस्तकें अपने शहर की पुस्तकालय से प्राप्त कर पढ़ने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि जब अच्छा साहित्य पढ़ेंगे तभी आपकी लेखन कला में सुधार आएगा। साहित्यिक किताब पढ़ने से अपने शब्दकोश और ज्ञान में वृद्धि होगी। महापुरुषों की जीवन पढ़ने से आप उनके द्वारा किए गए कार्यों को अधिक नजदीक से जान पाएंगे। 2 महीने की छुट्टी एक लंबा समय है जिसे हम सूझबूझ के से बिताना चाहिए। ये समय एक उत्तम समय है जब अपने देश भारत को अधिक नजदीक से जान सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट से भारत के प्रदेशों की सांस्कृतिक विभिन्नताओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ के ऐतिहासिक स्थल

0: वालों की भी पूर्ण जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही हमारे शहर शिवपुरी में कई स्कूल एवं सामाजिक संस्थाएं समर कैंप, वोकेशन कैंप तथा कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जिससे आप लोग भाग लेकर अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं तथा पुरस्कार भी जीत सकते हैं। साथ ही शिवपुरी के स्पोर्ट्स के लिए भी कई कैंप चलाए जा रहे हैं, जिसमें क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, लॉन टेनिस आदि खेलों के कैंप शिवपुरी में श्रीमंत माधवराव सिंधिया स्टेडियम में शुरू हो गए हैं। इसके अलावा टेबल टेनिस एवं बैडमिंटन के लिए शिवपुरी क्लब में भी संपर्क कर सकते हैं। बच्चों, अपनी रुचि के अनुसार किसी भी खेल में हिस्सा अवश्य लें, जो आपके शारीरिक विकास में नहीं बल्कि मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। इसके अलावा आप अपने परिजनों के साथ घर पर भी कुछ खेल जैसे शतरंज, कैरम व लूडो खेल सकते हैं। ये खेल बच्चों के अंदर जल्दी निर्णय लेने और सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। छुट्टियां आपके दोस्तों व परिवार के साथ जुड़ने के लिए एक बढ़िया समय है और यह आपके शौक और जुनून को पूरा करने का भी एक महत्वपूर्ण मौका है। आज समय गंवाने का अर्थ है प्रगति में पीछे रह जाना। समय को लेकर महान कवि रहीम ने लिखा है, समय पर यदि कार्य कर लिया जाए तो उससे बड़ा लाभ है और समय पर चूक गए तो निराशा ही हाथ लगती है। मनुष्य की सफलता और समय का सदुपयोग दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। विद्यार्थी जीवन में समय की उपयोगिता को और भी अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि यह वह समय है जब मनुष्य के चरित्र का निर्माण होता है। इस अवस्था में वो यदि समय के महत्व को नहीं समझ पाता तो आगे इस जीवन में उसके महत्व को आत्मसात करने में बहुत कठिनाई होती है। सभी विद्यार्थी अपने जीवन में समय के महत्व को समझते हुए इसका पूर्ण रूप से उपयोग करें तथा लगन व परिश्रम पूर्वक जीवन में आगे बढ़ें। बच्चों, इन छुट्टियों में समय का उपयोग केवल खेल, मोबाइल, टीवी जैसे साधनों के समय नष्ट नहीं करें, बल्कि अपने समय का उपयोग रचनात्मक गतिविधियों में करें। इन छुट्टियों का सदुपयोग के रूप में ऑनलाइन शॉर्ट टाइम कोर्स भी किए जा सकते हैं। इसके वेब डिजाइनिंग, ग्राफिक्स डिजाइनिंग, कंप्यूटर लैंग्वेज आदि सीख सकते हैं। ये कोर्स 1 से 2 माह के होते हैं। ये कोर्स आपके ज्ञान और योग्यता को बढ़ाएंगे, साथ ही आपके व्यक्तित्व विकास में भी सहायक होंगे। बच्चों, इन छुट्टियों का उपयोग अपनी मातृभाषा के अलावा कोई एक भाषा सीखने में भी कर सकते हैं। इसको आपको इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से आसानी से सीख सकते हैं, साथ ही अंग्रेजी पर भी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। यदि आप अंग्रेजी पढ़ लेते हैं किंतु बोल नहीं पाते तो इस झिझक को तोड़ने का आसान तरीका यही है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन करना। यह ऑनलाइन और आपके शहर की अच्छी कोचिंग ज्वाइन करके कर सकते हैं। इसके अलावा अपने शौक के अनुसार मॉडलिंग, एरोबिक्स, स्टैकिंग, कोरियोग्राफी, आर्ट एवं मोमबत्ती बनाना, कढ़ाई करना ऐसी विधाएं हैं जिनका आप अपनी छुट्टियों में समय का सदुपयोग कर सकते हैं। साथ ही अपने दैनिक कार्य समय पर स्वयं करने की आदत डालें, साथ ही घर के अन्य कार्यों में भी माता पिता का हाथ बढ़ाएं तथा घर के सामान की खरीदारी भी करना सीखें, जिससे आप पैसों के महत्व को भी समझ पाएंगे। साथ ही व्यवहारिक ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। आप अपना समय टीवी व मोबाइल में व्यतीत नहीं करके अपने परिवारजनों के साथ व्यतीत करें, जिससे अपनी रिश्ते और भी अधिक मजबूत होंगे। उनके अनुभव से आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। बच्चों, पुराने जमाने में छुट्टियों में बच्चे अक्सर अपनी नानी नाना या दादा दादी के घर अपने पैतृक गांव जाते थे। वहां की ग्राम जीवन, शुद्ध वातावरण, शुद्ध खानपान तथा आपसी मेलजोल देखकर मन खुश हो जाता था। परंतु बदलते समय में एकांकी परिवार हो गए हैं बच्चे, आप लोगों का ग्रामीण जीवन से नाता टूट गया है। इसके अतिरिक्त शहर में लगने वाले सेवा कैंपों में स्वेच्छा से सामाजिक कार्यों में श्रमदान व सामाजिक कार्य करके भी शहर को स्वच्छ बनाने में योगदान दे सकते हैं। निसंदेह छुट्टियां सभी के लिए अनिवार्य है। छुट्टियों में मनुष्य अपनी सामान्य दिनचर्या से हटकर वह कार्य कर सकता है जिससे उसका आत्मविकास संभव है। उसके मन मस्तिष्क में नवीन चेतना व स्फूर्ति का संचार होता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता अन्य लोगों की तुलना में बहुत बढ़ जाती है। छुट्टियां चाहे जैसी भी हों, उनकी उपयोगिता सदैव बनी रहती है। छुट्टियों में बड़े बच्चे अपने आसपास रहने वाले निर्धन बच्चों को भी शिक्षा प्रदान कर सकते हैं तथा उन्हें पढ़ाई के लिए प्रेरित कर सकते हैं, उन्हें साफ सफाई के महत्व को समझा सकते हैं। इस तरह अपनी छुट्टियों का उपयोग समाज सेवा, ज्ञान और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता कर सकते हैं तथा अपना शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी कर सकते हैं। अतः इन छुट्टियों का उपयोग अपने परिवार, समाज और देश के विकास के लिए करना चाहिए।
1: तो बच्चों, सुनिए आपने ये वार्ता। वार्ता आपको ये बता रही थी कि ग्रीष्म अवकाश का सदुपयोग कैसे करें, और आपको ये बात समझा रहे थे आपके भैया श्री सोनू श्रीवास्तव। तो हमें उम्मीद है आपने इस वार्ता से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। ये जब मैं सुन रही थी, ये बता रहे थे कि मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई। कितनी अच्छी बात कही ना, कि घर में आप रह रहे हैं तो ऑल टाइम मोबाइल तो नहीं चलाते ना, ऑल टाइम मोबाइल से गेम्स तो नहीं खेलते ना। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जब मोबाइल से गेम खेलते हैं तो क्या आपकी एक्सरसाइज होती है? नहीं होती है। देखो बच्चों, मोबाइल पर गेम्स खेलते हुए रंग बिरंगे कैरेक्टर्स को देखना बहुत मज़ेदार लगता होगा, मानती हूँ, लेकिन सोचो जिस उम्र में आपकी लंबाई बढ़नी चाहिए, हड्डियाँ और मसल्स पावर मजबूत होना चाहिए, उस उम्र में घंटों एक जगह बैठकर गर्दन झुकाए मोबाइल देखते रहना, तो ये आपकी सेहत के लिए क्या होगा? आंखों पर चश्मा लग जाएगा आपकी दीदी के तरह। हाँ, आपकी दीदी के भी आंखों पर चश्मा है, लेकिन ये मोबाइल से नहीं, पढ़ने के कारण हुआ है। तो पढ़ाई कीजिए या नहीं, वो एक अलग, मतलब पढ़ाई तो करनी ही है, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में अगर आप दिन भर मोबाइल पर गर्दन झुकाए बैठे रहेंगे और तो आपकी पीठ में दर्द होने लगेगा। बताइए, अब इतनी सी उम्र में अगर पीठ में दर्द हो, ये कोई अच्छी बात है क्या? और चेहरे की जो आपकी चमक है, जो स्माइल है, जो आप मुस्कुराते हैं अपनों को देख के, अपने दोस्तों को देख के, वो स्माइल कहाँ जाएगी फिर? कैसे स्माइल आएगी वो वापस? वो ऐसे आएगी कि आप अपने दोस्तों के साथ जाइए गार्डन में, किसी बगीचे में, किसी मैदान पर, वहाँ पर रियल वर्ल्ड में खेलिए, वर्चुअल वर्ल्ड को छोड़िए, अपने दोस्तों के साथ रियल वर्ल्ड में आइए, वहाँ खेलिए छुपम छुपाई, पकड़म पकड़ाई, क्रिकेट, फुटबॉल, कोई सा भी गेम। और मज़ा तो तब आता है ना जब हम खेलते खेलते एक दूसरे को सीखते हैं, सिखाते हैं कैसे टीम वर्क होता है, और साथ ही जब सामने वाला जीत जाता है तो कैसे मुस्कुराते हुए एक स्प्रिट के साथ, गेम स्प्रिट के साथ आपको उस टीम को बधाई देनी होती है, खुश होना होता है उनके साथ में भी। तो ये सब चीज़ें आप जब खुले मैदान में जाकर मोबाइल छोड़कर खेलेंगे तो आपको ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी। आप गिरेंगे भी सही, थोड़ी खरोच भी आएगी, लेकिन कोई बात नहीं है, इसी से तो आप बड़े होंगे, सीखेंगे, निडर बनेंगे। धूप, छाव, मिट्टी, ये सब आपको क्या कहना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनाती है। तो जाइए मोबाइल छोड़कर गार्डन में खेलिए, लेकिन शाम को जब धूप चली जाए। इसलिए बच्चों, छोटी सी ये बात मानेंगे ना मेरी, कि दिन भर में मोबाइल का एक फिक्स टाइम करिए, और शाम को जो वक्त आपको मिलेगा उसमें जाके आप साइकिल चलाइए पार्क में, गेम खेलिए, तितलियों के पीछे भागिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इस तरह से अपने दोस्तों का हाथ थामकर खूब एंजॉय कीजिए। और बच्चों, आज आपसे बहुत सारी बातें तो चल ही रही हैं, तो चलिए आज कल की एक और बात करते हैं आपसे। कल है गंगा दशहरा का त्यौहार। आप तो सब जानती हैं ना कि गंगा हमारे देश की पवित्र नदी है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए राजा भगीरथ जी ने बहुत तपस्या की थी। वो अपने पूर्वजों की जो आत्मा है उनकी शांति के लिए गंगा नदी को स्वर्ग से धरती पर लाना चाहते थे, और उन्होंने उसके लिए बहुत कठिन तपस्या की। उस तपस्या से प्रसन्न होकर जब गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुई, तो उनका वेग, स्पीड, मतलब जिस स्पीड से, जिस वेग से वो धरती पर आ रही थी, वो बहुत तेज था, उसे संभालना बहुत मुश्किल। तब भगवान शिव ने अपनी जटाओं में माँ गंगा के वेग को संभाला, और फिर बहुत शांत से, आराम से गंगा जी धरती पर प्रभावित हुई। तो उनके धरती पर अवतरण को हम गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। गंगा जी में स्नान करना, दान करना, इस दिन के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। वैसे बच्चों, नदियों की अगर हम बात करें तो ये दिन हमें ये बताता है कि नदियाँ जीवनदायिनी होती है, हमें जीवन देती हैं, तो उन्हें हमें दूषित नहीं करना चाहिए। अब बच्चों आप कहेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, आप बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। आप जब किसी नदी किनारे जाते हैं या कोई नदी पर सैर करने जाते हैं, बोटिंग के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस नदी में आप जो भी कुछ खा रहे हैं वो कचरा नदी में ना डालें, है ना। उस कचरे को अपने पास रखें, जब वो नदी से आप पार कर जाएं तो डस्टबिन में आके वो कचरा डालें। तो ये सबसे छोटी छोटी सी बात भी अगर आप समझ कर रखेंगे तो 100% आप अपनी तरफ से दे रहे हैं नदियों के लिए, जलाशयों के लिए। और आप इतना तो कर ही सकते हैं, आपके कोई बड़े अगर ऐसा करते दिखे कि नदी में कुछ गंदा डाल रहे हैं, उसको गंदा फैला रहे हैं उसमें कुछ, तो आप उन्हें टोक सकते हैं कि ऐसा नहीं कीजिए, ये हमारे को जीवन देती है। जीवनदायिनी नदियों को संभाल कर रखना हम सबकी ही जिम्मेदारी है, उसमें आप बच्चों की भी है। तो आप बच्चे इसलिए इस तरफ थोड़ा सा सतर्क हो जाए, और हमें मालूम है हमारे बच्चे समझ गए हैं उन्हें क्या करना है, और हम भी समझ रहे हैं हमें क्या करना है। देखिए घड़ी की जो सुई है ना, वो ये हमसे कह रही है कि अब बच्चों से इजाज़त ले लो। तो चले बच्चों, लेकिन ये वादा करते हैं कि अगले सप्ताह फिर आपसे बात करेंगे, ढेर सारी जानकारी शेयर करेंगे। एक कॉपी पेन लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि जब रेडियो से कोई कुछ चीज़ आपको सुनाई देती है ना, तो आप नोट करेंगे ना तो तुरंत आपको याद होती है। तो अगली बार जब आप रेडियो ऑन करें, बाल सभा के लिए रेडी हो, तो एक कॉपी और पेन लेकर बैठना, कुछ इंटरेस्टिंग सा लगे तो नोट कर लीजिएगा, देखना आपको तुरंत याद हो जाएगा। अब ये घड़ी कह रही है कि अब बच्चों से अनुमति ले लो, तो बच्चों अपना ख्याल रखना, और गर्मी से बचने के जो पिछली बार उपाय बताए थे उन पे हमेशा लगातार काम करते रहना। अब दीजिए अपनी दीदी मोनिका को कार्यक्रम से अनुमति। जय हिंद बच्चों।

अभी बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम बाल सभा आप सुन रही थी। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुन रहे हमारे सभी श्रोता साथियों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। तो श्रोताओं आ जाइए रेडियो सेट के पास या बढ़ा लीजिए थोड़ी सी आवाज के हो रहा है कार्यक्रम का आगाज़।

बिल्कुल, श्रोताओं से उनकी ही पसंद के गीत बांटने आ गए हैं हम आकाशवाणी शिवपुरी के जरिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म आजाद से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं, ये खत आया है, ये कहाँ से आया है, गुरुग्राम से आया है, सुरेंद्र मोघा, अंकित मोघा, शकुंतला, ममता, आर्विका, मोक्षिका, इन सब ने इस गीत की फरमाइश हम तक पहुँचाई है। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजीव, राजदीप राजेश और राशि राजेश का खत आया है। मेहरनगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र से अभिजीत गंवाड़कर, राही सरिता गंवाड़कर, सिद्धांत गंवाड़कर, प्रिंस एकांश गंवाड़कर ने इस गीत के लिए खत हम तक पहुंचाया है। साथ ही नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, अंबेडकर चौक खुरई से राम सखी, परमानंद सौरभ, गौरव किशोरी बोस, एलपी रोहित, लल्लूराम, पूरन रोहित, छोटू डुंडुन और समस्त परिवार। उम्मीद है आपने अपनी पसंद का ये गीत सुना होगा। अब हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म अर्पण का ये गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज, आनंद बख्शी की रचना एक बार फिर, संगीत इस बार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सूरतगढ़ राजस्थान से नरेश वर्मा, भूपेंद्र सुथा, रोहिता शर्मा, श्रीपाल शर्मा, गुलशन मिघानी, कुंदन कटारिया, विकास पारेख, कमल पारेख, कमलागंज बाबू कॉटर के पीछे से कन्हैया कुशवाहा, भारती कुशवाहा, ध्रुव सोनम, गगन अशोक कुशवाहा, दुर्गेश और सुरेंद्र सागर। इसी गीत के लिए न्यू ब्लॉक शिवपुरी से सौरभ गौड़, आकांक्षा गौड़, इशिता और कृष्णा गौड़ हमें खत लिख रहे हैं। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म अर्पण का ये गीत।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अपनी ही पसंद के कुछ फिल्मी नगमे, कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और अगला फरमाइशी गीत हमने लिया है फिल्म प्रेम पुजारी से, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़, नीरज की रचना, सचिन देव बर्मन का संगीत। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता हैं काली माता मंदिर के पीछे करैरा से मनोज झा, मिथिलेश झा, नैना, मोनू, विकास झा, शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव, उदयपुर राजस्थान से बीना चित्तौड़ा और उनका पूरा परिवार इस गीत की फरमाइश कर रहा है हमसे, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, ततरेगी से भगवत वर्मा, पुणे से अर्चना साणेकर और उनका पूरा परिवार। आइए आप सबकी पसंद पर ये

0: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपनी ही पसंद के कुछ फिल्मी नगमे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आकाशवाणी शिवपुरी से। और भी गीत हैं आपकी पसंद के, बहुत सारे खत हैं हमारे सामने, लेकिन फिलहाल एक अंतराल आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
1: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम।
2: पर दादी,
1: हाँ,
2: आपके नाम?
3: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
1: शुभ शुभ बोलो। क्या
3: आरबीआई कहता है?
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और इस अंतराल के बाद हम उन श्रोताओं की फरमाइश पूरी कर रहे हैं जिन्होंने फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ का ये गीत सुनना चाहा है। आवाज़ आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की है। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, ओपी नैयर का संगीत। आप पसंद करने वाले श्रोताओं के नाम इस गीत के बाद। अभी ये गीत सुनिए।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म फिर वही दिल लाया हूँ का ये गीत। हमने आपसे कहा था गीत सुन लीजिए, फिर फरमाइशी नाम आपको बताएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं किन्होंने इस गीत की फरमाइश हम तक पहुँचाई थी। चिरमिरी कुरासिया करौली से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, बिलासपुर बस्ती बाराद्वारा से नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालेंद्री लहरे, बिलासपुर केरा रोड मिसदा से हमें खत लिख रहे हैं पुनी राम कश्यप, खगेश्वर कश्यप, अंबिकापुर महामाया रोड से अब्दुल वाहिद खान, सलमा बेगम खान, सतनवाड़ा से खत आया है दीपक बाथम का। इसी गीत के लिए गणेश कॉलोनी शिवपुरी से कालीचरण ओझा, उषा शुभम, कुमकुम शिवानी, हरिओम गुड्डी, रितेक, ऋतु, हर्षित, दिनेश और बबीता ओझा ने हम तक खत पहुँचाया है। आप सबने अपनी पसंद का ये गीत सुना होगा, और भी गीत हैं आपकी पसंद के, एक छोटा सा अंतराल आते हैं, कहीं जाइएगा नहीं।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं, खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और अब इस अंतराल के बाद हम आपको सुनवा रहे हैं।

प्रोफेसर, फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं सूरतगढ़ थर्मल राजस्थान से सौरवी, भवित्यम स्मृति जोशी, कोटा राजस्थान से हरिओम शर्मा, कविता शर्मा, प्राहिता शर्मा, अंबिकापुर रायगढ़ से चरणजीत कौर और रैना गुप्ता, चंदा चौक अंधरा ठाड़ी जिला मधुबनी बिहार से हेमलता सज्जन, शोभिकांत झा सज्जन, मोहित सज्जन, मालोट कैंप पंजाब से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल और रमेश मिगलानी, ग्राम अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, ज्योति और रेयांश, इनका भी खत इसी गीत की फरमाइश के लिए आया है। आइए सब मिलकर सुनते हैं।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपनी ही पसंद के कुछ फिल्मी लगने कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और अगला फरमाइशी गीत सुनना चाहा है, लखनऊ से खत आया है, सुनीता प्रधान, रूमा, मनोज, रोली, ओम, सन्नी ओम। देहरादून उत्तराखंड से कुंवर प्रताप सिंह कुंडी ने खत हम तक पहुंचाया है। पीपर परा मुगेली छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर और नीति वंशिका दिवाकर का खत हम तक आया है। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। ग्राम अमलेश्वर से ये खत एक बार फिर शामिल हो रहा है इनका। हमें खत इन्होंने भेजा है डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज ज्योति और रेयांश ठाकुर का। आइए, आप सबकी पसंद पर सुनवा रहे हैं फिल्म हमसाया का ये गीत।

और श्रोताओं, ये है कार्यक्रम का आखिरी गीत, आप ही की पसंद का फिल्म सनम तेरी कसम से, आवाज आशा भोसले की, गुलशन बावरा की रचना, आरडी बर्मन का संगीत। पसंद करने वाले हमारे श्रोता हैं बरेड़ी से राजेश सोनी, कंचन सोनी, गायत्री ढोमने, वैष्णवी ढोमने, चंचल, राजेश और अर्जुन गावेनकर, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश तारिणी, सूरज ज्योति रेयांश, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झवेंद्र कुमार वर्मा। आइए कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सबके नाम।

0: तो श्रोताओं इसी गीत के साथ दीजिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश से अब अनुमति। नमस्कार। FM एंड 100.2 MHz पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10 बजने को है अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा।
1: आकाशवाणी है प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
2: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। दतिया जिले में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है और दोपहर के समय सन्नाटा छा जाता है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बीके वर्मा ने बताया है कि अत्यधिक गर्मी और लू जानलेवा हो सकती है। गर्मी के दिनों में धूप में बाहर जाते समय हमेशा सफेद और हल्के रंग के ढीले सूती वस्त्रों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। भोजन करके एवं पानी पीकर ही घर से बाहर निकले। बाहर जाते समय भी अपने साथ पानी रखें और गर्मी के दिनों में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्हें धूप में घर से बाहर न निकलने दें और समय समय पर पानी पीने के लिए प्रेरित करें। दतिया जिले में युवा संगम रोजगार स्वरोजगार मेले का आयोजन कल किया जाएगा। युवाओं से दस्तावेजों के साथ इसमें शामिल होने की अपील की गई है। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े की अध्यक्षता में जिले की कानून व्यवस्था के संबंध में 28 मई को एक बैठक का आयोजन भी किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा वृद्धजनों के सम्मान, मनोरंजन, बेहतर स्वास्थ्य और खुशहाल वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल जिले में की गई है। रेडक्रॉस भवन में संचालित आनंद घर डे केयर सेंटर में वृद्धजनों के लिए सप्ताह के सातों दिन अलग अलग विभागों के समन्वय से विभिन्न रचनात्मक और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध लगातार सख्त अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा रतनगढ़ माता मंदिर रोड सहित विभिन्न क्षेत्रों में आकस्मिक जाँच और छापामार कार्यवाही बीते दिनों की गयी। टीम के द्वारा संदिग्ध वाहनों की जाँच की गयी। जाँच के दौरान कई वाहन चालकों द्वारा खनिज परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जा सके। वे बिना अनुमति और बिना वैध परिपत्र के खनिज का अवैध परिवहन, उत्खनन और भंडारण कर रहे थे। अभियान के दौरान प्रशासन की टीम ने ग्राम इंदरगढ़ क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1500 घन मीटर रेत जब्त की। बाद में इन अवैध रेत भंडारों को नष्ट करने की कार्रवाई भी की गयी। दतिया स्थित जिला जेल में मुलाकात कक्ष में लीगल एड हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है। स्थापित हेल्प डेस्क में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक लीगल एड डिफेंस काउंसिल में नियुक्त अधिवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। हेल्प डेस्क में नियुक्त लीगल एड डिफेंस काउंसिल द्वारा मुलाकात कक्ष में बंदियों के परिजनों को मौके पर ही कानूनी सलाह और सहायता तथा केस की जानकारी और अपील संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में दतिया जिले से अध्ययनरत पिछड़ा वर्ग जाति के 532 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि 91,59,000 रुपए का भुगतान किया गया है। सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग जिला दतिया के द्वारा जिले के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित दिव्यांगजनों के डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आगामी 15 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से तैयार किए जाएं। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े द्वारा जनगणना के तहत चल रहे मकान सूचीकरण कार्य

में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सुपरवाइजरों को प्रशस्ति पत्र देकर बीते दिनों सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सटीक मकान सूचीकरण न केवल जनगणना के लिए बल्कि भविष्य में विकास योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच भी सुनिश्चित करेगा। उन्होंने सभी सुपरवाइजरों और फील्ड कर्मचारियों से अनुरोध किया कि जनगणना का कार्य निष्ठा और ईमानदारी से करें ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भरोसेमंद रिकॉर्ड बने। जिला स्तरीय परियोजनाओं, न्यायालयीन मामलों में समन्वय और विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा करने के उद्देश्य से प्रधान न्यायाधीश विजय चंद्र की अध्यक्षता में जिला मॉनिटरिंग सेल की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विजय चंद्रा ने मॉनिटरिंग सेल की पिछली बैठकों में लिए गए निर्णयों की प्रगति रिपोर्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि न्यायालयीन व्यवस्थाओं और जिला स्तर पर चल रहे विकास कार्यों के बीच समन्वय बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है ताकि जनहित से जुड़े कार्य समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूर्ण हो। श्री चंद्रा ने बताया कि 21 अगस्त से 23 अगस्त तक 3 दिवसीय विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पक्षकारों की सहमति से बैंकिंग, सिविल, मोटर दुर्घटना, उपभोक्ता विवाद, रेरा, पारिवारिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, किराया नियंत्रण आदि जैसे प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। दतिया जिले में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा संपर्क अभियान चलाया जा रहा है। प्रबंध संचालक ऋषि गर्ग ने बताया कि संपर्क अभियान में बिलों का सुधार किया जा रहा है। दतिया जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी दतिया जिले की चिट्ठी। आलेख मनोज गोस्वामी का था, वाचन था अभिषेक कटियार का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये
1: एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत में श्रोताओं, आज हम आपको अदनान सामी और सोनू निगम की गाए कुछ गैर फिल्मी रचनाएं सुनवाएंगे। हिंदी पॉप सॉन्ग्स आप सुनेंगे इनकी आवाज़ों में। शुरुआत कर रहे हैं अदनान सामी की गाए इस

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिवपुरी से कार्यक्रम सुगम संगीत, और आज के कलाकार हैं अदनान सामी और सोनू निगम। आइए सोनू निगम के आवाज में सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। आज के कलाकार हैं सोनू निगम और अदनान सामी। आज कार्यक्रम में आप उनकी गाई कुछ गैर फिल्मी रचनाएं सुन रहे हैं। फिलहाल एक अंतराल।
1: बोल बोल के थक गया।
2: क्या हुआ?
1: नया किडबैक चाहिए।
2: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
3: करेक्ट।
2: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले
4: ले आ गया नया किडबैक।
5: RBI कहता है
6: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।

0: अभी आप सुन रहे थे अदनान सामी को। एक छोटा सा अंतराल, आते हैं।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए।
3: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
1: सर 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: और श्रोताओं अब सुनिए सोनू निगम के स्वर में ये गीत।

सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। श्रोताओं, आज सुगम संगीत में कलाकार थे अदनान सामी और सोनू निगम। एफएम बैंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के शुरुआत में आपने सुना फिल्म कामचोर का ये गीत, जिसे आवाज दी किशोर कुमार और अलका याग्निक ने। इंदिवर की रचना और संगीत राजेश रोशन का, के उनसे बढ़कर दुनिया में वैसे तो बहुत अच्छे संगीतकार हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना एक म्यूज़िक के लिए जो शानदार फिल्म में सफ़र तय किया है, उसका भी एक अलग ही आनंद है गीतों का। उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के कुछ अनसुने किस्से टटोलेंगे ना, तो एक से एक गाने याद आएंगे आपको, उनकी जिंदगी के जो हिस्सा बन चुके हैं। राजेश रोशन की बात कर रहे हैं, आज है उनका जन्मदिन, यानी सादगी, माधुर्य और धुनों में एक अजीब सा ठहराव, नाम राजेश रोशन।

0: श्रोता, आप सुन रहे थे फिल्म स्वामी में लता मंगेशकर को। अमित खन्ना के गीत को संगीत से सजाया राजेश रोशन ने। विरासत में संगीत मिलना एक बात है, लेकिन उस विरासत की साख को बनाए रखते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाना बहुत बड़ी बात है। राजेश जी के पिता महान संगीतकार रोशन साहब थे। उन्होंने बाबर और ताजमहल जैसी फिल्मों में अमर संगीत दिया था। उन्होंने अपने पिता से बहुत कुछ सीखा और एक अपनी अलग पहचान भी बनाई। आइए सुनवाएंगे आपको और भी गीत, लेकिन एक अंतराल के पार आपको सुनवाएंगे उनकी संगीत का एक अलग अंदाज, जिसे हमने लिया है फिल्म खून भरी मांग से। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ है। इंदिवर की रचना और संगीत तो आप जानते ही हैं राजेश रोशन साहब का, लेकिन फिलहाल एक अंतराल के पार आप सुनेंगे वो गीत।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा,
4: आरबीआई कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं संगीतकार राजेश रोशन की, जिन्होंने अपना फिल्मी करियर शुरू किया महमूद साहब की फिल्म कुवारा बाप से, और उसका जो गीत था सज रही गली मेरी अम्मा, वो गीत बिना का गीत माला पर टॉप पर रहा था उस टाइम पर। और इस तरह से संगीतकार राजेश रोशन ने अपने आप को साबित करना शुरू किया। और जैसे कि हमने इस प्रोग्राम में अभी इस गाने से पहले स्वामी फिल्म का गाना भी सुनवाया था आपको, पल भर में ये क्या हो गया, बातों बातों में, इस तरह से सॉफ्ट सॉफ्ट से गाने भी उन्होंने बनाए और इस तरह के मस्ती भरे गाने भी उन्होंने बनाए। मतलब एक हरफनमौला संगीतकार, वो ऐसे संगीतकार जिन्होंने अमिताभ बच्चन से पहली बार गाना गवाया मिस्टर नटवरलाल में, और फिर एक रूहानी गीत उनकी फिल्म में उन्होंने रिकॉर्ड किया, फिल्म याराना से किशोर कुमार की आवाज़, अनजान की रचना, राजेश रोशन का संगीत। आइए वही गीत सुनवाते हैं आपको।

और इस तरह से उनका संगीत दिलों को छूता हुआ ऐसी ऊंचाइयों पर पहुंचा कि हर साल जो भी फिल्में आती हैं उनके गीत चार्ट बस्टर्स

टॉप पर होती। और इस तरह से कहना चाहिए कि सदियां बदली, लेकिन उनकी धुनें और जवान होती गई। और वो समय आया ऐसा तूफान कहना चाहिए वो, कि राकेश रोशन ने अपने बेटे ऋतिक रोशन को लॉन्च कर रहे थे फिल्म कहो ना प्यार है के लिए। राजेश रोशन ने अपने भतीजे की पहली फिल्म के लिए पूरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ निचोड़ संगीत डाल दिया और एक फिल्म संगीत एक कल्ट बन गया। अब बड़ा ही मुश्किल है इस फिल्म का राजेश रोशन जी के किसी भी गीत को इस छोटे से प्रोग्राम में लेकर आने का बड़ा ही मुश्किल काम है, लेकिन इस फिल्म के सारे ही गीत बड़े ही प्यारे हैं। अब कौन सा गीत आपको सुनवाया जाए, चलिए वो गीत सुनवाते हैं जो आशा भोसले और साथियों ने गाया है, सावन कुमार टाक की रचना है, संगीत तो आप जानते हैं राजेश रोशन का, मस्ती भरा गीत है। मस्ती भरे स्टाइल में इस प्रोग्राम को हम समेटने की कोशिश कर रहे हैं और राजेश रोशन के हर संगीत का पहलू आप तक पहुँचाने की कोशिश की गई है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के आखिर में ये।

तो श्रोताओं, ये था हमारा एक छोटा सा नजराना संगीत के उस उस्ताद के नाम जिन्होंने हमारी उदासी को सुर दिए और हमारी खुशियों को गीत दिए। उम्मीद है राजेश रोशन जी के सुरों का ये सफ़र आपकी यादों को ताज़ा कर गया होगा। सुनते रहिए और अब कार्यक्रम से भी अनुमति दीजिए। नमस्कार।

FM एंड 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11 बजने को हैं। अगला प्रसारण भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, पेश है फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। सभी सुनने वालों को आपके रेडियो मित्र दिनेश कुमार का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले एक जरूरी बात, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम अब रिकॉर्ड किया जाता है सुबह 10:30 से 11 बजे, और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारा टेलीफोन नंबर है 2660902 और STD कोड है 075।
2: हेलो, फोन करेंगे सुने।
1: जी फोन करेंगे सुने, आकाशवाणी मध्य प्रदेश, कौन बोल रहे हैं आप?
2: हम सागर से बोल रहे हैं, पंडित शिवनारायण तिवारी।
1: क्या करते हैं आप?
2: पंडिताई करते हैं सर।
1: अच्छा, तो बताइए क्या सुनना चाहेंगे आज?
2: आज सुनना चाहेंगे सौतन की बेटी का।
1: सौतन की बेटी का कौन सा गीत के बोल बताएंगे?
2: ये हल्का हल्का सुरूर है।
1: ये जो हल्का हल्का सुरूर है, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहेंगे आप?
2: गर्मी बहुत पड़ रही है सर।
1: गर्मी बहुत पड़ रही है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है।
2: बिल्कुल बिल्कुल, 44-45 का,
1: 44-45-46 जो कभी हम लोग नहीं देख पाते थे अब उसका। इसमें कहीं ना कहीं गर्मी जो इतनी ज्यादा पड़ रही है, इसका कारण कहीं ना कहीं हम लोग हैं।
2: हाँ, वही तो, जंगल कट रहे हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है।
1: आप जैसे जागरूक श्रोता अगर ये जानते हैं तो इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं क्या?
2: वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष हरे हरे वृक्ष होने चाहिए, लगाना चाहिए।
1: जी जी जी,
2: हमारे खेत पले हुए हैं।
1: ठीक है, तो आपका गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अरे अब कौआ काटे या सांप डसे, तूने प्यार का जहर पिला दिया, मुझे एक शराबी बना दिया, अरे मुझे एक शराबी बना दिया।

0: फोन कर इस गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश। हमारी बात किन से हो रही है हम जानना चाहेंगे।
1: जी सर नमस्ते, मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह।
0: प्रेम सिंह बोल रहे हैं
1: जी सर,
0: नागदा उज्जैन से। आज क्या सुनना चाहेंगे आप?
1: जी सर मैं फिल्म का नाम है हमराज और गाने के बोले नीले गगन के तले धरती का प्यार पले।
0: नीले गगन के तले, बहुत बढ़िया गीत आपने पसंद किया है। लेकिन अभी तो मौसम है बड़ा गरम गरम सा हो रहा है कुछ।
1: जी बिल्कुल, काफी गरम हो रहा है। आपको बताऊं टेम्परेचर हमारे यहाँ पे 45 डिग्री के करीबन चल रहा है।
0: जी जी,
1: करीबन मतलब 20 दिन से ऐसा ही लगभग मौसम हो रहा है और काफी गरम तेज हवाएं भी चल रही है।
0: जी जी, लेकिन हमने इसलिए मौसम की गर्म की बात की क्योंकि ये जो गीत फिल्माया गया है नीले गगन के तले, एक शरद ऋतु में फिल्माया गया है ना।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कि मेरे घर के पास में दो बड़े बरगद के पेड़ हैं।
0: जी
1: वहाँ पे मतलब काफी पक्षी आते हैं, शाम के समय आते हैं, सुबह के समय आते हैं। तो उनकी जब चहचहाट होती है ना, तो मतलब उस समय शाम का जब समय होता है ना, तो काफी अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो कुदरत जो हमें देती है, कुदरत की जो ध्वनियाँ होती है, चाहे पंछियों की हो चाहे पेड़ों की सरसराहट की हो, उसका एक अलग ही मजा होता है ना।
1: जी बिल्कुल। तो उन जो पक्षी आते हैं ना, उनके लिए हमने मतलब है ना दो तीन टब में पानी भर के रखा हुआ है और ऐसे मतलब
0: बहुत बड़े
1: ऊपर के लटका रखे हैं मतलब पेड़ के नीचे, ताकि उनमें बैठे वो और पानी पिए। और मतलब कुछ ऐसे पक्षियों के लिए मतलब दाने भी बिखेर रखे हैं हमने कि वो पानी भी पिए, मतलब वहाँ पे बैठे और वो अपना दाना भी खाए।
0: प्रेम सिंह जी आप तो गांव में रहते हैं, हम शहर में रहते हैं, उसके

0: बावजूद हम क्या करते हैं, छत पर एक सकोरा रखते हैं, एक पीछे गार्डन में रखते हैं और एक आगे रखते हैं, और उसके अलावा चिड़िया, गिलहरी और कबूतर पूरे सब आके उसमें बिल्कुल पानी पीना खाना और आवाज देते हैं, आपको बताएं सवेरे सवेरे से हमको।
1: जी बिल्कुल, अगर उसमें पानी खत्म हो जाता है ना सर, तो मतलब
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: बैठ जाते हैं और मतलब ऐसे बोलते हैं कि इसमें पानी खत्म हो गया, उनकी भाषा में बोलते हैं, तो हमें मतलब पता चल जाता है कि इनके बर्तन में पानी खत्म हो गया है, आसपास में दाने खत्म हो गए, तो डालना है हमें।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपका जो गीत है आपकी पसंद का, हमराज फिल्म का, आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: हेलो, आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करें जी, सुने।
1: पल पल की दोस्ती का वादा है आपसे, अपनापन कुछ ज्यादा है आपसे, मत सोचना कि भूल जाएंगे आपको, जिंदगी भर दोस्ती निभाएंगे, ये वादा है आपसे।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमारी बात किससे हो रही है?
1: मैं पालदाना का इंदौर से मोहम्मद रफी मंसूरी बोल रहा हूँ सर।
0: मोहम्मद रफी मंसूरी, बताइए मोहम्मद रफी साहब, आप क्या सुनना चाहेंगे? आप तो खुद गानों के सरताज हैं, नाम आपका मोहम्मद रफी है।
1: जी शुक्रिया। ये फकीरा का सुनवा दीजिएगा सर, हम तो झुककर सलाम करते हैं।
0: हाँ, बहुत बढ़िया गाना है और बहुत दिनों में सुनने में आएगा ये।
1: हाँ हाँ, ये हिडन गाने रहते हैं सर कुछ।
0: बहुत बढ़िया, एक अलग तरह के की पसंद है आपकी, आप कव्वाली बेस्ड गाने आप थोड़े से पसंद करते हैं मुझे।
1: हाँ, कव्वाली शरारत और मस्ती भरे जो गाने रहते हो।
0: तो ये खूबसूरत सा गीत आपके रेडियो सेट पर आ रहा है।

0: السلام علیکم.
1: नमस्कार.
2: नमस्ते सर.
1: फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश.
2: सर नमस्ते, गंगा मेरा बात करी नीमच से.
1: कैसी हैं गंगा जी आप?
2: अच्छे हूँ मैं सर, आप कैसे हो?
1: हाँ मैं भी बढ़िया हूँ. आज क्या सुनना चाहेंगी?
2: सर मूवी का नाम है हम किसी से कम नहीं और गाने का बोल है चांद मेरा दिल.
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गीत पसंद किया है आपने. इसी गीत को पसंद करने की कोई खास वजह?
2: जी सर हमारी सिस्टर को बहुत पसंद है ये सॉन्ग.
1: अच्छा.
2: हम उसके लिए सुन रहे हैं.
1: गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, आपकी सिस्टर और आप दोनों गीत का आनंद लें. कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.

0: फोन करेगी सुनी।
1: नमस्ते सर।
0: नमस्ते,
1: महेंद्र वर्मा बात कर रहा हूँ, मंदसौर।
0: महेंद्र वर्मा, स्वागत है महेंद्र जी का। क्या करते हैं महेंद्र जी, आप हमारे श्रोता जानना चाहेंगे?
1: सर मैं वेल्डिंग का काम करता हूँ।
0: क्या क्या बनाते हैं आप, वेल्डिंग करके या केवल?
1: सर वो गेट की फ्रेम आती है और वो सब आता है ना, वो सब बनाते हैं सर।
0: अच्छा, तो ये आपकी खुद की शॉप है या फिर आप कहीं किसी के पास काम करते
1: हैं? काम करते
0: हैं। शौक क्या क्या है आपके और?
1: सर हमारा शौक स्विमिंग करना है।
0: स्विमिंग, अरे वाह बहुत बढ़िया। तो वहाँ तो कुछ आसपास नदी या कुछ इस तरीके का है, तालाब वगैरह क्या है आपके?
1: सर मंदसौर में।
0: मंदसौर में
1: वाटर पार्क है ना, मंदसौर में
0: वाटर पार्क में।
1: ओके। वो शिवना नदी भी है, वो पशुपतिनाथ मंदिर है ना वहाँ पे।
0: मतलब नेचुरल स्विमिंग का आनंद लेते हैं आप। तो आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: सर मूवी का नाम है टेबल नंबर 21 और गाने के बोल है मन मेरा।
0: तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश कार्यक्रम फोन करेगी सुने।
1: कालीचरण यादव बोला सर, संदलपुर आदरी से।
0: कालीचरण यादव जी आप कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं ग्वालियर के पास गाँव, मेरा आदरी संदलपुर।
0: संदलपुर क्या करते हैं कालीचरण जी आप?
1: पान की खेत में काम करता हूँ। पान की पान होता है हमारे गांव में, देसी पान होता है गांव में, संदलपुर में।
0: जी जी जी, तो ये पान की खेती में काम करते हैं या खेती आपकी खुद की है?
1: खुद की खेती करते हैं ना हम। जी होते हैं हमारे,
0: क्या होते हैं फिर से बताइए थोड़ा सा।
1: देसी पान होता है हमारे गांव में, गांव रात्रि संदलपुर में।
0: हाँ हाँ हाँ, तो इसकी तो आपने पूरा पॉली हाउस के अंदर करते हैं या ओपन में करते हैं इसको?
1: उसमें पत्थर की दीवार होती है, उसमें ऊंचाई में, उसमें प्यार के करना पड़ती है, बांस लगाना पड़ती है, उसमें बहुत मेहनत।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बांस लगाना पड़ती है, मंडप बनाना पड़ते हैं, है ना? हाँ हाँ, नहीं पॉली हाउस के अंदर हमने इसकी खेती देखी है।
1: आपने कहाँ पे देखी थी सर?
0: ये हरदा में।
1: हरदा में होती, पानी खेती होती, मालम में भी होती पानी खेती मालम
0: जी। तो आज क्या सुनना चाहेंगे कालीचरण जी?
1: मेरे को गाना सुनना है, खुद का सुनवा दो आप। जब प्यार किसी से होता है, 100 साल पहले मुझसे प्यार था, लता रवि के बारे में गाना है, पुरानी पिक्चर है।
0: हाँ ये देवानंद और आशा पारिक की फिल्म है। तो चलिए आपका गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर।

0: नमस्कार, फोन करेगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: मैं ग्राम परसेंटा जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश यमुना बेल्ट के किनारे से मैं आपका दोस्त बेटा सिंह यादव बातचीत कर रहा हूँ। सर
0: क्या सुनना चाहेंगे आज आप?
1: तो सर दिल वाली दुल्हनिया ले जाएंगे, ये है ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया था, अभी तो यही था अधिक हो गया।
0: गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: नमस्कार, फोन करें गीत सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हेलो, राधे राधे सर
0: जी, नमस्ते।
1: हेलो,
0: कौन बोल रहे हैं, किससे बात हो रही है हमारी?
1: राधे राधे, राजनंदिनी बात कर रही हूँ।
0: राजनंदिनी, तो क्या सुनना चाहेंगे राजनंदिनी जी आप?
1: सर, मूवी बनाने में संघर्ष गाने के बोले, पहली बार दली है दिल का हार।
0: और कुछ कहना चाहेंगे राजनंदिनी जी?
1: जी सर, कहना चाहेंगे अभी घर में बहुत पड़ रही है तो कृपया घर नहीं रहे
0: जी। गर्मी बहुत पड़ रही है लेकिन जो काम है हम लोगों को वो तो करना ही होते हैं। बिल्कुल, लेकिन लेकिन गर्मी के लिए, इसे बचने के लिए जो एहतियात है वो बरत सकते हैं हम लोग, है ना। अगर पैदल जा रहे हैं तो छाता लेकर जा सकते हैं, गाड़ी पर है तो टोपी लगा सकते हैं, है ना। और उसके
1: चीजों का सेवन करें, छाछ पिए,
0: बिल्कुल बिल्कुल, मठा पिए, नारियल पानी पिए, इस तरह
1: पानी पिए, इलेक्ट्रोल अपने साथ में हमेशा रखें,
0: इलेक्ट्रोल ग्लूकोज हमेशा अपने साथ रहे तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: बहुत अच्छी बात है सर
0: जी। तो कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए राजनंदिनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। गीत आ रहा है आपके रेडी सेट पर।

0: हेलो, कार्यक्रम फोन
1: हेलो।
0: करेंगी सुने आकाशवाणी मध्य प्रदेश।
1: हाँ जी, मैं श्रीताप जाखड़े बोल रहा हूँ, पूरे महाराष्ट्र से।
0: श्रीताप जाखड़े, जाखड़े साहब आज क्या सुनना चाहेंगे?
1: ये मधुमति का गाया हुआ गाना सुनना है, मधुमति का।
0: मधुमति फिल्म का कौन सा गीत?
1: मधुमति का है, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है दिल ने।
0: टूटे हुए ख्वाबों ने, ये सैड सॉन्ग सुनने का क्या कारण है? आपकी कोई वजह है इसकी कुछ?
1: हाँ, हमको तो मतलब ये पुराने गाने बहुत पसंद है ना सर।
0: पुराने गाने आपको पसंद है इसलिए सुनना चाहते हैं। गीत बहुत अच्छा है,
1: सलीम चौधरी साहब का संगीत है।
0: तो गीत आ रहा है आपके रेडियो सेट पर, गीत का आनंद लीजिए।

0: अभी आपने सुना मधुमती फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। पसंद करने वाले श्रोता थे महाराष्ट्र से श्रीताप जाखड़े। मधुमती फिल्म के इस गीत के साथ ही आज का फोन इन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। अब अपने रेडियो मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त होती है। केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू आज जबलपुर के एक दिवसीय प्रवास पर हैं। वे यहां सामाज के एक कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की पीठ कल भोपाल के तुषार शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति के मौत के मामले की सुनवाई कर सकती है। शीर्ष अदालत ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पर आज निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। जनगणना के प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम सीमा में 7 लाख से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है। इसके साथ ही 3,285 जनगणना ब्लॉकों में से 2,800 मकानों का सूचीकरण कार्य भी लगभग पूर्ण हो चुका है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का अलर्ट बना रहेगा। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में 2:30 से होगा, वहीं दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, सबसे पहले जिस गीत को हमने लिया है उसके सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी। अमित खातकर, निहारिका, शिवपाल, अनामिका, अवंतिका, शिवलेखा, पारसमणि और संदीप पाटिल, इसी गीत को सुनना चाहा है वसंत कुमार वर्मा, राजूबाई वर्मा, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा। इन्होंने ये हमें ख़त लिखा प्रेमिलागंज आटोल ज़िला रतलाम से, और आप सभी ने सुनना चाहा है अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में दिल है तुम्हारा फिल्म का नगमा। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

भाटेपारा नंदेरी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार, जावेद्र कुमार, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रियांश, खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया, आप सभी ने सुनना चाहा है आंखें फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में। तो आइए आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं और सुनवाते हैं ये नगमा।

0: वक्त कभी कभी।
1: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अगली फरमाइश हमें लिख भेजी है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ वचन कॉलोनी से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक, मोहम्मद शकीर, मोहम्मद अलकना खत्री, अलमश खत्री, रमेश गौर और शादाब खत्री ने। एक और हमें ख़त मिलता है झारखंड से, लिखने वाले हैं विकास शर्मा, ज्योति, मीना, नीरा सिंह और इनकी परिवार के सभी सदस्य। इन्होंने सुनना चाहा है पिघलता आसमान फिल्म का नगमा, आवाज़ लता मंगेशकर की, बोल इंदिवर के और धुन बनाई कल्याण जी आनंद जी ने।

नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल, राजदीप और राशि। आप सभी ने सुनना चाहा है उदित नारायण और अलका याग्निक, लता मंगेशकर की आवाज़ों में दिल तो पागल है फिल्म का नगमा। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार उत्तम सिंह। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर के युगल सुरों में दिल तो पागल है फिल्म का ये नगमा।

अब आपको सुनाते हैं आपसे भी की फरमाइश। लिखने वाले हैं अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया, आसमा, सालिया, शुएब खान, मुस्तबा, रऊफ और शरीद, गांधी बाग अकोला से रमेश और वैशाली। आप सभी ने सुनना चाहा है सोनू निगम की आवाज़ में ये नगमा। फिल्म का नाम दिल तो बच्चा है जी।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत में आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से। इसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं धारावाहिक पंचतंत्र का 11वां भाग।

0: प्रणाम श्रोतागण, आप सबके साथ मैं भी प्रस्तुत हूँ पंचतंत्र की कथाओं का रसास्वादन करने के लिए। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं पंचतंत्र का चौथा प्रकरण लब्ध प्रणाशम, जिसे पंडित विष्णु शर्मा ने इस प्रकार प्रारंभ किया। समुत्पन्नेषु कार्येषु
1: समुत्पन्नेषु कार्येषु बुद्धिर्यस्य न हीयते स एव दुर्गतरति जलस्थो वानरो यथा। अर्थात कार्य में विपत्ति के आ जाने पर जिस व्यक्ति की बुद्धि क्षीण नहीं होती है वह दुर्गम मार्गों को भी पार कर सकता है। जैसे जल में निवास करने वाले रक्तमुख नाम के वानर ने अपनी बुद्धि के द्वारा एक बहुत बड़ी विपत्ति को पार कर लिया। वत्सगण सुनो, समुद्र के किनारे सभी ऋतुओं में फलने वाला एक विशाल जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर रक्तमुख नाम का एक वानर निवास करता था। किसी दिन संयोग से करालमुख नाम का एक मगर समुद्र से निकलकर उस वृक्ष के नीचे कोमल बालुका भूमि पर बैठ गया। उसे देखकर रक्तमुख ने कहा,

0: महाशय, आप मेरे घर आए हुए अतिथि हैं। आइए इस अमृत के समान मधुर जामुन का आनंद लीजिए। अतिथि तो नारायण का रूप होते हैं।
1: अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है मित्र, मैं अवश्य मीठे जामुन खाऊंगा। आज से हम मित्र हैं, मैं तुम्हें शास्त्र पाठ सुनाया करूंगा। वाह, अरे वाह मित्र वाह, ये तो सचमुच बड़े स्वादिष्ट है। मैं कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। हाँ, अरे वो बहुत प्रसन्न हो जाएगी, वो बेचारी अकेली घर में रहती है, ऐसे फल उसे कहाँ मिलते हैं।
0: अवश्य मित्र, परंतु तुम्हारे भाग का तुम खा लो, मैं भाभी के लिए और मीठे जामुन तोड़ कर ला देता हूँ, और भाभी को देवर की ओर से प्रणाम देना मित्र।
1: अवश्य दूंगा मित्र, अवश्य दूंगा, आज मैं चलता हूँ भाई। प्रिये प्रिये, अरे कहाँ हो तुम? अरे शीघ्र आओ, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ।
2: नाथ,
1: देखो देखो,
2: वाह क्या स्वाद है, तुम इन अमृत तुल्य फलों को कहाँ से लाए हो?
1: भद्रे, रक्तमुख नाम का वानर मेरा अत्यंत घनिष्ठ मित्र हो गया, वही प्रेम पूर्वक प्रतिदिन इन फल को देगा, वो इसी फल वृक्ष में रहता भी है।
2: अच्छा। जो सदा इन अमृत तुल्य फलों को खाता है उसका हृदय भी अमृत के समान होगा। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय ला कर दो, ताकि उसे खाकर मैं अमर हो जाऊं और तुम्हारे साथ आनंद भोगती रहूं।
1: प्रिय, ऐसी बात न कहो, वो मेरा भाई है, इस बात को मैं स्वीकार कर चुका हूँ, वो रोज फल देता है, मैं उसे मार नहीं सकता, इस निरर्थक आग्रह को तुम छोड़ दो।
2: इससे पूर्व कभी तुमने मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं किया, जान पड़ता है वो कोई वानरी है, तुम्हें उससे अनुराग हो गया है, इसी कारण तुम दिन भर वहीं रहते हो।
1: ये तुम क्या कह रही हो, तुम व्यर्थ ही संदेह कर रही हो।
2: आज मैं तुम्हें भली भांति समझ गई हूँ, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर प्रसन्न मन से नहीं दे रहे हो और मेरे मन की कोई इच्छा भी पूरी नहीं करते हो। धूर्त, तुम्हारे हृदय में मेरी ही तरह कोई दूसरी प्रियतमा है।
1: नहीं नहीं प्राण प्रिय, अब मैं तुम्हारे पैरों पर गिर चुका हूँ और दासता के लिए प्रस्तुत हूँ, मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों हो रही हो?
2: देखो, इस प्रकार मेरे चरणों में बैठकर झूठे प्रेम का ढोंग करना व्यर्थ है। यदि वो सचमुच वानर है तो उसके प्रति तुम्हारे हृदय में इतना स्नेह क्यों? यदि तुमने मुझे उसका हृदय लाकर नहीं दिया तो आज से मेरा अनशन है।
1: क्या करूं? अरे अरे मैं उसे कैसे मार सकता हूँ?
0: आओ आओ मित्र, आज इतने दिनों बाद क्यों आए? क्या बात है, सदा की भांति प्रसन्न नहीं हो, इस उदासी का क्या कारण है?
1: मित्र, तुम्हारी भाभी ने मुझे बहुत डांटा फटकारा। उसने मुझसे कहा है कि मैं कृतघ्न हूँ।
0: क्यों बोला?
1: और मैं उसे अपना मुंह न दिखाऊं।
0: अरे रे रे, ऐसी क्या बात हो गई?
1: क्योंकि भैया, मैं रोज तुम्हारे घर आकर जामुन खाता हूँ और तुम्हारा कोई भी उपकार नहीं करता, कभी तुम्हें घर भी नहीं ले जाता, इसलिए आज मैं तुम्हें घर लेकर ही चलूंगा, अन्यथा वो मुझसे परलोक में ही मिलेगी।
0: ओह ये बात है, अरे मित्र इसमें कौन सी आपत्ति है, चलेंगे, कभी चलेंगे, जरूर चलेंगे।
1: नहीं नहीं मित्र, आज ही चलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ,
3: तुम्हारी भाभी तुम्हारी प्रतीक्षा में चौका सजाकर सुंदर गहनों और वस्तुओं से श्रृंगार करके द्वार पर वंदनवार सजाकर उत्कंठा पूर्वक बैठी है।
0: मित्र, मैं तुम्हारा प्रेम समझता हूँ, परंतु हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, जल के भीतर कैसे जा सकते हैं? आप भाभी को यहाँ ले आएं, जिससे मैं प्रणाम करके उनका भी आशीर्वाद ले सकूं।
3: रक्तमुख भाई, हाँ? समुद्र के भीतर एक अत्यंत रमणीय टापू पर मेरा घर है।
0: अच्छा,
3: तुम मेरी पीठ पर बैठकर अत्यंत सुख से निर्भय होकर वहां पहुंच सकते हो।
0: यदि ऐसी बात है तो विलंब क्यों, शीघ्र चलें। लीजिए, मैं आपकी पीठ पर चढ़ जाता हूँ।

0: ये अब मेरे वश में है, कहीं इधर उधर भाग नहीं सकता।
1: संभाल के थोड़ा।
0: अब मुझे असली अभिप्राय कह ही देना चाहिए ताकि ये अपने इष्ट देव को स्मरण कर ले।
2: रक्तमुख, स्त्री की बातों का विश्वास दिलाकर मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए लाया हूँ। तुम अपने इष्ट देव का स्मरण कर लो।
1: भाई, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जिससे आपने मेरे वध का निश्चय किया?
2: मेरी स्त्री ने कहा है कि नित्य मधुर जामुन को खा खा कर तुम्हारा हृदय स्वादिष्ट हो गया है, इसीलिए वो तुम्हारे हृदय मांस को खाना चाहती है।
1: दुष्ट, अभी बताता हूं। भद्र, यदि ऐसी बात थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने तो अपना हृदय जामुन वृक्ष की कोटर में सुरक्षित रखा है। मैं उसे लाकर भावी को समर्पित कर देता। आप मुझे हृदयहीन बनाकर यहाँ क्यों लाए? हम वानर हृदय को सुरक्षित रखने के लिए अपने शरीर से अलग ही रखते हैं।
2: अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तो फिर मैं पुनः तुम्हें उसी जामन वृक्ष पर पहुंचा देता हूँ। तुम मुझे अपना हृदय दे देना ताकि मैं अपनी दुष्ट पत्नी के अनशन को तोड़ सकूं।
1: हे प्रभु, शीघ्र ही किनारे पहुंचा दो।
2: लो मित्र, तट आ गया। अरे तुम तो पहले ही कूद गए हैं। अरे वृक्ष पर भी पहुंच गए।
1: आज बड़े भाग्य से मेरे प्राण बच गए और मैं सकुशल लौट आया।
2: अरे मित्र, ए मित्र।
1: हाँ?
2: अरे अपना वो हृदय तो मुझे दे दो जिसे खाकर तुम्हारी भाभी अपना अनशन व्रत तोड़ दे।
1: मूर्ख, विश्वासघाती, क्या किसी के दो हृदय होते हैं? तुम इस जामुन के पेड़ के नीचे से शीघ्र ही चले जाओ और फिर कभी इधर ना आना।
2: अरे अरे मैं कितना बड़ा मूर्ख हूं। चलो पुनः प्रयत्न करता हूं। संभव है मेरे कहने में आकर वो पुनः मेरा विश्वास कर ले। अरे मित्र, अरे मैंने तो तुम्हारी मित्रता की परीक्षा ली थी। तुम्हारी भाभी को हृदय की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है।
1: दुष्ट, यहां से तत्काल चले जाओ। अब मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। प्रियदर्शन सर्प से कह दो कि अब गंगदत्त पुनः कुएं में जाने वाला नहीं है।
2: क्या मतलब? अरे जरा साफ साफ समझाओ।
1: किसी नगर में गंगदत्त नाम का एक मेंढक रहता था। उसने अपने कुटुंबजनों से अपमानित होकर प्रियदर्शन नाम के एक सर्प को उन सभी कुटुंबजनों को मारने के लिए नियुक्त किया।
2: अच्छा, अच्छा।
1: उस सर्प को उसी कुएं में रहने का प्रबंध भी कर दिया। जब उस प्रियदर्शन सर्प ने उसके सारे कुटुंबजनों को खा लिया, तब गंगदत्त के परिवारजनों को खाना प्रारंभ कर दिया। गंगदत्त अपने किए पर पश्चाताप करने लगा, किसी तरह कुएं से निकलकर भागा। प्रियदर्शन के लाख समझाने और मित्रता की दुहाई देने पर भी वो कुएं में नहीं लौटा। इस कारण मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं जाऊंगा कराल मुख।
2: मैं जानता हूं मित्र, मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, परंतु यदि तुम मेरे साथ नहीं चले तो मैं अनशन करके यहीं पर प्राण त्याग दूंगा।
1: तुम्हारे जो मन में आए करो, परंतु तुमने जो कपट किया है वो अक्षम्य है। तुम स्त्रैण हो, पत्नी की बातों में आकर तुमने अपने मित्र के प्राणों को लेने की सोची। सच है, स्त्री की बातों में आकर पुरुष उन्हें क्या क्या नहीं दे डालता, क्या क्या नहीं करता। तुमने नंदवर रुचि की कथा सुनी है?
2: नहीं तो?
1: तो सुनो। किसी राज्य में नंद नाम का अत्यंत प्रसिद्ध बलवान और पराक्रमी राजा राज्य करता था।
2: अच्छा।
1: अनेक राजाओं की मुकुटमणियों की ज्योति

0: मोती से उसका पाद पीठ जगमगाया करता था। उसका यश संपूर्ण पृथ्वी पर फैला हुआ था। उसका वररुचि नाम का एक मंत्री था।
1: अच्छा?
0: वो शास्त्रों का प्रकांड विद्वान था। एक बार उसकी स्त्री के साथ उसका कलह हो गया।
1: अच्छा।
2: पिए, ऐसी क्या बात है कि तुम मुझसे रुष्ट हो गई? कल से तुम्हारे स्वभाव में ये परिवर्तन देख रहा हूँ।
3: आप मुझसे न ही पूछे तो उचित होगा। इस समय मैं अपने आपे में नहीं हूँ, आप मुझे अकेला छोड़ दें।
2: पिए, तुम जैसे भी प्रसन्न हो सकती हो कहो, मैं तुम्हारी हर इच्छा की पूर्ति करूँगा।
3: यदि आप जानना ही चाहते हैं तो सुने। अगर आप अपना सिर मुड़ाकर मेरे पैरों पर गिर जाएं, तो मैं प्रसन्न हो सकती हूँ।
4: वर रुचि ने वही किया। फिर उसकी स्त्री मंदारी प्रसन्न हुई। इधर संयोगवश महाराज नंद से उनकी महारानी कुपित हो गई थी। किसी भी प्रकार महाराज उन्हें प्रसन्न नहीं कर पा रहे थे।
5: महारानी, आप क्यों क्रोधित हो रही हैं? आपको ये करना क्या शोभा देता है?
6: महाराज, मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, ये आप मुझे ना समझाएं। मैं भी महाराज अधिराज अमर शक्ति की एकमात्र पुत्री हूँ। महारानी की क्या मर्यादा है, ये मैं आपसे नहीं सीखूंगी।
5: प्रिय, मैं तुम्हारे बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पैरों पर गिरकर तुम्हें मनाऊं।
6: आप घोड़ा बन जाइए, मैं आपके मुख पर लगाम लगाकर दौड़ाती हूँ। मेरे दौड़ाते समय यदि आप घोड़े की तरह हिन हिन आएंगे तो मैं आप पर प्रसन्न हो जाऊंगी।
5: अरे आप यह क्या कह रही हैं?
4: विवश होकर राजा ने वही किया जो महारानी ने कहा। तदंतर वो भी प्रसन्न हो गईं।

दूसरे दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज नंद के समक्ष जब वररुचि आए तो उनको मुंडित देखकर राजा ने पूछा,

0: वरुचि, किस पर्व पर तुमने ये मुंडन कराया है?
1: महाराज, स्त्रियों के आग्रह से मनुष्य क्या नहीं करता। जिस पर्व में वो घोड़े की तरह हिनहिनाता है, मैंने उसी पर्व में मुंडन करवाया है।
0: अच्छा।

0: दुष्ट मकर, तुम भी नंद और वर रुचि की तरह स्त्रैण हो, इसलिए उनके कहने से तुमने मुझे मारने का प्रयास किया।
1: मगरमच्छ अभी वार्तालाप कर ही रहा था कि किसी जलचर ने आकर कहा कि उसकी स्त्री जो अनशन पर बैठी थी वो उसे देर होती देख और स्वयं को तिरस्कृत समझकर मर गई। कराल मुख वज्रपात के समान शब्दों को सुनकर शोक से व्याकुल हो उठा।
2: ओह, मुझे अब आगे पर ये क्या विपत्ति आ गई। मित्र, मैंने जो तुम्हारा अपराध किया है

0: इसके लिए क्षमा कर दो। अब मैं स्त्री के वियोग में अग्नि में प्रवेश करके प्राण दे दूंगा।
1: अरे भाई, ये तो मैं पहले ही जान गया था कि तुम स्त्री से वशीभूत हो। अब तो पूर्ण विश्वास भी हो गया। मूर्ख, ये तो आनंद का अवसर है। ऐसी स्त्री के मर जाने पर तो उत्सव मनाना चाहिए।
0: हे वानर, तुम्हारा कथन यथार्थ है, किंतु मैं क्या करूं? मुझ पर तो एक साथ दो विपदाएं आ पड़ी हैं। एक तो स्त्री के मर जाने से मेरा घर भी नष्ट हो गया है, दूसरा मेरे मित्र से मनोमालिन्य हो गया है।
2: इसी वार्तालाप के बीच एक अन्य जलचर ने आकर मगरमच्छ से कहा कि तुम्हारे घर में किसी दूसरे मगरमच्छ ने आधिपत्य कर लिया है।
0: हाय हाय, अरे मेरा दुर्भाग्य तो देखो, मेरा मित्र भी शत्रु बन गया है, उधर मेरी स्त्री भी मर गई, साथ ही मेरे घर में भी किसी ने आधिपत्य कर लिया। पता नहीं अभी और क्या क्या होने वाला है। अब तुम ही बताओ मित्र, मैं क्या करूं? साम दाम दंड भेद किसका प्रयोग करूं?
1: अरे कृतघ्न पापी, मेरे मना करने पर भी तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे हो? तुम्हारे जैसे मूर्ख को मैं कोई उपदेश भी नहीं देना चाहता। यद्यपि स्त्री संसार में सबसे प्रिय होती है, तथापि उसके कहने से मित्रों और भाइयों को समुद्र में नहीं डुबोया जाता।
0: भद्र, विद्वानों का कथन है, एक साथ सात पग चलने से ही सज्जन दूसरों को अपना मित्र मान लिया करते हैं। अरे मैं तो तुम्हारे साथ बहुत दिनों तक बैठा हूं, अतः पुरानी मित्रता को सामने रखकर इस विश्वासघाती मित्र को उचित परामर्श देने की कृपा करो।
1: भद्र, यदि ऐसी बात है तो वहां जाकर उस मगर के साथ युद्ध करो। युद्ध में अगर मारे जाओगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और यदि भाग्य से जीवित बच गए तो घर के साथ साथ यश भी मिलेगा।
0: अच्छा।
1: नीति शास्त्र में कहा गया है कि समान शक्ति संपन्न शत्रु के साथ युद्ध करके उसे शांत करना चाहिए।
2: कराल मुख ने वानर के विचार को सुनकर युद्ध करने का निश्चय करके घर की ओर प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर वो अपने घर में घुसे आतताई के साथ युद्ध करने को प्रवृत्त हो गया, और अपनी दृढ़ता और साहस से उसने पुनः अपना घर प्राप्त कर लिया और सुखपूर्वक रहने लगा।

सच ही कहा गया है। बिना पुरुषार्थ के अनायास ही प्राप्त होने वाली लक्ष्मी से यदि सुख मिल भी जाता है तो उससे उतनी प्रसन्नता एवं तुष्टि नहीं हो पाती जितनी की पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त की हुई लक्ष्मी से होती है। रसिक जन, कैसी लगी ये कहानी हमें अवश्य बताएं। लब्ध प्रणाशम नामक ये प्रकरण यहीं पर समाप्त होता है। अगला प्रकरण अगले सप्ताह आज ही के दिन आज ही के समय सुनना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।

कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे रेडियो धारावाहिक पंचतंत्र की 11वीं कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
2: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने से केंद्र सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता अभिव्यक्त होती है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत उमरिया जिले के ग्राम खेरवा टोला में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु हो गई और कुछ नागरिक घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतक के परिजनों को 25 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा घायलों के निःशुल्क उपचार एवं आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। जनगणना के प्रथम चरण में भोपाल नगर निगम सीमा में 7 लाख से अधिक मकानों की गणना का कार्य किया जा चुका है। साथ ही 3,285 जनगणना ब्लॉकों में से 2,800 मकानों का सूचीकरण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर भोपाल के रविंद्र भवन में कल सुरों की लोक सूफी शाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत पुष्पलता शर्मा ने बुंदेली विवाह गीत से की, उसके बाद मशहूर सूफी गायक उस्ताद मुनव्वर मासूम ने कव्वाली पेश की। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोलवाल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए प्रस्तुत है महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

महिला सभा सुनने वाली सभी बहनों को आपकी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, अपनी चर्चा में हम सबसे पहले आपसे बात करने जा रहे हैं दुनिया में शांति, सद्भाव और एकता का प्रतीक राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमन वेल्थ डे के विषय में, जिसे हम प्रतिवर्ष 24 मई को मनाते हैं। बहनों, ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी से आजाद हुए दुनिया के सभी देशों को एक साथ एक सूत्र में बांधे रखने का काम करता है राष्ट्रमंडल संगठन। बहनों, राष्ट्रमंडल संगठन का विचार सबसे पहले 1901 में महारानी विक्टोरिया ने अपने जन्मदिन के मौके पर रखा। उनकी मृत्यु इसी वर्ष हो गई। सन 1902 में सर्वप्रथम एम्पायर डे यानी साम्राज्य दिवस मनाया गया, लेकिन सन 1958 में हैरोल्ड मैकमिलन ने एम्पायर डे का नाम बदलकर कॉमनवेल्थ डे कर दिया। तब से इसे कॉमनवेल्थ डे के नाम से ही जाना जाता है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में स्थित है। बहनों, यह दिवस हमें यह संदेश देता है कि विश्व के सभी देशों को आपसी सहयोग, भाईचारे और समानता की भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज पूरी दुनिया अनेक चुनौतियों का सामना कर रही है। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं आतंकवाद फैल रहा है, तो कहीं जाति, धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में शांति और एकता का महत्व और भी बढ़ जाता है। यदि विश्व में शांति होगी तभी विकास संभव होगा। यदि देशों के बीच प्रेम और सहयोग रहेगा तभी मानवता सुरक्षित रह पाएगी। राष्ट्रमंडल केवल देशों का समूह नहीं है, बल्कि यह आपसी विश्वास, सम्मान और सहयोग का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि चाहे हमारी भाषाएं अलग हो, संस्कृति अलग हो या रहन सहन अलग हो, फिर भी हम सब एक परिवार की तरह रह सकते हैं। भारत जैसे देश ने हमेशा वसुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरा विश्व एक परिवार है का संदेश दिया है। आज युवाओं की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वे समाज में प्रेम और भाईचारे का वातावरण बनाएं। हमें किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने के बजाय हमें मिलकर समस्याओं का समाधान निकालना चाहिए। बहनों, महात्मा गांधी जी ने कहा था, अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम उनके विचारों को अपनाएं, तो समाज में शांति स्थापित की जा सकती है। हमें अपने जीवन में सहनशीलता, दया और सहयोग की भावना विकसित करनी चाहिए। बहनों, विश्व शांति केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। यदि हर व्यक्ति अपने भीतर प्रेम और सद्भाव की भावना रखे, तो दुनिया निश्चित रूप से अधिक सुंदर और शांतिपूर्ण बन सकती है। आइए हम सब मिलकर एक बेहतर विश्व के निर्माण में अपना योगदान दें। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक हमारे त्योहार के विषय में। बहनों, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन और महान संस्कृतियों में से एक है। हमारे त्योहार केवल उत्सव नहीं होते, बल्कि वे हमारी परंपराओं, आस्था, संस्कारों और सांस्कृतिक धरोहर के प्रतीक होते हैं। गंगा दशहरा भी ऐसा ही पावन पर्व है, जो इस वर्ष

25 मई को मनाया जाएगा। मान्यता है कि इस दिन माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा धरती पर आई और लोगों के पापों का नाश किया, इसलिए इस दिन गंगा स्नान और पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं है, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आस्था और जीवन का आधार है। गंगा हमारे खेतों को सींचती हैं, लोगों को जल प्रदान करती हैं और भारतीय सभ्यता को जीवित रखती हैं। इसीलिए हमारी संस्कृति में गंगा को माँ कहा गया है। गंगा दशहरा हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी नदियों और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। आज नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो रही हैं। यदि हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बचाना चाहते हैं तो हमें गंगा सहित सभी नदियों को स्वच्छ रखना होगा। त्यौहार समाज में प्रेम, एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ाते हैं। परिवार और समाज के लोग मिलकर पूजा करते हैं, दान पुण्य करते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। यही हमारी भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। आज के आधुनिक युग में कुछ लोग अपनी संस्कृति और परंपराओं से दूर होते जा रहे हैं। हमें अपने त्योहारों के महत्व को समझना चाहिए और नई पीढ़ी को भी इनके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि अपनी संस्कृति को बचाना ही अपने देश की पहचान को बचाना है। बहनों, गंगा दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। आइए हम सभी माँ गंगा का सम्मान करें, पर्यावरण की रक्षा करें और अपनी महान संस्कृति को आगे बढ़ाएं।

आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं अपनी क्षमता खुद पहचाने और इसे कैरियर बनाए के विषय में। बहनों, हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेष प्रतिभा अवश्य होती है। किसी को संगीत पसंद होता है, किसी को खेल, किसी को चित्रकला, तो किसी को विज्ञान और तकनीकी। लेकिन अक्सर लोग अपनी असली क्षमता को पहचान नहीं पाते और दूसरों की नकल करने लगते हैं। यही कारण है कि कई लोग जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाते। बहनों, सफलता का पहला कदम है स्वयं को पहचानना। जब हम अपनी रुचि को और क्षमता को समझ लेते हैं, तब सही दिशा में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यदि किसी बच्चे की रुचि खेल में है और उसे ज़बरदस्ती डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए कहा जाए, तो वह कभी पूरी खुशी और सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। आज के समय में करियर के अनेक विकल्प उपलब्ध हैं। पहले लोग केवल कुछ सीमित क्षेत्रों को ही अच्छा करियर मानते थे, लेकिन अब संगीत, अभिनय, फोटोग्राफी, डिजिटल मार्केटिंग, एनिमेशन, खेल, लेखन, यूट्यूब, डिजाइनिंग और कई नए क्षेत्रों में भी शानदार अवसर है। बहनों, हमें अपनी कमजोरी से डरने की बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत, आत्मविश्वास और निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिभा को सफलता में बदल सकता है। देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने कहा था, सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। विद्यार्थी को चाहिए कि वे अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखे और उसी दिशा में मेहनत करे। माता पिता और शिक्षकों को भी बच्चों की रुचि को समझना चाहिए और उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। हर व्यक्ति अनोखा है। यदि हम अपनी क्षमता को लें और उसे सही दिशा दें, तो निश्चित रूप से ही हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम सभी अपनी प्रतिभा को पहचानें, उसे निखारें और अपने सपनों को साकार करें। आगे बहनों, अपनी चर्चा में हम आपसे बात करने जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की 7 बातों के विषय में। बहनों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी समय समय पर देशवासियों को ऐसे संदेश देते हैं जो केवल व्यक्तिगत जीवन ही नहीं बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं। वैश्विक तनाव और आर्थिक चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को आर्थिक रूप से मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के लिए

नागरिकों से 7 महत्वपूर्ण अपीलें की हैं। इनका मुख्य उद्देश्य विश्व मुद्रा भंडार की बचत करना और देश को आत्मनिर्भर बनाना है। ये 7 बातें इस प्रकार हैं। पहली, ईंधन की खपत कम करें। पेट्रोल डीजल के उपयोग को सीमित करें। जहां संभव हो वहां मेट्रो या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें और कार पुलिंग को अपनाएं। दूसरी, सोने की खरीदारी टालें। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने के लिए कम से कम 1 साल तक अनावश्यक सोना न खरीदें। विदेशी यात्राओं में कमी। गैर जरूरी विदेश यात्राओं और विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग करने से बचें। चौथी, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं। दफ्तरों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया ताकि ईंधन और समय की बचत भी हो। उन्होंने यहाँ पर हमें यह भी बताया कि इसका प्रयोग हम लोग कोरोना काल में कर चुके हैं। पांचवी, खाद्य तेल का कम उपयोग करें। सेहत और देश के आयात बिल को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक खाद्य तेल के उपयोग में कमी लाएं। छठवीं, प्राकृतिक खेती को अपनाएं। किसानों से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और प्राकृतिक खेती के तरीकों को अपनाने की अपील की गई है। सातवीं, स्वदेशी अपनाएं। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए विदेशी ब्रांडों के बजाय स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता दी। बहनों, इसमें उन्होंने लोगों से खाद्य तेल का कम उपयोग करने और सोने की खरीदारी से बचने की अपील की है, जो हम बहनों से सीधा जुड़ा है। बहनों, यदि हम खाद्य तेल की बात करें तो आजकल लोग तला भुना भोजन अधिक खाने लगे हैं। इससे मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और कई अन्य बीमारियां बढ़ रही हैं। यदि हम तेल का सीमित उपयोग करें और संतुलित भोजन अपनाएं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। बहनों, प्रधानमंत्री जी का यह संदेश केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि यह देश हित से भी जुड़ा है। भारत को खाद्य तेल का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करना पड़ता है। यदि खाद्य तेल की खपत कम करेंगे तो देश का विदेशी मुद्रा खर्च भी हम कम कर पाएंगे और आत्मनिर्भर भारत का सपना मजबूत होगा। इसी प्रकार सोने की अत्यधिक खरीदारी भी देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव डालती है। भारत में लोग सोने को निवेश और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते हैं, लेकिन अत्यधिक सोना खरीदने से देश का पैसा विदेशों में जाता है, क्योंकि लगभग 90% सोना आयात किया जाता है। बहनों, प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि लोग अपनी बचत को उत्पादक कार्यों में लगाएं, जैसे शिक्षा, व्यवसाय, स्टार्टअप और देश के विकास से जुड़े क्षेत्रों में निवेश करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हमें समझना चाहिए कि छोटी छोटी आदतें भी देश के विकास में बड़ा योगदान दे सकती हैं। यदि हर नागरिक जिम्मेदारी से संसाधनों का उपयोग करे तो भारत तेजी से प्रगति कर सकता है। बहनों, प्रधानमंत्री जी के संदेश केवल सलाह नहीं बल्कि देश के उज्जवल भविष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हमें स्वस्थ जीवन अपनाना चाहिए, अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए और देश हित में सर्वोपरि रहना चाहिए। आइए हम सभी एक जागरूक नागरिक बने और देश के विकास में अपना योगदान दें।

बहनों, 25 तारीख को गंगा दशहरा है और इस दिन शिवपुरी अंचल में मंदिरों में भी आम खरबूजा दान करने का चलन बहुतायात में है और इन दिनों बाजार में खरबूजे और आम बहुत ही आ रहे हैं। तो चलिए खाना खजाना में बनाते हैं खरबूजे की कुल्फी। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप पका हुआ और बारीक कटा हुआ खरबूजा, आधा लीटर फुल फैट दूध, आधा कप कंडेंस्ड मिल्क, चीनी स्वाद अनुसार। मैंने यहाँ पर 3-4 चम्मच ली है, आप अपने अनुसार ले सकते हैं क्योंकि हम इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी मिला रहे हैं। 1/4 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, सजाने के लिए बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स जो भी आपके घर में अवेलेबल हों, 2 बड़े चम्मच मलाई। अब एक भारी तले के बर्तन में दूध डालकर मध्यम आँच पर 10-12 मिनट तक पकाएं। बीच बीच में चलाते रहें ताकि दूध तले में ना लगे। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क और चीनी डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं। गैस बंद करें और दूध को पूरी तरह ठंडा होने दें। खरबूजे के टुकड़ों को मिक्सी में पीसकर इसकी स्मूदी बना लें। अब ठंडे दूध में खरबूजे की प्यूरी मिलाएं, इलायची और ड्राई फ्रूट्स मिलाएं। मिश्रण को कुल्फी मोल्ड या ना हो आपके पास तो आप छोटे ग्लासों में भरकर ऊपर से फॉइल पेपर से पैक करके और इसमें एक स्टिक लगा सकती हैं। 6-8 घंटे या रात भर के लिए इसे फ्रीज़र में जमने के लिए रख दें। सुबह आप इसे डीमोल्ड करें और

तैयार है आपकी ठंडी ठंडी खरबूजे की कुल्फी। चलिए बहनों, अब बनाते हैं आम और नारियल से बनने वाले टेस्टी से लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप ताज़ा या सूखा हुआ नारियल, जिसे आप कद्दूकस कर लें, 3/4 कप आम का गाढ़ा पल्प, 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क, 1 बड़ा चम्मच घी, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर, 2 बड़े चम्मच दूध पाउडर, सजाने के लिए नारियल का बूरा। एक नॉनस्टिक पैन में घी गर्म करें, इसमें किसा हुआ नारियल डालकर 2 मिनट हल्का भून लें। अब आम का पल्प डालें और लगातार चलाते हुए 3-4 मिनट पकाएं। मिश्रण में कंडेंस्ड मिल्क और इलायची पाउडर डालें और गाढ़ा होने तक पकाएं। जब मिश्रण पैन के किनारे छोड़ने लगे तो गैस बंद करके इसे ठंडा होने दें। हाथ में थोड़ा घी लगाकर छोटे छोटे लड्डू बना लें। सूखे नारियल के बूरे में रोल करें, ऊपर से मनचाहे ड्राई फ्रूट से सजाकर 20 मिनट फ्रिज में रखें और ठंडे ठंडे सर्व करें। आप चाहे तो ये दोनों रेसिपी गंगा दशहरा पे बनाकर बजाय आम और खरबूजे चढ़ाने के भगवान को इसका भोग लगा सकती हैं। बहनों, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। अपनी कार्यक्रम सखी मोनिका चतुर्वेदी को दे इजाज़त।

आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सदी हो तुम, या यूं कहें वक्त की रफ्तार। कच्ची यादों से उम्मीदों के चिराग जगमगाने तक, यूं ही चलते चलते अचानक कुछ याद आ जाने पर, हर कदम पर रहे हो साथ साथ। मनोरंजन, समाज और इतिहास तुम्हारी जुबान से ही तो सुना है हमने। सदा बहार हो तुम, बेमिसाल हो तुम, देश की आवाज हो तुम।
1: आकाशवाणी,
2: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लोक संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सुधीर बाबू पांडे के गाए

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुधीर बाबू पांडे द्वारा गाए लोकगीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। सुगम संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति है।

0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बद्री प्रसाद नागर द्वारा गाए भजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति थी। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: मैं विनय उपाध्याय। आकाशवाणी की यात्रा के 9 दशक पूरे हो रहे हैं। ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन 3 पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: नमस्कार, मैं राजीव वर्मा, स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ा हुआ हूं और आप सभी से गुजारिश करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप भी इससे जुड़ें और अपने कार्यालय, घर, कॉलोनी, मोहल्लों को स्वच्छ रखें। धन्यवाद। जय हिंद।
5: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आपके लिए प्रस्तुत है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में फिल्म स्टैनली का।

हितेश सोनिक का संगीत, अमोल गुप्ते के लिखे बोल, सुखविंदर सिंह की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म सैंडी का डब्बा से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है शान और आमिर खान की आवाज़ में फिल्म तारे ज़मीन पर से।

0: शंकर एहसान रॉय का संगीत प्रसून जोशी के लिखे बोल, आमिर खान और शान की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म तारे ज़मीन पर से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेनजोंगा की 5 धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह लेख खांग चेनजोंगा को सिक्किम की भूमि, स्मृति और चेतना के रक्षक के रूप में चित्रित करता है और इसके सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब दोनों पक्ष नियमित रूप से एक दूसरे के संपर्क में हैं

0: उन्होंने यह भी कहा कि खाड़ी क्षेत्र के संबंध में भी चर्चा हुई और क्वाड बैठक से पहले हिंद प्रशांत क्षेत्र प्राथमिकता बना हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते का जल्दी होना जरूरी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कर्नाटक के दौरे पर हैं। इससे पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने सिंगरौली जिले के विकास के बारे में चर्चा की
1: और ये आने वाले समय की दृष्टि से हम इसका मास्टर प्लान बनाएंगे सिंगरौली के लिए और विकास के लेकर के मध्य प्रदेश सरकार के पास कई सारे प्रोजेक्ट हैं, बहुत जल्दी उनके रिजल्ट भी आएंगे। और जिस प्रकार से हमने अपने निवेश और रोजगार को लेकर के गत वर्ष काम किया था उसके बलबूते पर ये पूरे हमारे आसपास के जिलों को भी रोजगार यहाँ मिले, इस तरह का प्रबंधन कर रहे हैं।
0: भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत के मामले का उच्चतम न्यायालय ने कल स्वतः संज्ञान लिया है। मामले में सोमवार को देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की पीठ सुनवाई कर सकती है। ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दोबारा पोस्टमार्टम किया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली एम्स की 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम हाईटेक इक्विपमेंट के साथ भोपाल पहुंची है। इससे पहले आरोपी समर सिंह को कल अदालत ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया था। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। लोगों को फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना जिलों में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। सरकार वजन और माप की जांच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जांच केंद्रों GSTC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि नए नियमों के तहत ये केंद्र वजन और माप की 23 श्रेणियों का सत्यापन कर सकेंगे। इनमें पेट्रोल और डीजल, CNG, LPG, LNG और हाइड्रोजन डिस्पेंसर की जांच भी शामिल है। इसका उद्देश्य व्यापार को पारदर्शी बनाना, व्यवस्था में तकनीक के उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुरूप आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को बढ़ावा देना है। प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अब तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। अब तक लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर प्रदेश पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। गेहूं का उपार्जन अभी भी जारी है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर मंडल स्थित रेल उत्सव हाल मदन महल में 19वें रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 211 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नर्मदापुरम जिले की ग्राम पंचायत मलोथर में प्रशासन आपके द्वार अभियान के तहत रात्रि चौपाल आयोजित की गई। प्रभारी कलेक्टर ने ग्रामवासियों से संवाद कर शासकीय योजनाओं की जानकारी दी। और रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश एथलेटिक्स अकादमी की खिलाड़ी नीतिका आकरे ने महिला पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। कुछ ही पलों में दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार दिबांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में रेलवे ट्रैक के पास हुए विस्फोट में 24 लोग मारे गए। और फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट आज से पेरिस में शुरू हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर बातचीत की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ये भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से है। डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है।
2: भारत और अमेरिका के बीच राजनीतिक समझ के बारे में हमारे बीच एक रणनीतिक साझेदारी है। ये साझेदारी कई क्षेत्रों में दोनों पक्षों के राष्ट्रीय हितों से बनती है। बैठक में हमने पश्चिम एशिया, मध्य पूर्व, भारतीय उपमहाद्वीप और पूर्वी एशिया से संबंधित घटनाक्रमों पर चर्चा की।
1: उन्होंने कहा कि दोनों देशों के संबंधों का पूरी दुनिया पर असर पड़ता है और कई क्षेत्रों में उनके हित एक समान हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा चर्चा जटिल वैश्विक परिस्थितियों में हुई है, लेकिन उन्हें खुले मन से और सार्थक चर्चा का विश्वास है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्दी अंतिम रूप दिया जाना जरूरी है। विदेश मंत्री ने ऊर्जा व्यापार में हुए विस्तार का स्वागत किया और कहा कि अधिकाधिक स्रोतों से ऊर्जा की आपूर्ति भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है। डॉ जयशंकर ने यह भी कहा कि दोनों देशों की जनता के परस्पर संबंध महत्वपूर्ण हैं और कानूनी तौर पर आवाजाही में व्यवधान उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ईरान संघर्ष के बारे में श्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका दोनों इस पक्ष में है कि दुनिया भर में ऊर्जा की कीमतें कम रहें।
2: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते। These would be the principles with which we would
1: approach that region. अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि भारत अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण सामरिक भागीदारों में से है।
3: एक रणनीतिक साझेदारी बहुत अलग चीज है, ये उससे कहीं अधिक व्यापक है। जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं, उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: श्री रूबियो ने कहा कि दोनों देशों ने आतंकवाद की पीड़ा झेली है और दोनों देश उन मुद्दों पर एक जैसी राय रखते हैं जो आने वाली सदी की रूपरेखा तय करेंगे। श्री रूबियो ने कहा कि ऊर्जा के मुद्दे पर भी दोनों देशों की राय एक समान है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अमेरिका 21वीं सदी के लिए अपनी आप्रवासन नीति को नया रूप दे रहा है। ईरान के बारे में उन्होंने कहा कि अगले कुछ घंटों में सकारात्मक खबरें आ सकती हैं। दोनों नेताओं ने खाड़ी और हिंद प्रशांत सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। श्री रूबियो की भारत यात्रा ऐसे समय में हुई है जब क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक भी होने वाली है। इससे पहले विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज अपने उद्घाटन संबोधन में कहा कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक सामरिक भागीदारी है जो गहरे सहयोग पर आधारित है। उन्होंने बात नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ बैठक में कही। अमेरिकी विदेश मंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत पहुंचे। वे 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोटेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रियों के बीच प्राथमिक क्षेत्रों में क्वाड सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतगणना जारी है। ताजा समाचार मिलने तक 16वें दौर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा काफी आगे चल रहे हैं। उन्हें अब तक 76,397 वोट मिले हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी दूसरे स्थान पर हैं। कांग्रेस के अब्दुल रजाक मुल्ला तीसरे और तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार जहांगीर खान चौथे स्थान पर हैं। वोटों की गिनती 14 केंद्रों पर की जा रही है। मतगणना 21 चरणों में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर देश में अराजकता फैलाने का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का बयान कांग्रेस और विपक्षी दलों की साजिश की ओर इशारा करता है। श्री गोयल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना और विदेश जाकर विदेशी शक्तियों से भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने की अपील करना है। मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन मंत्री राजीव रंजन सिंह कल मिजोरम के आइजोल में समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मछली पालन, पशुपालन और दुग्ध उत्पादन से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में करस्योंग इकाई ने आज आकाशवाणी एट 90 मैराथन का आयोजन किया। करस्योंग के विधायक सोनम लामा ने मैराथन को रवाना किया। श्री लामा ने कहा कि आकाशवाणी की 90 वर्ष की अनवरत और गौरवशाली सेवाओं का स्मरण नेपाल और नेपाली भाषियों के लिए अत्यंत गौरव का क्षण है। 8 जून 1936 को स्थापित आकाशवाणी करस्योंग नेपाली भाषियों को लगातार शिक्षा, सूचना और मनोरंजन प्रदान कर रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। ये सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। ये समस्या जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई कॉपी के लिए आवेदन के दौरान हुई थी। बोर्ड ने कहा है कि कुछ मामलों में ज्यादा भुगतान काटा गया है जबकि कुछ मामलों में कम राशि ली गई है। सीबीएसई के अनुसार अतिरिक्त भुगतान के मामलों में राशि खाते में लौटा दी जाएगी। कम भुगतान के मामले में विद्यार्थियों को बाकी भुगतान के लिए अलग से सूचित किया जाएगा। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि उचित शुल्क वाले सभी आवेदनों के मामलों में उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराई जाएगी और विद्यार्थियों को नए सिरे से आवेदन नहीं करना होगा। महाराष्ट्र की नाशिक अदालत में विशेष जांच दल ने टीसीएस कंपनी से संबंधित दुष्कर्म और धर्मांतरण मामले में 1,500 पन्नों का अभियोग पत्र दाखिल किया है। जांच दल के प्रमुख संदीप मिटके ने बताया कि 4 आरोपियों के खिलाफ कल अभियोग पत्र दाखिल किया गया। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत व्यापक जन परामर्श के लिए प्रारूप प्रकाशित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन और संस्था 21 जून तक प्रारूप के बारे में आपत्ति तथा सुझाव दे सकते हैं। अधिनियम में एक वर्ष में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। इसके अनुसार निर्धारित समय में काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। भारत ने अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्रों को चिकित्सा सामग्री और सुरक्षा किट की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सामग्री उभरते इबोला संकट को देखते हुए भेजी गई है। उन्होंने कहा कि भारत इस संकट से निपटने में अफ्रीका का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इबोला संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अफ्रीकी देश कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा न करने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने इन देशों में मौजूद भारतीय नागरिकों से भी स्थानीय स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने और एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला को आपात स्थिति घोषित किया है। इबोला वायरस से फैलने वाला रोग है जिसमें बुखार और रक्त स्राव होता है। फिलहाल इसके लिए कोई टीका या इलाज उपलब्ध नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आज रेलवे लाइन पर हुए धमाके में 24 लोग मारे गए हैं और कई घायल हैं। यह धमाका राजधानी क्वेटा के चमन फाटक रेलवे स्टेशन के पास हुआ। धमाके में एक रेलगाड़ी को मामूली नुकसान पहुंचा और आसपास खड़ी 10 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। धमाके के बाद एहतियात के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। शहर के कई संस्थानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है क्योंकि मलबे में दबे यात्रियों को अब भी निकाला जा रहा है। उत्तरी चीन में एक कोयला खदान में हुए धमाके में 82 लोग मारे गए हैं। शुक्रवार को धमाके के समय लगभग 247 श्रमिक ड्यूटी पर थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने घायलों के इलाज और खदान में बचे लोगों की तलाश के लिए निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शानशी प्रांत में खान दुर्घटना में मरने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में चीन के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लापता लोगों की तत्काल और सुरक्षित वापसी की कामना भी की है। भारत में चीन के राजदूत शिव फेईहुंग ने शानसी में खान दुर्घटना के मृतकों के प्रति संवेदना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। चीन के राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि दुर्घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के पास गोलीबारी के बाद त्वरित कार्रवाई के लिए अधिकारियों और सीक्रेट सर्विस एजेंटों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर कहा कि संदिग्ध का हिंसक इतिहास था। पेरिस में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के मुकाबले अब से कुछ देर में शुरू होंगे। पहला मैच 3 बार के चैंपियन सर्बिया के नोवाक जोकोविच और फ्रांस के जियोवानी पेत्री पेरिकार्ड के बीच होगा। आज ही अलेक्जेंडर ज्वेरेव और टेलर फ्रिट्स आमने सामने होंगे। विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर अपना पहला मैच कल खेलेंगे। पुरुष डबल्स में भारत के युकी भांबरी न्यूजीलैंड के माइकल वेनस के साथ और एन श्रीराम बालाजी ब्राजील के मार्सेलो डेमोलिनर के साथ खेलेंगे। अन्य खेल खबरों के साथ है जागृति शर्मा।
4: आईपीएल क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में दोपहर बाद 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से होगा। विजेता टीमों को प्लेऑफ में जगह मिलेगी। इससे पहले कल पंजाब किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 7 विकेट से हरा दिया। उधर गुरविंदर वीर सिंह ने फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में पुरुषों की 100 मीटर स्पर्धा का स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्होंने नए राष्ट्रीय कीर्तिमान के साथ राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अनिमेश कुजूर ने रजत और प्रणव प्रमोद ने कांस्य पदक जीता है। इस बीच ईरान की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप के लिए अपना बेस कैंप अमेरिका से मैक्सिको ले जाने का फैसला किया है। इसके लिए उसे फीफा से मंजूरी भी मिल गई है। फीफा विश्व कप अगले महीने से शुरू होगा। बेस कैंप अमेरिका से हटाने का फैसला ईरान, अमेरिका और इसराइल के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव को देखते हुए लिया गया है।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संपन्न हो गई है। बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुपक्षीय सहयोग के लिए कई संकल्प लिए गए। बैठक में दिमागी दौरों, टीबी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, आपातकालीन चिकित्सा, हीमोफीलिया, प्रिसिजन मेडिसिन और विकिरण से संबंधित निर्णय लिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि स्वस्थ समाज ही समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज सुबह गुजरात के अहमदाबाद में साइकिल दिवस और राष्ट्रमंडल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से प्रदूषण के समाधान के साथ साथ ईंधन की भी बचत होती है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू चलने की आशंका व्यक्त की है। अगले 5 दिन तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को महत्वपूर्ण बताया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा, शीघ्र व्यापार समझौता जरूरी, देश के लिए ऊर्जा आपूर्ति के विविधीकरण पर जोर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र के पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने भारी बढ़त हासिल की। सरकार ने इबोला के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भारतीय नागरिकों को कांगो, युगांडा और दक्षिण सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति है।

0: बच्चों बोलो
1: जय हिंद।
2: मुस्कान सुनने वाले सभी बच्चों को प्रीति दीदी का ढेर सारा प्यार। बच्चों, अभी तो आप सभी की छुट्टियां चल रही हैं, तो कोई दादी के हाथ के पकवान खा रहा होगा, तो कोई नानी या मामी के हाथ का, कोई तीर्थ यात्रा पर होगा, तो कोई किसी पर्यटन स्थल का आनंद ले रहा होगा। पर इन सब के साथ आप सबको इंतजार होगा आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम मुस्कान का, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको आपकी दीदी कई सारी जानकारियां साझा करती हैं, साथ ही आपके साथ आपके कई साथी अपनी अपनी कविता कहानी के माध्यम से आपसे जुड़ते हैं। तो आइए बच्चों, चलते हैं आज के मुस्कान के सफर पर और साझा करते हैं आज की तारीख से जुड़ी जानकारी। तो बच्चों, आज यानी 24 मई को हम हर साल राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे मनाते हैं। अब हमारे बच्चे ये जानना चाहते होंगे कि ये राष्ट्रमंडल दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो बच्चों, ये दिवस वे सभी राष्ट्र मनाते हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे, या यूं कहें कि ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश थे, यानी जिन देशों पर अंग्रेजों का शासन था वे सभी देश इसे मनाते हैं। हमारे भारत पर भी अंग्रेजों का राज था, इसलिए हम भी राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। इसे 24 मई को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया का इस दिन जन्मदिन होता है। जानते हैं बच्चों, हमारा देश 1947 में स्वतंत्रता के बाद इसमें शामिल हुआ। अभी लगभग 54 देश राष्ट्रमंडल का हिस्सा हैं। बच्चों, अब हमारे आज के मुस्कान के सफर का अगला पड़ाव है, हमारा अगला क्रम। आओ जानें, क्योंकि इस समय हमारे बहुत से बच्चे यात्रा कर रहे होंगे, घर से बाहर जा रहे होंगे, या फिर कोई नई चीजें सीखने भी जा रहे होंगे, तो आज हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा की, जानेंगे कि कैसे आपको अपना ख्याल रखना है। बच्चों, सबसे पहले तो हम जब भी कहीं बाहर जा रहे हों तो अपनी मम्मी के साथ पैकिंग करवाने में सहयोग करें, ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको भी पता हो कि कौन सा सामान कहाँ रखा है। यात्रा के दौरान अपने बड़ों का साथ कभी ना छोड़ें, हमेशा उनकी नज़रों के सामने बने रहें। अगर कोई व्यक्ति जिसे हम नहीं जानते वो हमें खाने पीने को दे तो कभी ना लें। अगर कोई कुछ गलत व्यवहार करे तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं, उनके फ़ोन नंबर याद रखें। अगर किसी कारणवश हम खो जाएं तो अपने आसपास पुलिस को खोजें और उनके माध्यम से अपने पेरेंट्स से कांटेक्ट करें। अगर आपने अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को सीखने के लिए इन छुट्टियों में कोई क्लास ज्वाइन की है, तो वहाँ आते जाते समय या क्लास में भी अगर आपको किसी का भी कोई व्यवहार ठीक नहीं लगता तो तुरंत अपने पेरेंट्स को बताएं। बच्चों, अगर आप किसी भी वजह से अकेले घर से बाहर जा रहे हैं तो घर में पता होना चाहिए आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक लौटेंगे। रास्ते में जाते समय भी अपने चारों तरफ का ध्यान रखें ताकि आप सुरक्षित बने रहें। बाकी मम्मी पापा के साथ जाते समय तो हम सुरक्षित होते ही हैं और उनके साथ अपने सफर का आनंद बड़ी खूबसूरती के साथ लेते हैं।
0: बच्चों, हर बार की तरह इस बार भी कई सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे अपनी अपनी कविता और कहानियों के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो हम बारी बारी से जानेंगे बच्चों से कि वो हमारे लिए क्या तैयार करके आए हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ी सी बातें हो जाएं। तो बच्चों, गर्मी की छुट्टियां कैसी बीत रही हैं?
3: बहुत अच्छी।
0: अच्छा, बारी बारी से सब बताएंगे कि कौन क्या कर रहा है इन छुट्टियों में।
4: मैं बैडमिंटन सीख रही हूँ, मैं डांस सीख रही हूँ,
5: मैं फुटबॉल सीख रहा हूँ।
0: इसका मतलब है सभी बच्चे अपनी अपनी छुट्टियों का उपयोग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें सीख रहे हैं जो उनके आगे कुछ ना कुछ काम तो आने वाला है। अच्छा, ये बताओ, ये हम जो चीज़ें सीखते हैं वो हमारे लाइफ में क्या काम आ सकती हैं, क्या सिखाती हैं हमें?
5: अनुशासन।
0: और क्या सीख सकते हैं?
4: कॉन्फिडेंस।
0: कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। कि आगे जाके अगर हमें कभी कोई अपनी लाइफ में कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो ये जो चीज़ें हम सीखते हैं वो हमें ये काम आ जाता है आगे जाके कि हम कोई भी निर्णय बड़े आराम से ले सकते हैं। अच्छा, अब सब बच्चे अपना अपना नाम बताते जाएंगे और क्या तैयार करके आए हैं वो बताते जाएंगे। बेटा, आपका क्या नाम है?
6: मेरा नाम अनन्या जैन है। मैंने एक लघु कथा, उसका शीर्षक है पुरानी किताब।
0: अच्छा, अब हमारे साथ अनन्या है और अनन्या हमारे लिए एक छोटी सी कहानी लेकर के आई हैं।
6: स्कूल की लाइब्रेरी में आर्यन को एक बहुत पुरानी किताब मिली। उसने पन्ने पीले पड़ चुके थे और ऊपर धूल जमी थी। बाकी बच्चे नए किताब और रंगीन किताबें चुन रहे थे, इसीलिए किसी ने उस किताब की तरफ ध्यान नहीं दिया। आर्यन उसे घर ले आया। जब उसने

0: पढ़ना शुरू किया तो उसने महान लोगों के शीर्षक और सफलता की कहानियाँ थीं। हर पन्ने पर नई नई सीख छिपी थी। अगले दिन शिक्षक ने पूछा, तुमने सबसे अच्छा क्या चीज़ सीखी? आर्यन मुस्कुराकर बोला, सर पुरानी चीज़ें हमेशा बेकार नहीं होती, उनमें अनुभव और सीख छिपी होती है। उस दिन से कई बच्चे भी लाइब्रेरी की पुरानी किताबें पढ़ने लगे।
1: बहुत ही अच्छी कहानी थी। इस कहानी का मतलब ये था कि कोई भी चीज़ कभी पुरानी नहीं होती। दूसरी बात ये कि पढ़ने की जो आदत हमारी ख़त्म हो गई है, वो पढ़ने की आदत हमें दोबारा से डालनी चाहिए। पढ़ना ये नहीं है कि हमने अपना कोर्स कवर कर लिया, ट्यूशन में पढ़ लिया, बल्कि हमारे कोर्स में जो चीज़ें नहीं हैं वो भी नई नई चीज़ें हमें सीखना है, पढ़ के जानना है। और एक और चीज़ इस कहानी से हम सीखते हैं कि जो अनुभव होता है वो कभी भी बेकार नहीं जाता। किसी भी चीज़ का अनुभव हो, चाहे वो हम अपने घर के बड़ों से ले सकते हैं अनुभव, और चाहे अपने खुद के अनुभव से। अब हमारे साथ कौन जुड़ा है, अपना नाम बताओ बेटा।
2: मेरा नाम यशी जैन है।
1: यशी, यशी आप क्या तैयार करके आए हो?
2: मैंने एक लघु कथा तैयार करी है जिसका शीर्षक है समय की कीमत।
1: बहुत अच्छे, चलो एक और छोटी सी कहानी हमारे बच्चों के साथ साझा कर रही हैं यशी।
2: आरव हमेशा अपना काम कल पर टालता था, होमवर्क अधूरा रहता था और परीक्षा में भी उसके कम अंक आते थे। एक दिन उसके दादाजी ने उसे एक बंद घड़ी दी और कहा, जो समय रुक जाता है वह किसी के काम नहीं आता। आरव बात समझ गया और उसने समय से पढ़ाई शुरू की और धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगी। अब उसे समझ आ चुका था कि समय की कदर ही सफलता की पहली सीढ़ी है।
1: तो भाई बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये छोटी सी जो कहानी यशी ने हमें सुनाई कि समय कितना कीमती है, हमें समय का एक भी पल नहीं गंवाना चाहिए। अब आगे कौन क्या सुना रहा है?
3: हम दोनों साथ एक की कहानी सुनाएंगे। पहले ये आदि है, फिर आदि मैं।
1: अच्छा, तो कहानी तैयार की है कि कविता?
3: कविता
1: अभी, क्योंकि ये कहानी बोली थी। अच्छा, दोनों जन ने एक ही कविता तैयार की है। बिल्कुल सुनेंगे तुम दोनों की कविता। पहले दोनों जन अपना अपना नाम बताओ। क्या नाम है आपका?
3: शानवी जैन।
1: शानवी, और आपका?
4: कृषिका जैन।
1: कौन सी कविता है?
4: काका लाए एक कार।
1: काका लाए एक कार। तो बच्चों तैयार हो जाओ दोनों से एक ही कविता सुनने के लिए। आधी एक सुनाएगी और आधी दूसरी सुनाएगी। काका लाए एक कार।
4: काका लाए एक कार, लेकर उसको गए बाजार। एक दो तीन चार, उसके पहिए पूरे चार। पांच जगह हम गए घूमने, छह गोलगप्पे खाए हमने।
3: सात बार शीशी की, आठ गिलास पानी पिया। नौ बजे हम घर को आए, पूरी बात बताए सबको। कहा हमने दस बार, सबसे अच्छी अपनी कार।
1: बहुत अच्छे, सबसे अच्छी अपनी कार, क्योंकि इनके काका जी कार लाए थे, तो ऑब्वियसली है कार तो अच्छी होनी ही थी, है ना। और सब लोग मिलके बैठ के एक साथ जाते हैं घूमने के लिए। कौन कौन कहाँ कहाँ गया गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए?
3: नानी
1: के घर,
4: मामा की शादी में।
1: अच्छा, भगवान के दर्शन करने गए। भाई ये अच्छा रहता है, गर्मी की छुट्टियां आती हैं तो सबसे ज़्यादा खुश होती हैं मम्मियाँ, क्योंकि उन्हें अपने अपने मायके जाने को मिलता है, है ना। तो अब इनकी मम्मियों से जब हम बात करेंगे तब हम उनके अनुभव भी लेंगे। बाकी अभी तो बच्चों की खुशी दिख ही रही है छुट्टियों की। हाँ, तो अब आगे और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, कौन क्या सुना रहा है? क्या नाम है बेटा आपका?
5: अनुमित।
1: अनुमित क्या सुना रहे हो?
5: कविता।
1: कविता, एक और कविता। कौन सी कविता है बेटा?
5: देशभक्ति।

0: परिवार।
1: मेरा परिवार क्या है, कविता है कि कहानी?
0: कविता।
1: कविता, चलो सुनाओ।
0: दादी मेरी कहे कहानी, दादा दे पौधों को पानी, दीदी भैया खेल खिलाते, मम्मी पापा शेर कराते।
1: बहुत ही अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी सी कविताएं ये छोटे छोटे से बच्चे तैयार करके आए हैं। अब अगला और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, क्या नाम है बेटा आपका?
2: आराध्या जैन।
1: और आराध्या क्या सुना रही है हमें?
2: आज मैं आपको एक कहानी सुनाने।
1: कहानी, अच्छा चलो बढ़िया है। कौन सी कहानी है?
2: दो बैलों की कथा।
1: दो बैलों की कथा सुनाओ।
2: दो बैलों की कथा है। पहली बैल का नाम होता है हीरा, दूसरे का मोती। दोनों अपने मालिक जूरी के साथ रहते थे और जूरी उनसे जो भी काम कराता वह करते और जो खाने को देता वह सिर झुका के खा लेते। एक दिन जूरी का साला आया और उन दोनों बैलों को लेके अपने यहाँ लेके चला गया। उन दोनों बैलों को सूखा भूसा दे दिया और एक मोटी सी रस्सी से बांध दिया। वो दोनों जब वह सब खाने बैठे तब वहाँ से एक छोटी सी बच्ची आई और अपनी एक एक रोटी खिला के चली गई। फिर जब वो चली गई तो उन दोनों बैलों ने अपने मुख्य भाषा में बातें की कि अगर हमारे पास वाणी होती तो हम अपने मालिक से पूछते कि उनने हमें क्यों भेजा यहाँ पे सूखा भूसा यहाँ पे दे रहे हैं। जब वह सब सो गए फिर वो दोनों अपने मालिक के पास चले गए। जब जूरी सुबह उठा उन दोनों को देख के जूरी बहुत खुश हुआ। फिर गांव वाले तालियां बजाने लगे और गांव वाले उन दोनों के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाने लगे।
1: बहुत ही अच्छी कहानी है दो बैलों की कथा। ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी, हमारे सुनने वाले सभी बच्चों को हम बता दें कि ये मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जिसमें दो मूक पशुओं हीरा और मोती की कहानी बताई गई है। इस कहानी के माध्यम से ये भी बताया गया है कि दोस्ती क्या होती है, दोस्ती के साथ साथ स्वामी भक्ति क्या होती है, ये भी इस कहानी के द्वारा बताया गया है। तो अब हमारे साथ और कौन जुड़ रहा है, नाम बताओ बेटा आप अपना।
3: मेरा नाम तरुष जैन है।
1: तरुष क्या सुना रहा है?
3: मैं एक कविता यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ।
1: कविता, चलो भैया एक और कविता हमारे साथ लेके आए हैं तरुष।
3: सबसे पहले मेरे घर का अंडे जैसा था आकार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। फिर मेरा घर बना घोंसला सूखे टिनकों से तैयार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। फिर मैं निकल गई शाखाओं पर, हरी भरी थी जो सुकुमार, तब मैं यही समझती थी बस इतना सा है यह संसार। आखिर जब मैं आसमान में उड़ी दूर तक पंख पसार, तब समझ में मेरे आया बहुत बड़ा है यह संसार।
1: एक छोटी सी चिड़िया की कहानी कविता के माध्यम से हमने तरुष से सुनी। सच बात है, चिड़िया हमें पंख फैला के उड़ना ही नहीं सिखाती बल्कि सिखाती है कि हम अनुशासन से यदि अपने माता पिता की बात मानें तो हम बड़े आराम से पूरे आसमान को अपने वश में कर सकते हैं। अब आगे और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है बेटा? सबसे पहले आप अपना नाम बताओ।
0: वीर जैन।
1: वीर क्या तैयार करके आया है?
0: कविता।
1: कौन सी कविता है?
0: फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी ढालियों से नित सीखो, शीश झुकाना, दूध थता पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना।
1: देखो वीर ने कितनी अच्छी कविता सुनाई है। प्रकृति की हर एक चीज हमें सिखाती है कि हमें किस तरीके से रहना चाहिए और अपनी हर एक चीज को बिना किसी शर्त के साझा करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति कभी भी हमसे किसी चीज़ की मांग नहीं करती, बस देती है और देती है, वो हमें देना सिखाती है। अब और कौन हमारे साथ जुड़ रहा है, क्या नाम है बेटा आपका?
4: आगम जैन।
1: आगम, आगम क्या तैयार करके आए हो?
4: मैं एक कहानी।
1: कहानी, कौन सी कहानी है?
4: दो दोस्तों की कहानी।
1: दो दोस्तों की कहानी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अभी भी एक कहानी हमने सुनी, वो भी दोस्ती पे आधारित थी, ये भी है, सुनाओ।
4: दो दोस्त थे, एक का नाम था अमन और दूसरे का नाम था हामिद। वो लोग रेगिस्तान को पार कर रहे थे। अमन की लड़ाई हो गई हामिद से कुछ देर बाद, तो अमन ने हामिद को थप्पड़ मार दिया, तो हामिद ने रेत पर जाके

0: अपनी उंगली से लिखा कि आज अमन ने मुझे थप्पड़ मारा। और फिर कुछ देर बाद उन्हें प्यास लगने लगी तो अमन को दूर से एक तालाब जैसा कुछ दिखा, तो उन लोगों को लगा कि वहाँ पे पानी है। वो लोग दौड़ के गए, अमन उस तालाब पर डूब गया, लेकिन वो तालाब नहीं था, दलदल था। फिर अमन गिर गया था दलदल में, तो फिर हामिद ने उसके अपनी जान पर खेल कर बचा लिया। फिर अमन ने पत्थर पर फिर से लिखा कि आज अमन नहीं, हामिद ने मेरी जान पे खेल कर रक्षा की। फिर हामिद ने यह पूछा कि जब मैंने तुम्हें मारा थप्पड़ तो तुमने रेत पर क्यों लिखा, और जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तो तुमने पत्थर पर क्यों लिखा। तो अमन ने हामिद को यह जवाब दिया कि जब तुमने मुझे मारा तो मैंने इसलिए वो रेत में लिखा कि जब हवा चलेगी तो वो मिट जाएगा, और जब तुमने मेरी जान बचाई तो मैंने पत्थर पर इसलिए लिखा क्योंकि जितनी भी आंधी चल जाएगी लेकिन पत्थर में से वो जो मैंने लिखा है वो नहीं मिटेगा।
1: बहुत अच्छी कहानी है। देखो, दो दोस्तों की ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अच्छी चीज़ें याद रखनी चाहिए और बुरी चीज़ों को भूल जाना चाहिए। अच्छी चीज़ें हमेशा साथ जाती हैं और बुरी चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो सब कुछ ख़राब कर देती हैं। क्या नाम है? अभ्यांक। अभ्यांक कितने साल के हो?
2: 4
1: साल के हो। अच्छा, पढ़ते हो?
2: हाँ।
1: कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG में पढ़ते हो। क्या सुनाओगे हमको? सुनाओ
2: कविता।
1: कविता सुनाओ।
2: बालक माँ का प्याला ना देख हमाल तते महान दहिन।
1: सही बात है, देश हमारा सबसे महान, और इस महान देश के नाम के साथ समय हो रहा है सभी बच्चों से विदा लेने का। मेरे साथ सब बोलेंगे
3: जय।

अभी आप सुन रहे थे बच्चों का कार्यक्रम मुस्कान। ये आकाशवाणी जबलपुर की प्रस्तुति थी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित हमारा कार्यक्रम फिल्म संगीत, जिसमें पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं अभिजीत की आवाज़ में फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से।

जतिन ललित का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, अभिजीत की आवाज़ में गीत सुना आपने फिल्म फिर भी दिल है हिंदुस्तानी से। कार्यक्रम का अगला गीत आपके लिए प्रस्तुत है अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में, फिल्म का नाम है यस बॉस।

0: जतिन ललित का संगीत जावेद अख्तर के लिखे बोल, अभिजीत और अलका याग्निक की आवाज़ में गीत सुना अपने फिल्म यस बॉस से। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा, कृपया प्रतीक्षा करें। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, प्रस्तुत है इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक लेख साझा किया। इस लेख में बताया गया है कि किस तरह सिक्किम के खांग चेनजोंगा की 5 धरोहर 2047 तक विकसित सिक्किम का लक्ष्य प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। सरकार वजन और माप की जाँच प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए जाँच केंद्रों GATC की भूमिका का विस्तार करेगी। इसके लिए 2013 के नियम में संशोधन किया गया है। भोपाल में सेवानिवृत्त जज की बहू ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में ट्विशा के शव का आज एम्स भोपाल में दिल्ली से आई 4 सदस्यीय विशेष फॉरेंसिक टीम द्वारा दोबारा पोस्टमार्टम किया गया। आज शाम उनका अंतिम संस्कार भदभदा विश्राम घाट पर किया जाएगा। प्रदेश न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कल तक 13,10,000 किसानों से गेहूं का उपार्जन कर देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश लगभग 100,00,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन कर पंजाब के बाद दूसरे स्थान पर है। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और हीट वेव का असर बना रहेगा। फिलहाल राहत मिलने की संभावना कम है। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में अब से कुछ देर में 3:30 बजे से होगा। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब हम आपको आज की संध्याकालीन सभा के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। शाम 5:02 पर सुनिए युवा साथियों का विशेष कार्यक्रम युवाणी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति होगा। रात 7:21 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसके अंतर्गत रात 7:30 से प्रसारित होगा सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम सभा, जहाँ ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य विषय पर श्रोताओं की शंकाओं का समाधान करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित होंगे विशेषज्ञ डॉक्टर के नेमा। कार्यक्रम सुर्खियों में सुनिएगा रात 8:00। 8:15 पर सुनिएगा इंदौर केंद्र की प्रस्तुति कार्यक्रम डगर विकास की, विषय होगा जल जीवन मिशन। 9:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा में रात 10:00 सुनिएगा पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। इसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम।

ये आकाशवाणी भोपाल है। अब हमारी ये सभा मीडियम वेव पर समाप्त होती है। शाम 5 बजे से मीडियम वेव पर सभा पुनः आरंभ होगी। इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

0: अभियान को जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में व्यापक जल संरक्षण गतिविधियों और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जन जन को इस पुनीत कार्य से सीधे जोड़ा जा सके। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा के परिणाम के संबंध में नई सूचना जारी की है। यह सूचना 21 और 22 मई को गलत फीस कट जाने को देखते हुए जारी की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और IPL क्रिकेट में आज दो मुकाबले होंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 5:02 हुए हैं। युवा साथियों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवावाणी। आज की प्रस्तुति आकाशवाणी शिव।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी दैनिक कार्यक्रम युववाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त शिवानी राठौर। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा करेंगे गर्मी के मौसम में लू से बचें विषय पर। साथ ही हमारा दूसरा विषय है मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दोस्तों, इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का पालन करने और राष्ट्र के हित में योगदान देने पर। दोस्तों, क्रम वार्ता में हम आपको वार्ता सुनवाएंगे सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें विषय पर। वार्ताकार हैं प्रज्ञा गौतम। साथ ही क्रम जीवन आलोक में हमारा चर्चा का विषय रहेगा जैसी संगत वैसी रंगत। और दोस्तों, हम आपका मनोरंजन कराएंगे कुछ खूबसूरत गीतों के साथ। दोस्तों, क्रम आज की बात में हम चर्चा कर रहे हैं गर्मी के मौसम में लू से बचे विषय पर। दोस्तों, गर्मी के मौसम में लू से बचाव आवश्यक है। गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, उच्च तापमान और कई स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आता है। इस मौसम में यदि सही सावधानी न बरती जाए तो शरीर पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना अत्यंत आवश्यक है। सही खान पान, पर्याप्त पानी का सेवन और दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव कर हम स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पानी की मात्रा अधिक से अधिक लेनी है। शरीर से पसीने के रूप में पानी की कमी तेजी से होती है, जिससे डिहाइड्रेशन यानी जल की कमी हो जाती है। इससे बचने के लिए दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, फलों का रस जैसे तरल पदार्थ भी शरीर को ठंडा और हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं। तरबूज, खरबूज, खीरा और संतरा जैसे पानी से भरे फल भी हमें अत्यंत लाभ प्रदान करते हैं। दोस्तों, गर्मियों में खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। बाहर का तला भुना और मसालेदार भोजन कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि यह पाचन तंत्र पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इसके बजाय हल्का, सुपाच्य और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। हरी सब्जियां, दालें और सलाद का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद आवश्यक है। दोस्तों, इस मौसम में धूप से बचाव भी अत्यंत आवश्यक है। तेज धूप में अधिक देर तक रहने से लू हीट स्ट्रोक लग सकती है, जो गंभीर समस्या बन सकती है। इसलिए दोपहर के समय खासकर 12 से 4 के बीच बाहर निकलने से बचना चाहिए। यदि बाहर जाना जरूरी हो तो सर ढककर, हल्के ढीले कपड़े पहनकर, धूप का चश्मा लगाकर या छाते का उपयोग करके जाना चाहिए। इससे शरीर को धूप के दुष्प्रभाव से बचाया जा सकता है। दोस्तों, गर्मियों में पर्याप्त आराम और नींद लेना भी बेहद जरूरी है। अधिक गर्मी के कारण शरीर जल्दी थक जाता है, इसलिए दिन भर में थोड़ा विश्राम करना और रात में पर्याप्त नींद लेना आवश्यक है। साथ ही हल्का व्यायाम, योग करना भी शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। दोस्तों, इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी आवश्यक है। गर्मी में चिड़चिड़ापन और थकान बढ़ सकती है, इसलिए शांत रहने, सकारात्मक सोच रखने और ठंडी जगहों पर समय बिताने की कोशिश करनी चाहिए। संगीत सुनें, किताबों को पढ़ें और परिवार के साथ समय बिताएं, जिससे मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान होती है। दोस्तों, हम कह सकते हैं गर्मियों में स्वास्थ्य की देखभाल करना कोई कठिन कार्य नहीं है, बल्कि यह हमारी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव से संभव है। यदि हम पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, धूप से बचाव करें तो हम इस मौसम में भी स्वस्थ और ऊर्जावान रह सकते हैं और लू से अपने आप को बचा सकते हैं। साथियों, अब समय हुआ है क्रम आज की बात में हमारे अगले विषय मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर चर्चा करने का। दोस्तों, मरकोर एक खूबसूरत और दुर्लभ जंगली बकरी है, जो अपने लंबी और मुड़ी हुई सींगों के लिए प्रसिद्ध है। यह प्रजाति मुख्य रूप से भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और तजाकिस्तान की पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्राणी की सुरक्षा और संरक्षण की दिशा में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल मरकोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, मरकोर की आबादी पिछले दशकों में बहुत कम हो गई है। इसका मुख्य कारण शिकार, प्राकृतिक आवास का विनाश और घरेलू पशुओं के साथ चराई के लिए संसाधनों की प्रतिस्पर्धा है। ग्रीन बेल्ट के संरक्षण के प्रयासों और स्थानीय समुदायों की भागीदारी से ही यह प्रजाति अब धीरे धीरे बढ़ रही है। दोस्तों, इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस का उद्देश्य लोगों को इस प्राणी और इसके आवास के महत्व के बारे में जागरूक करना है। साथियों, इस दिन का महत्व केवल मरकोर की सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है। यह दिन हमें पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को भी याद दिलाता है। मरकोर शाकाहारी होते हैं और वे पहाड़ी क्षेत्रों में वनस्पतियों को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए
मारखोर की सुरक्षा केवल एक प्रजाति को बचाने का नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा का संदेश देती है। मारखोर के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। कई गांवों ने संरक्षण के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी दिखाई है। वे अपने इलाके में राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों का ध्यान रखते हैं। इन क्षेत्रों में पारंपरिक शिकार को नियंत्रित करने और पर्यटन के माध्यम से आय बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं। इस प्रकार स्थानीय लोग संरक्षण के साथ साथ आर्थिक लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मारखोर की सुरक्षा के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर और वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर जैसी संस्थाएं सरकारों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर मारखोर की आबादी पर नजर रखती है और कानूनों का पालन सुनिश्चित करती है। यह सहयोग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जंगली जानवरों की सुरक्षा केवल एक देश तक ही सीमित नहीं रह सकती। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि मारखोर का अंतर्राष्ट्रीय दिवस केवल एक प्रतीकात्मक दिन नहीं है बल्कि यह हमें प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और जैव विविधता के महत्व का एहसास कराता है। यह हमें सिखाता है कि प्रजातियों की सुरक्षा में हमारा योगदान आवश्यक है और हमारे छोटे छोटे प्रयास भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। मारखोर की सुरक्षा न केवल इस सुंदर प्राणी के लिए जरूरी है बल्कि हमारे पर्यावरण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, मारखोर का अस्तित्व हमें आशा, धैर्य और प्राकृतिक सुंदरता की याद दिलाता है। इसे संरक्षित करना केवल हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा दायित्व भी है। साथियों, अब समय हुआ है फिल्म संगीत की दुनिया में जाने का। आइए सुनते हैं प्यारा सा ये गीत।

0: दोस्तों अभी सुन रहे थे आप ये गीत। अब समय हुआ है क्रम आज की बात में। हमारे अगले विषय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 7 खास बातों का अनुसरण करें और राष्ट्र हित में योगदान दें पर चर्चा करने का। दोस्तों माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 प्रमुख अपील जनता से की। उन्होंने कहा, ईंधन का बचाव करें, विदेश यात्रा से बचें, सोने की खरीदारी कम करें, वर्क फ्रॉम होम को अपनाएं, खाद्य तेल का उपयोग कम करें, रासायनिक उर्वरकों में कटौती करें, साथ ही वोकल फॉर लोकल का पालन करें। दोस्तों इन सभी बातों का मुख्य उद्देश्य खपत को कम करना है। साथियों हम सभी अगर इन बातों का अनुसरण करते हैं तो इससे हमारा ही फायदा है। जैसे ईंधन का बचाव अगर होता है तो पेट्रोल डीजल का उपयोग हम कम कर पाएंगे, इससे हमारा खर्चा कम होगा और इसका एक उद्देश्य यह भी है कि इससे हमारी मुद्रा विदेश में जाने से बची रहेगी। दोस्तों अब समय हुआ है क्रम वार्ता में आपको विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझ कर करें पर वार्ता सुनवाने का। वार्ताकार है प्रज्ञा गौतम।
1: आज के इस आधुनिक युग में सोशल मीडिया हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हमारे दोस्तों और परिवार के साथ जुड़ने से लेकर व्यवसायों को बढ़ावा देने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हुए हैं। साथियों सोशल मीडिया विभिन्न प्रौद्योगिकियों को संदर्भित करता है जो अपने उपयोगकर्ताओं के बीच विचारों

0: एवं सूचनाओं को साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। दोस्तों, सोशल मीडिया की व्यापकता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि लगभग 5 अरब से भी अधिक लोग सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, जो विश्व की लगभग 62% आबादी के बराबर है। साथियों, सोशल मीडिया ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो उपयोगकर्ताओं को सामग्री बनाने और साझा करने, दूसरों के साथ बातचीत करने और समुदाय बनाने की अनुमति देते हैं। हालांकि सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं। साथियों, आज हम सोशल मीडिया के समझदारी पूर्वक उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल युग में सोशल मीडिया के फायदे निर्विवाद हैं, जो हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव डालते हैं। दोस्तों, वैश्विक संपर्क को बढ़ावा देने से लेकर एक शक्तिशाली मार्केटिंग टूल के रूप में काम करने तक सोशल मीडिया भौगोलिक सीमाओं को पार करता है, लोगों को एक साथ लाता है और हमारे संवाद करने को एक नया रूप देता है। दोस्तों, सोशल मीडिया के माध्यम से आज हम विश्व के किसी भी क्षेत्र में बैठे अपने दोस्तों और परिजनों से वीडियो कॉल करके जुड़ सकते हैं, उनके साथ होने का अनुभव कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं साथियों, व्यवसाय एवं उद्योग जगत में भी सोशल मीडिया के साधनों के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। लोग घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगे हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में शिक्षा क्षेत्र में भी सोशल मीडिया का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी सुलभता से करते हैं। निसंदेह सोशल मीडिया तेज गति वाले डिजिटल युग में हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है, जो हमारे जुड़ने, संवाद करने और जानकारी प्राप्त करने के तरीकों को नया आकार देता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया ने जहां कनेक्टिविटी के लिए कई लाभ और अवसर प्रदान किए हैं, वहीं यदि इसका इस्तेमाल बिना सोचे समझे किया जाए तो इसके कई दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। साथियों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन करते समय विद्यार्थियों का ध्यान भटकता है और बच्चे, यहाँ तक कि बड़े विद्यार्थी भी पढ़ाई करते हुए अन्य मनोरंजक चीजें देखने लगते हैं। इसके अलावा दोस्तों, किसी भी वायरल पोस्ट या संदेशों के माध्यम से फर्जी खबरें और दुष्प्रचार करना बहुत आसान है, जिससे गुमराह होने की अधिक संभावना रहती है। साथ ही व्यक्तिगत जानकारी को साझा करने और डेटा चोरी जैसी घटनाओं से उपयोगकर्ता की गोपनीयता से समझौता होता है और दोस्तों, कई बार तो यूजर को धोखाधड़ी का शिकार होना पड़ता है। सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग का सबसे बुरा प्रभाव पारिवारिक रिश्तों पर पड़ा है। लोग सार्थक रिश्तों के स्थान पर सोशल मीडिया पर जुड़े रिश्तों को अधिक समय और महत्व देने लगे हैं। आजकल हम देखते हैं कि एक ही घर में सभी सदस्य साथ बैठकर भी अपने अपने मोबाइल पर व्यस्त हैं, जो कहीं ना कहीं पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से बेहद हानिकारक है। इससे लोगों की वास्तविक रिश्तों और खुशहाली में बाधा उत्पन्न होती है। साथियों, गुमनाम और फेक अकाउंट्स के माध्यम से मशहूर हस्तियों सहित जनसाधारण को ट्रोल करना, सार्वजनिक रूप से अपमानित करने जैसी घटनाएं आए दिन सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही फर्जी अकाउंट बनाकर पहले लोगों से दोस्ती करना, उन्हें अपने जाल में फंसाना और बाद में ब्लैकमेल करने जैसी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इन सब का कारण कहीं ना कहीं लोगों का लापरवाही से सोशल मीडिया का उपयोग करना है, जैसे अनजान लोगों से दोस्ती करना, उन पर भरोसा करना लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी में डालता है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय व्यतीत करना आजकल बहुत आम बात हो गई है। ऐसे में लोगों से व्यक्तिगत संपर्क, संचार और सामाजिकता कम हो रही है, जिससे व्यक्ति सबसे कटकर अकेला रहना पसंद करने लगा है। साथियों, एक अध्ययन से पता चलता है कि लोगों में, विशेष रूप से किशोरावस्था में, सोशल मीडिया का उपयोग उनके आत्मसम्मान, चिंता और अवसाद का कारण भी बन रहा है। परफेक्ट सेल्फी प्रस्तुत करने, तथा लाइक और कमेंट प्राप्त करने के लिए पोस्ट पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करने से दूसरों के साथ अवास्तविक तुलनाएं उत्पन्न होती हैं, जिससे चिंता और अवसाद बढ़ता है। सोशल मीडिया घोटाले और धोखाधड़ी फैलाने में भी जिम्मेदार हो सकता है। फर्जी खबरें, फिशिंग हमले और फर्जी योजनाएं सामाजिक माध्यमों से आसानी से फैल जाती हैं, जो वित्तीय धोखाधड़ी का कारण भी बनती हैं। आए दिन हम सुनते और पढ़ते रहते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से नौकरी देने का झांसा देकर लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। साथियों, इसमें दोष सोशल मीडिया का नहीं है, दोष हमारी लापरवाही का है, जो हम भ्रमित सूचना पर भरोसा कर धोखाधड़ी का शिकार बन जाते हैं। साथियों, सोशल मीडिया का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव छोटी उम्र के बच्चों पर पड़ रहा है। इनके अत्यधिक उपयोग के कारण बच्चे इसके आदि हो गए हैं, जिससे उनका स्वभाव चिड़चिड़ा और जिद्दी हो रहा है। ऐसे में अभिभावकों को चाहिए कि उन्हें मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रखकर वास्तविक जीवन जीना सिखाएं। हम यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सोशल मीडिया या उसका उपयोग खराब है या हानिकारक है। निश्चित रूप से इसने हमें कई सुविधाएं प्रदान कर हमारे जीवन को आसान बना दिया है, किंतु दोस्तों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। सोशल मीडिया ने वैश्विक रूप से जोड़ने का काम तो किया है, लेकिन यदि इसका अत्यधिक इस्तेमाल किया जाए या बिना सोच विचार के किया जाए, तो निश्चित ही इससे गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे में दोस्तों, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि सोशल मीडिया के सभी माध्यमों का उपयोग अपने हित के लिए करें, ना कि इनके आदि बनकर स्वयं को सोशल मीडिया का गुलाम बनाएं, बल्कि इसका उपयोग अपने जीवन को तरक्की के मार्ग पर अग्रसर करने के लिए करें। दोस्तों, सोशल मीडिया के साथ ही अपने परिवार को भी पर्याप्त समय दें। यदि घर में बच्चे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, तो कोशिश करें कि वे कम से कम इसका उपयोग करें और आपकी देखरेख में ही करें। साथियों, वर्तमान समय में सोशल मीडिया कुछ सीमा तक हमारे लिए आवश्यक भी है, इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि इसका इस्तेमाल ही ना करें, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा के लिए सावधानी पूर्वक और सीमित मात्रा में ही करें। अंत में कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं अपनी बात पूरी करूंगी। सोशल सोशल करते हो, क्या सोशल मीडिया पर ही मरना है? बाहर निकलो इस जाल से तुम, अब कुछ ख्वाब हकीकत करना है। चाहत रखो जीने की तुम, सब कुछ करके दिखलाओगे। सोशल मीडिया से दूर तो जाओ, ख्वाब हकीकत पाओगे। बैठे हो तुम दोस्त बनाए सोशल के हथियारों से, हुई जरूरत अगर तुम्हें तो हो जाओगे बेकारों से। सच कहती हूँ मान लो कहना दूर रहो बहकावे से। जीना है जीवन अच्छा तो साथ चलो अपनाने से। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अंत में बस यही कहूँगी दोस्तों, समय बहुत अनमोल है, इसे सोशल मीडिया पर व्यर्थ ही बर्बाद ना करते हुए अपने और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र हित के लिए अच्छे कार्य करने में लगाएं।
1: दोस्तों, अभी सुन रहे थे आप वार्ता, विषय सोशल मीडिया का उपयोग सोच समझकर करें पर। वार्ताकार थी प्रज्ञा गौतम। दोस्तों, अब समय हुआ है क्रम जीवन आलोक में हमारे आज के विषय जैसी संगत वैसी रंगत पर चर्चा करने का। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसका जीवन समाज के बीच ही विकसित होता है। वह जिन लोगों के साथ रहता है, उनके विचारों, व्यवहार और आदतों का प्रभाव उस पर अवश्य पड़ता है। इसी सत्य को दर्शाने वाली कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत, अर्थात मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है, उसका स्वभाव और चरित्र भी वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति मनुष्य को ऊंचाइयों तक पहुँचा सकती है, जबकि बुरी संगति उसे पतन की ओर ले जाती है। दोस्तों, संगति का प्रभाव सबसे अधिक बच्चों और युवाओं पर पड़ता है। बचपन और युवा अवस्था सीखने की अवस्था होती है। इस समय व्यक्ति अपने आसपास के लोगों से बहुत कुछ सीखता है। यदि बच्चे अच्छे मित्रों और संस्कारी लोगों के संपर्क में रहें, तो उनमें अच्छे गुण विकसित होते हैं। वे ईमानदार, मेहनती, अनुशासित और विनम्र बनते हैं। इसके विपरीत यदि उनकी संगति गलत लोगों से होती है, तो वे झूठ बोलना, आलस करना, अनुशासनहीनता जैसी बुरी आदतें सीख जाते हैं। साथियों, अच्छी संगति हमें सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और प्रेरणा प्रदान करती है। अच्छे मित्र कठिन समय में हमारा साथ देते हैं और सही मार्ग दिखाते हैं। वे हमें मेहनत करने, अपने लक्ष्य पर ध्यान देने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। विद्यालय और महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए अच्छी संगति विशेष रूप से आवश्यक होती है, क्योंकि यही समय उनके भविष्य की नींव को तैयार करता है। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में संगति का अर्थ केवल प्रत्यक्ष मित्रों तक ही सीमित नहीं रह गया। सोशल मीडिया, इंटरनेट, मनोरंजन के साधन भी हमारी संगति का हिस्सा बन चुके हैं। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसका भी हमारे विचारों, व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोच, ज्ञानवर्धक चीजों को अपनाना चाहिए और नकारात्मक प्रभावों से बचना चाहिए। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का महत्वपूर्ण सत्य है। मनुष्य का चरित्र और भविष्य उसकी संगति पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इसलिए हमें सदैव अच्छे लोगों की संगति अपनानी चाहिए और बुरी संगति से दूर रहना चाहिए। अच्छी संगति जीवन को सुख, सफलता और सम्मान से भर देती है, जबकि बुरी संगति जीवन को दुख और असफलता की ओर ले जाती है। दोस्तों, अब घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है आपसे विदा लेने को। दीजिए आपकी दोस्त शिवानी राठौर को अनुमति।

0: युवा साथियों के लिए युवाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह कार्यक्रम आकाशवाणी शिवपुरी की प्रस्तुति था। यह प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से।
1: दीदी, नौकरी लग गई।
2: अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग।
1: हाँ दी, नया मोबाइल।

0: आपके नाम?
1: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: आरबीआई कहता है?
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गा

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
2: फिल्म संगीत
3: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात। भूल के गोले ओ बम, रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हो नई नई, जलूंगी सारी रात।

शालम अली खोलगड़े की आवाज में अभी आप वेलकम टू कराची फिल्म का गीत सुन रहे थे। कौसर मुनीर ने इसे लिखा था और जीत गांगुली ने इसकी धुन बनाई थी। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार की मिलीजुली आवाजों में। फिल्म का नाम है

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं दिलजीत दोसांझ की आवाज में। फिल्लौरी फिल्म का गीत है, अनविता दत्त ने इसे लिखा है और शाश्वत सचदेव की।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1 लाख दो, बन जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर

खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला आकाशवाणी पीपुल्स पद्म के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड, न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल पर सुना जा सकता है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित कार्यक्रम, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं भारत भवन भोपाल में सदा निराग आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। गंगा दशहरा पर्व के पावन अवसर पर 25 मई को जल गंगा संवर्धन अभियान को जन भागीदारी आधारित बनाने के लिए प्रदेश के ग्रामीण और नगरी क्षेत्रों में व्यापक जल संरक्षण गतिविधियों और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे जन जन को इस पुनीत कार्य से सीधे जोड़ा जा सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धावक गुरिंदर वीर सिंह को एथलेटिक्स फेडरेशन कप में स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गुरिंदर वीर सिंह 10.10 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की संभावना है। और IPL क्रिकेट में आज 2 मुकाबले हैं। पहला मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुंबई में जारी है। दूसरा मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच शाम 7:30 से खेला जाएगा। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शाम के 6 बजे हैं। आइए एक बार फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

0: से क्या ताल्लुक यार?
1: अरे कहावत है यार।
0: अरे कहावत गई तेल बेच ले, तू क्या भाव खा रही है, मैं पीछे आ रहा हूँ तू आगे जा रही है, देख तेरा बोध हो गया, बोध हो गया अभी। चल अभी थोड़ा अपना कम कर, कम कर माँ, माँ बोले तो मेरे होने वाले बच्चों।

0: ये नहीं पढ़ रही अपनी तो हट रही है।
1: मोनू भड़क मत वो पटरी पे आ रही है।
0: अरे काएगा ये मुंबई है मुंबई यहाँ सब कुछ फास्ट है। वो बाजू वाले अप्पा को देखना आज मेरे राजकुरा कल मेरे मंगलसूत्र बनाना बोलो तो दो दो बच्चे का बाप है बोलो ना।
1: ये काय को मच मच कर रही है माँ कसम अपनी भी थोड़ी सी हट रही है। नाटक वाटक छोड़ सीधा हाँ बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे, बोल दे।

हसीना मान जाएगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे संजय दत्त, गोविंदा, अलका याग्निक, सुदेश भोसले और सोनू निगम की आवाजों में। नितिन रायकवार के बोल थे, संगीत अनु मलिक का था। कार्यक्रम का अगला गाना बड़े मियाँ छोटे मियाँ फिल्म से, अलका याग्निक और उदित नारायण के साथ अमित कुमार की आवाज, समीर के बोल, विजू शाह का संगीत।

आदेश श्रीवास्तव की बनाई धुन पर आपको सुनवाते हैं श्यामराज का लिखा गीत, उदित नारायण, रंजना जोगलेकर और साथियों की आवाज़ में। फिल्म का नाम है जाने।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है यस बॉस फिल्म से। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं, बोल जावेद अख्तर के और धुन जतिन

अनुराधा पौडवाल और हरिहरन की आवाज़ों में अभी आपने इतिहास फिल्म का गीत सुना। समीर ने इसे लिखा था और धुन बनाई थी दिलीप सेन, समीर सेन ने। कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की मिलीजुली आवाज़ों में इश्क फिल्म का गाना। राहत इंदौरी की बोल हैं, अनु मलिक की तर्ज़।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
3: खुशखबरी, जी हां, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हां, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।

खुशखबरी। जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क न केबल का झंझट न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है
0: स्पष्ट आवाज सुंदर तस्वीर
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल
2: समाचार के साथ मैं करिश्मा राय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार ऊर्जा मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए
3: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं
2: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका इसराइल ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात की विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई मंत्रालय ने कहा कि श्री डोभाल और श्री रूबियो ने द्विपक्षीय व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को दी जाने वाली उच्च प्राथमिकता के प्रति फिर प्रतिबद्धता व्यक्त की अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए चार दिन की भारत यात्रा पर है यह बैठक 26 मई को आयोजित की जाएगी इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी भी भाग लेंगे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से अधिक वोटों से हराया श्री कुर्मी को 40,600 से अधिक वोट मिले हैं तीसरे स्थान पर कांग्रेस के अब्दुल रजाक और चौथे स्थान पर तृणमूल कांग्रेस के जहांगीर खान रहे फलता सीट को तृणमूल कांग्रेस का गढ़ माना जाता था शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने के निर्देश दिए हैं यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की चार सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को

0: दिया गया और भोपाल के भदभदा शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। श्रोताओं से अनुरोध है कि वे आज और कल आकाशवाणी से जुड़े रहें। कोलकाता में आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के साथ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसी बीच मुंबई ने ताजा समाचार मिलने तक 13वें ओवर में 5 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 206 रन का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण। आकाशवाणी भोपाल से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रम हैं। शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें 7:30 से सजीव फोन इन कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। हेलो ग्राम सभा, विषय होगा ग्रीष्म ऋतु में समसामयिक कृषि कार्य। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आज रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। 8:15 पर होगा कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति रहेगा। विषय है जल जीवन मिशन। फिल्म संगीत रात 8:30 पर। 9:30 पर आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश करेंगे और रात 10 बजे सुनिएगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का कार्यक्रम, जिसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित हरिशंकर भट्टाचार्य का सितार वादन। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। कल प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में आपको बता दें, आकाशवाणी भोपाल के प्रसारण में कल सुबह 7:20 पर नमस्कार भोपाल कार्यक्रम का प्रसारण होगा, जिसमें सुनिएगा विश्व थायराइड दिवस पर हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावर से बातचीत। आकाशवाणी के 90 वर्षों के सफर पर आकाशवाणी के नियमित श्रोता जिगर पंड्या से बातचीत। नौतपा के दौरान लू से बचाव के बारे में डॉक्टर अभिजीत देशमुख से जानकारी। सुरमई सवेरा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे सुबह 8:30 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में 9:15 पर सुनिए रामदयाल लोधी और साथियों के गाए बुंदेली गीत। उर्दू कार्यक्रम आईना पेश किया जाएगा सुबह 9:30 पर, जिसमें आप सुनेंगे डॉक्टर अबू मोहम्मद सहर की तकरीर फन और शख्सियत डॉक्टर रजिया हामिद। इसके साथ ही आप सुनेंगे मसूद रजा का कलाम। जिले की चिट्ठी सुबह 10 बजे। 10:05 पर गीत सागर कार्यक्रम होगा। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम रागमाला, इसमें आप सुनेंगे पंडित रामस्वरूप रतोनिया का तबला वादन 3 ताल। ग्राम सभा कार्यक्रम में कल शाम 7:21 पर आकर्षण होगा लोकरंग। ये थे आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित होने वाले कल के प्रमुख कार्यक्रम। कल आकाशवाणी मध्य प्रदेश से जो प्रमुख कार्यक्रम प्रसारित होंगे उनकी जानकारी इस प्रकार है। कल शाम 5 बजे आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण। इसे हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे। समय याद रखिए कल शाम 5 बजे। पूर्वाह्न 11 बजे फोन इन कार्यक्रम होगा, फोन करें गीत सुनें। आपकी फरमाइश कार्यक्रम पेश करेंगे दोपहर 12 बजे, दिन में 2:30 बजे और रात 10 बजे। दोपहर 12:30 पर संग्रहालय से कार्यक्रम पंचतंत्र होगा। 1:10 पर स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में आकाशवाणी भोपाल की प्रस्तुति सुनिएगा घुटनों का दर्द और ऑस्टियो ऑर्थराइटिस कारण लक्षण और उपचार, विषय पर डॉक्टर प्रदीप जैन से भेंटवार्ता। लोक संगीत के कार्यक्रम में दिन में 1:30 बजे रमा मिश्रा के गाए बुंदेली गीत सुने जा सकते हैं। सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा 1:45 पर, जिसमें आप सुने

गे पुष्पा रानी की गाई भक्ति रचनाएं। शाम 6 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा। शाम 6:40 पर सुनिए कार्यक्रम आजकल। रात 8 बजे सुर्खियों में कार्यक्रम होगा। 9:30 पर पब्लिक स्पीक कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। और कल रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिएगा पंडित राम स्वरूप रथोनिया का तबला वादन झपताल। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहेंगे, कल शाम 5 बजे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से आप सुनेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सीधा प्रसारण। इसे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: तीनों कॉलेज में
2: डोंट वरी
1: फीस तो देखो
3: क्या हाल है, क्या हुआ?
2: फीस की टेंशन,
3: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही,
4: रास्ता क्लियर। बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए का, नो कोलैटरल।
3: वो कहा है?
4: मिठाई।
5: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
7: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
8: तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
9: दिमाग चार्ज कर अपना।
10: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
9: देखा
8: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
10: अब क्या करोगे?
8: फ्री वाईफाई है ना?
9: बुद्धू सुधर जा।
10: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
8: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
10: आरबीआई कहता है
6: तरो से ही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
11: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर कल उज्जैन में कार्यक्रमों में होंगे शामिल। भोपाल की त्रिशा शर्मा मृत्यु मामले में आज दिल्ली एम्स टीम ने किया दोबारा पोस्टमार्टम। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, अधिकांश शहरों का तापमान 45 डिग्री के आसपास। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 16 कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनका प्रसारण आज और कल आकाशवाणी गोल्ड के 100.1 चैनल पर किया जाएगा। इन्हें न्यूज ऑन एयर और यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि IIT मद्रास का विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेगा और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता और सर्वर के सुचारू संचालन की जांच करेगा। यह दल समग्र IT अवसंरचना की मजबूती, लॉगिन प्रमाणीकरण, उपयोगकर्ता पहुंच प्रणाली, भुगतान गेटवे की सटीकता और सुचारू कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने में सहायता करेगी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों पक्षों ने भारत और अमेरिका सामरिक भागीदारी को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि यह भागीदारी व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी और क्षेत्रीय सुरक्षा के रूप में विशेष रूप से है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों, क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है। हम इस क्षेत्र से सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के समुद्री व्यापार के पूरी तरह पक्ष में हैं। और साथ ही हम ये देखना चाहते हैं कि वहां के बाजार खुलें। हम कोई रुकावट नहीं देखना चाहते।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गंगा दशहरा के अवसर पर 25 और 26 मई को उज्जैन में शिप्रा तट पर आयोजित परिक्रमा, चुनरी अर्पण, पूजन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस अवसर पर श्रद्धा, संस्कृति और जल संरक्षण के संदेश से जुड़े विविध आयोजन किए जाएंगे। जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत गंगा दशहरा पर 25 मई को प्रदेश भर में वहत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रभात फेरिया, नदी एवं जलाशय परिक्रमा, साइकिल रैली, चुनरी अर्पण, पूजन तथा जल और नदियों पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां आयोजित की जाएगी। वहीं भारत भवन भोपाल में सदानीरा का आयोजन 27 मई से 2 जून तक किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अंतर्गत ग्राम खेरवा टोला जिला उमरिया में बाघ के हमले में एक महिला की मृत्यु और कुछ नागरिकों के घायल होने पर दुख व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए हमले में मृतक के परिजन को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। घायलों को निशुल्क उपचार और आवश्यक मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया गया है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर EIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsoneir.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन EIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में आपका स्वागत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में त्रिशा शर्मा का दूसरा पोस्टमार्टम किया। यह पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया और भोपाल के भदभदा विश्राम घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके परिवार ने मेडिकल टीम से अनुरोध किया था कि वे एक बहुविषयक फॉरेंसिक, पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल दृष्टिकोण अपनाएं और उनकी उन चिंताओं की स्वतंत्र रूप से जांच करें। गौरतलब है कि 33 वर्षीय त्रिशा की मृत्यु भोपाल में उनके ससुराल में हुई थी। त्रिशा के परिवार ने ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर पंजीकृत अभ्यर्थियों का ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 1 जून से 12 जून तक भोपाल के 2 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। विभिन्न श्रेणियों के लिए परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्टों में होगी। सेना भर्ती कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार ऑनलाइन परीक्षा के लिए भोपाल में केंद्र ION डिजिटल जोन, प्रेस्टीज, श्री जयराम एजुकेशन सोसाइटी, कोकता बाईपास, रायसेन रोड और ION डिजिटल जोन, RGPM सनखेड़ी, दानिशकुंज, कोलार रोड पर स्थित है। सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को 11 मई को अधिसूचित किया गया था और यह इसी वर्ष जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। अब बात मौसम की। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है और लोगों को तेज धूप व लू का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 मई तक प्रदेश में गर्मी अपने चरम पर रह सकती है। अगले 4 दिनों तक लोगों को तेज धूप और गर्म हवाओं से राहत मिलने की संभावना नहीं है। कल से शुरू हो रहे नौतपा के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई गई है। विभाग ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं शहडोल जिले में झुलसा देने वाली गर्मी का असर जल स्रोतों पर भी दिखने लगा है। जिले का सबसे बड़ा बाण सागर बांध 56% तक खाली हो चुका है। छोटे बांधों की स्थिति और भी चिंताजनक है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। छिंदवाड़ा जिले में तेंदुपत्ता

संग्रहण का कार्य तेजी से जारी है। उपवन संरक्षक अनादि बुधोलिया ने बताया कि अब तक कई क्षेत्रों में लक्ष्य का 50% से अधिक संग्रहण पूरा हो चुका है। नर्मदापुरम जिले में जनजातीय कार्य विभाग द्वारा सबसे पहले सबसे दूर अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत दूरस्थ जनजाति ग्रामों तक पहुंचकर आदि सेवा केंद्रों के माध्यम से जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: दी, ये देख कैसे।
1: हैप्पी बर्थडे भाई।
2: दीका, हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
3: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
4: Saving करने की भी यही उम्र है।
5: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
3: I know na,
5: RBI कहता है
6: करो सही शुरुआत, बनो financially smart।
7: दादी कौन सा प्लांट है?
8: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
9: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
7: दादी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
9: क्यों?
7: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
9: ओह थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
10: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

जय जवान जय किसान। चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनन के काज हैं साधना की राम राम। भैया जैसे अपन देख ही रहे हैं कि जा टाइम भैया खूब गर्मी पड़ रही है और भयंकर लू चल रही है। तो भैया ऐसी तेज घाम पड़ रही है, ऐसी लू चल रही है, तो ऐसे मौसम में भैया ज़्यादा से ज़्यादा अपन को अपने ऊपर ध्यान रखना है। जैसे भैया अपन को लू से बचाव के लाने समय से भैया 12 से 4 को जो समय होते हैं बामे अपन को बाहर नहीं जाने हैं। कहीं पर जाने हैं अगर अपन को भैया खेत में जाने हैं या कोनू और काम से बाहर जाने हैं तो सुबह और संजा के टाइम जाएं। कैसे कि भैया 12 से 4 के टाइम में बहुत ज़्यादा लू चलत है और अपन बीमार पड़ जाएंगे। और भैया लू से बचाव के लाने अपन को सबसे अच्छा उपाय है कि जब भी घर से बाहर जाएं तो भैया सिर के ऊपर अपन कोनो भी गमछा या मोटी सी तौलिया अपन सिर पर डालें, जैसे का होएगा कि एकदम से तेज घाम अपने सिर पर नहीं लगेगी। और सूती फुल आस्तीन के कपड़ा पहने। फुल आस्तीन के कपड़ा पहनने से का होएगा भैया कि जितनी कम घाम अपन के शरीर में लगेगी उतनी अपन को लू भी कम लगेगी। और भैया कपड़ा जो है वे हल्के रंग के पहने। हल्के रंग के कपड़ा पहनने से अपन को थोड़ा गर्मी कम लगेगी। और भैया अपन को जा टाइम खूब पानी पीना चाहिए। शरीर में भैया पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होना चाहिए। भले ही अपन को प्यास नहीं लगे फिर भी अपन को जा टाइम समय समय पर हर आधा घंटा में पानी पीत रहन चाहिए। और भैया जा टाइम अपन को छाछ है, नींबू पानी है, नारियल को पानी है, इनको सेवन जरूर करने चाहिए। जैसे कहा है कि अपने शरीर में ठंडक बनी रहे, जो अपने शरीर के लाने बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। और भैया फल खाएं। फल में जा टाइम सबसे ज़्यादा तरबूज को सेवन करें। भैया तरबूज के सेवन से क्या होएगा कि अपने अंदर शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। तरबूज में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो ये अपने स्वास्थ्य के लाने बहुत ही अच्छा है। और भैया जा टाइम अपन को बेल को शरबत। बेल को शरबत अपने शरीर के लाने बहुत ही

उपवा की तासीर बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है। तो जा टाइम अगर अपन बेल को शरबत पियेंगे तो जी अपने स्वास्थ्य के लाने बहुत ही अच्छा होएगा, अपने शरीर में बिल्कुल भी गर्मी नहीं रहेगी। और भैया खाना के संग अपन को हल्को ही खाना खाने हैं, ज़्यादा तेज मिर्ची मसाले तेल अपन को नहीं खाने हैं, हल्को भोजन करें। और भैया भोजन के संग अपन को प्याज को सेवन करने हैं, कच्ची प्याज को सेवन भी अच्छा होता है। और जाते हम खीरा खाएं, खीरा प्याज जो कहवे को मतलब जो है भैया कि अपन को खाना के संग में सलाद भी खाना चाहिए, सलाद खावे से भी भैया अपना स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तो खीरा ककड़ी इनको सेवन करें और खूब पानी पिएं, इन सब बातों को अपन को ध्यान रखने हैं। घर से बाहर ना निकलें ज़्यादा, फालतू ही इधर उधर घूमने के लाने अपन को घर से बाहर नहीं निकलने हैं, जब बहुत ज़रूरी काम हो तब भी अपन घर से बाहर निकलें, इन सब बातों को अपन को ध्यान रखने हैं। और भैया अपने संग संग जा टाइम गर्मियन में अपने पशु को भी अपन को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, काशी की भैया पशु अपनो पशुधन होते हैं, वासे अपन बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो पशु के लाने भैया जा टाइम अपन को ठंडो पानी पिवानो चाहिए, ताजो पानी पाए। और भैया सबसे ज़्यादा ध्यान रखें कि बिना ताजी ही सानी बना के खवाएँ, कैसे कि अगर अपन ने इकट्ठी सानी बना के रख ली है तो वो सब अगर संजा को बनाई है तो सवेरे तक वो खराब हो जाएगी, और सुबह बनाई है तो संजा तक खराब हो जाएगी, कैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो अपन को ऐसे में क्या करने हैं कि जितनी अपनी ज़रूरत है, जितना पशु अपनी सानी खाए उतनी ही सानी अपन को बनाने हैं, ताजी ताजी सानी अपन पशु को खवाएं, संतुलित आहार दें, हरो चारो खवाएं, जैसे का होएगो भैया कि अपना पशु भी स्वस्थ रहेगा। और बाकी भैया टीकाकरण भी करवाएं, पशु को टीकाकरण करवो बहुत जरूरी होते हैं। और अगर अपना पशु बीमार है रहो है तो तुरंत भैया चिकित्सक को दिखाएं, लापरवाही बिल्कुल ना करें, कैसे कि जा टाइम अपने पशुओं को भी लू लग जाते हैं, और जब लू लगत है तो पशु अपनों परेशान हो जाते हैं। तो बाकी लाने अपन को पशु को ध्यान रखने हैं। और भैया अगर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने हैं कि पशु को भैया संजा और सवेरे के टाइम ही अपन बाहर बाय छोड़ें, दिन के टाइम बिल्कुल भी ना छोड़ें। और जब बाहर धूप है, जब बाहर बहुत तेज़ घाम निकल रही है, लू चल रही है, तो पशु को सार में ही बांध के रखें, बाहर ना निकालें। और भैया सार को जो दरवाज़ा होता है बाकी बाहर अपन को टाट फट्टा कछु बांध देना चाहिए, और बाय समय समय पर गीलो करत रहना चाहिए, जब अपन बाय गीलो करेंगे तो जो हवा है वो ठंडी होकर अंदर जाएगी और अपने पशु को गर्मी से बहुत राहत मिलेगी। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास करके अपन अपने पशु को ठंडक प्रदान कर सकते हैं और इनको अच्छे से अपन ध्यान भी रख सकते हैं। अब भैया अपन बातें तो और करेंगे आगे, पहले सुन लें अपन जो बहुत ही बढ़िया लोकगीत जय गाँव है डोरीलाल

0: तो भैया अबे अपन सुन रहे थे जो बढ़िया से लोकगीत। उम्मीद है भैया आप लोगन को पसंद आओ होगो। अब अपन भैया आगे बात करें वर्मी कंपोस्ट के बारे में। भैया जे तो देखो हम सभी जानते हैं कि वर्मी कंपोस्ट जो है वो हमारी फसल के लाने कितना फायदेमंद होते हैं। वर्मी कंपोस्ट चाहे भैया अपन केंचुआ खाद के नाम से भी जानते हैं, जो भैया केंचुआ खाद बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होते हैं। जो केंचुआ आदि कीड़न से वनस्पतियों और भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाते हैं भैया, जो अपे भूमि के लाने बहुत ही अच्छी है। बर्मी कंपोस्ट की खास बात जो है कि भैया जामे बदबू बिल्कुल भी नहीं आवत है और मक्खी मच्छर भी नहीं होते हैं, और भैया जो अपने वातावरण के लाने बहुत अच्छी होते हैं, जैसे अपे भूमि की जो है उर्वरक शक्ति भी बहुत अच्छी हो जाते हैं और भैया माटी में पोषक तत्वों की मात्रा भी बढ़ जाती है। अगर हम वर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करेंगे तो अपनी माटी में जो है पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, तो जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और भैया फसल में कीट व्याधि भी कम लगते हैं और फसल जब पैदा होते हैं तो भी वो भैया बहुत ही पोषक तत्वों से भरी हुई होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लाने बहुत फायदेमंद होते हैं। और भैया जाके विपरीत जब अपन रासायनिक खादन को प्रयोग करते हैं तो वो फसल भैया अपने शरीर पर दुष्प्रभाव डालत है। रासायनिक खाद से भैया अपनी माटी की सेहत भी बिगड़त है और अपनी सेहत भी बिगड़त है। अपनी माटी की उर्वरक शक्ति बिल्कुल कम हो जाते हैं, वहाँ पोषक तत्व तो खत्म हो जाते हैं। तो कहवे को मतलब जो हो भैया कि अपन को प्राकृतिक खेती पर जोर देना चाहिए और वहाँ में बर्मी कंपोस्ट एक बेहतर उदाहरण है। भैया वर्मी कंपोस्ट से अगर अपन खेती करेंगे तो अपन को खेती में लाभ भी होएगो, अच्छा मुनाफा भी होएगो और अपनी माटी की सेहत भी सुधरेगी और अपनी सेहत भी सुधरेगी। जब अपन प्राकृतिक खेती करेंगे तो जो अपनी फसल है वो अच्छे दामों में बिचेगी, कैसे कि भैया वो फसल अपन ने प्राकृतिक तरीका से पैदा करी है, तो वहाँ में पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो भरपूर प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होंगे, तो बाकी भैया अपन को कीमत भी अच्छी मिलेगी। तो भैया कहवे को मतलब जो है कि अपन को खेती में बर्मी कंपोस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, जो अपनी वातावरण के लाने भी बहुत अच्छी है, अपनी सेहत के लाने भी बहुत अच्छी है और अपनी माटी के लाने भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और अब भैया हम आप लोगों के लाने लाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण भेंट वार्ता, जाको विषय है गर्मियों में पशुओं को होने वाली बीमारियाँ एवं बचाव, और जामे अपन को जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता जी और इनसे बातचीत कर रहे हैं एसएस चौधरी। तो सुनते हैं भैया अपन जो बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण भेंट वार्ता।
1: किसान भाइयों, खेती के साथ साथ हम पशुपालन व्यवसाय करते हैं और एक बहुत ही लाभ का व्यवसाय है। आमदनी बढ़ाने में, आमदनी को दोगुनी करने में पशुपालन व्यवसाय की महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन जो हमारे पशु हैं, चाहे भारवाहक हों चाहे तो दुधारू पशु हों, गर्मी में बहुत सी बीमारियां इन पशुओं को हो जाती हैं, जिसकी वजह से पशु कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी दूध उत्पादन क्षमता घट जाती है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रमुख बीमारियां हैं जो इन दिनों गर्मी में हो सकती हैं और उनसे कैसे बचाव किया जाए अपने पशुधन का, इसी संबंध में विस्तार से जानकारी के लिए आज हमारे बीच में है डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता, पशु चिकित्सक शिवपुरी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत

0: हमारे कार्यक्रम में स्वागत। हम जानना चाहेंगे कि गर्मी के मौसम में पशुओं को प्रमुख रूप से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं।
1: किसान भाइयों नमस्कार। गर्मी के मौसम में पशुओं के बीमारों के होने की आशंका बढ़ जाती है, लेकिन यदि सही देखरेख एवं खान पान संबंधी कुछ बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाए तो गर्मी में पशुओं को बीमार होने से बचाया जा सकता है, साथ ही अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। गर्मी के मौसम में पशुओं में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे कि लू लगना, दूसरा अपच हो जाना, पशुओं में किलनी की समस्या आ जाती है, बवेसियोसिस टिक फीवर नाम की बीमारी हो जाती है। ये कुछ बीमारियां हैं जो गर्मियों में पशुओं को परेशान करती हैं।
0: जी, आपने एक प्रमुख बीमारी का नाम बताया था,
1: लू लगना।
0: जी, लू लगना। तो पशुओं को लू किस तरह से प्रभावित करती है, कैसे पता चलेगा कि पशु लू से पीड़ित हो गया है?
1: जी, जब पशु को लू लगती है तो उसमें प्रमुख लक्षण होते हैं, पशु को तेज बुखार आ जाता है एवं पशु बेचैन हो जाता है, पशु हाँफने लगता है एवं मुंह से जीभ बाहर निकालने लगता है, पशु के मुंह से लार गिरने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, पशु आहार लेना बंद कर देता है, कभी कभी नाक से भी खून बहने लगता है, पशु अत्यधिक पानी पीता है एवं ठंडे स्थान की तलाश करता है, पशु का उत्पादन कम हो जाता है, और किसान भाइयों लू अधिक लगने पर पशु की मृत्यु भी हो सकती है।
0: जी, तो कैसे, तो आपने लक्षण बताए।
1: जी,
0: अब यदि पशु को हमें लू से बचाना है ताकि पशु को लू ना लगे, और यदि लग भी जाती है
1: जी
0: तो उसका उपचार क्या है?
1: जी किसान भाइयों, लू लगने की स्थिति में एक तो पशु को छायादार स्थान पर रखना है, और जहाँ पर हम बांधते हैं उस हवा के सीधे संपर्क से बचाना है, पशु को ठंडा पानी समय समय पर पीने के लिए उपलब्ध कराना है एवं रसदार चारा अधिक देना है उसको, और उसको घुमाने के लिए जो चराने के लिए जाते हैं वो सुबह शाम ले जाएं, उसको दोपहर में न ले जाएं।
0: यदि पशु चरागाह में जाते हैं
1: जी
0: तो ध्यान रखें कि दोपहर में उनको अवश्य चरागाह से वापस बुला लिया जाए।
1: जी,
0: अगर नहीं बुलाते तो वहाँ यदि पानी ठीक से नहीं मिला या ज्यादा धूप लग गई छाया वाले स्थान पशु को उपलब्ध नहीं हो पाए
1: जी
0: तो फिर पशु को लू लगने की
1: संभावना अधिक रहती है।
0: जी, लेकिन जो हमारे घर में पशु है उनको लू से कैसे बचाया जाए?
1: जहाँ पर हम
0: पशुशाला में जो
1: जी पशुशाला में जब पशुओं को बांधते हैं तो उस जगह पर एक तो छायादार वृक्ष होना चाहिए, दूसरा जहाँ पर अगर घर में बंधे हुए हैं तो वहाँ पर हवा की निकासी अच्छी होना चाहिए, और तीसरा वहाँ पर टाट गीला करके खिड़कियों पर बांध देना चाहिए जिससे कि हवा एकदम गर्म हवा अंदर ना पाए।
0: अच्छा, जो हमारी पशुशाला है उसके नीचे भी कुछ टाट वगैरह बिछाए?
1: नीचे बिछा सकते हैं टाट, अगर ऐसा ठंडा करके भी रख सकते हैं उसको, अगर पानी है तो पानी से थोड़ा गीला करके भी रख सकते हैं, और कुछ अगर अपने पास भूसे की व्यवस्था हो तो उसको भी बिछा सकते हैं नीचे।
0: जी, तो नीचे से भी गर्मी जो
1: बिल्कुल,
0: यदि पक्का फर्श है तो पशु को गर्मी से बचाया जा सकता है। तो इस तरह से पानी जरूर पिलाते रहें,
1: बिल्कुल बार बार पानी पिलाना है,
0: स्वच्छ पानी, ठंडा पानी पिलाना।
1: जी
0: जी, इसके अलावा
1: पशु को उससे लू से तो बचाना ही है, और फिर उसको जो है ना जब भी ऐसे अगर ज़्यादा लू लग जाती है उसके बाद में पशु चिकित्सक से हमें सलाह लेना है, और सलाह लेने के बाद में उसका उपचार करवाना है। दूसरी बीमारी है अपच होना, जानवर को गर्मियों में अपच हो जाती है, गर्मियों में अधिकतर पशु चारा खाना कम कर देते हैं, खाने में अरुचि होने के कारण पशु को अपच हो जाती है, इस समय पशुओं को पौष्टिक आहार नहीं देने पर अपच एवं कब्ज की संभावना हो जाती है। कारण इसका ये है कि अधिक गर्मी होने के कारण कई बार पशु मुंह खोलकर सांस लेता है जिसके कारण उसकी लार बाहर निकलती रहती है, जब पशु शरीर को ठंडा रखने हेतु शरीर को चाटता है जिससे शरीर की लार कम हो जाती है, लार पेट में जाकर चारे को पचाने में सहायता करती है, लार के बाहर निकल जाने पर चारे का पाचन प्रभावित होता है जिससे गर्मियों में अधिकतर पशु का अपच का शिकार हो जाता है।
0: जी, तो इस अपच की बीमारी से बचने के लिए पशुपालक भाई किन किन बातों का ध्यान रखें?
1: जी, इसके लिए उसको पशु को पौष्टिक आहार खिलाना चाहिए, पशुपालक भूसे पशुओं को भूसा बहुत अधिक मात्रा में देते हैं, ऐसे में पशु का हाजमा दुरुस्त रखने एवं उत्पादन बनाए रखने हेतु पशु को साधारण नमक 50 ग्राम, खाने वाला सोडा 25 से 30 ग्राम एवं बाजार में जो बत्तीसा पाउडर मिलते हैं वो प्रतिदिन 3 से 5 दिन तक देना चाहिए, आराम नहीं मिलने पर निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क कर सकते हैं।
0: अच्छा, ऐसे अपच के मुख्य कारण क्या क्या हैं?
1: जी, इसमें लक्षण जो आते हैं, पशु कम आहार लेता है या बिल्कुल बंद कर देता है, पशु सुस्त हो जाता है, पशु जुगाली बंद कर देता है, गोबर में दाना निकलना प्रारंभ हो जाता है और पशु का उत्पादन प्रभावित होता है।
0: अच्छा, किलनी की समस्या भी गर्मियों में आ जाती है?
1: बहुत ज़्यादा किलनी की समस्या गर्मियों में बहुत ज़्यादा आती है। जो हमारे संकर नस्ल के पशु हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा ये समस्या आती है। ये बाह्य परजीवी होते हैं जो जानवर के शरीर पर खून चूस कर जीते हैं। किलनी एक और पशुओं का खून चूस कर उनकी उत्पादन क्षमता को कम करते हैं। वहीं दूसरी ओर अप्रत्यक्ष रूप से कई प्रकार के जीवाणु

0: निर्भर करते हैं, अपनी जो उनकी लाइफ साइकिल होती है वो इन्हीं पर डिपेंड करती है, इसलिए ये जो है ना उनका खून चूस कर अपना जीवन यापन करते हैं।
1: तो इनको कैसे नष्ट किया जाए?
0: इनको नष्ट करने के लिए एक तो ये है कि बाह्य परजीवी जैसे कि जो बचने के लिए समय समय पशुओं की सफाई करना चाहिए। ब्यूटॉक्स नाम की एक दवा बाजार में मिलती है, उसके 2 ml दवा को 1 लीटर पानी में घोलकर पशु के शरीर पर लगाते हैं, उसके बाद में उसकी सफाई करते हैं। और अगर हमें शेड की सफाई करना है तो इसी दवा को 5 ml दवा 1 लीटर पानी में डालकर पशु बाड़े की दीवारों पर छिड़क कर इसको यूज कर सकते हैं। और बाजार में इंजेक्शन एक अवेलेबल है जो कि जो है ना इसको लगाने से किडनी की समस्या से निजात पाया जा सकता है।
1: तो समय समय पर पशु चिकित्सक को भी किडनी की समस्या
0: जस
1: से निजात पाने के लिए
0: बिल्कुल
1: सलाह पशुपालक भाई लेते
0: ले
1: रहे।
0: लेना चाहिए।
1: जी,
0: एक बीमारी और होती है इनमें, ग्रीष्मकालीन थनेला, थन की बीमारी होती है किसान भाइयों। वैसे तो ये सभी जानवरों में होती है, दूध वाले में वो होती है, और जो दूध नहीं दे रहे होते हैं गावन होती है उनमें होती है। इसको समर मेस्टाइटिस बोलते हैं, ग्रीष्मकालीन में होती है। यह थनेला रोग की व्यवस्था होती है जो बिना ब्याह पशुओं में हो जाती है। इसका कारण है कि बाड़े में सफाई का उचित प्रबंध न होने के कारण होती है। दूसरा, बाह्य परजीवियों के संक्रमण से होती है, और गर्मी में होने वाले तनाव से भी ये थनेला रोग की संभावना होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसके जो लक्षण हैं वह पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है, अयन का सूज जाना एवं उसमें कड़ापन आ जाता है, थनों में गंदा एवं बदबूदार पदार्थ निकलता है, और कभी कभी थनों से खून आता है।
1: तो ये जो थनेला रोग आपने गर्मी में बताया है,
0: जी
1: तो इससे दुग्ध उत्पादन पे भी कोई असर पड़ता है?
0: बिल्कुल, दुग्ध उत्पादन कम हो जाता है, और उसकी जो अयन है वो हमेशा के लिए खराब हो जाता है अगर उसका समय पर इलाज नहीं करवाया तो।
1: अच्छा, जब थनेला की बीमारी हो जाए
0: जी
1: तो ऐसे थन से दूध निकालना बंद कर देना चाहिए?
0: नहीं, उसमें दूध को निकालना चाहिए क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए उसके दूध को बार बार निकालना चाहिए। जितनी बार अपन दूध निकालेंगे उतना ही उसके बैक्टीरिया बाहर निकलेंगे उसमें से,
1: जी
0: और
1: जी
0: थन जल्दी सही होगा।
1: जी उपाय, इसका उपचार क्या है?
0: एक उपचार ये है कि अगर आज अयन पर सूजन आ जाती है तो एक आयुर्वेदिक उपचार है उसका, कि इसमें हमको ये एलोवेरा दूसरा 250 ग्राम लेना है, और दूसरा इसमें लेना है हल्दी, और तीसरा इसमें लेना है चूना, खाने वाला चूना। इन तीनों को मिला के और एक पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के फिर उसको उसके अयन पे और थन पे दिन में कम से कम 3 से 5 बार इसको लेप करना है, और जब रात के समय लास्ट जिसको लगाना है तो उस टाइम पे इसमें पानी की जगह हमको सरसों का तेल मिलाएं, तो इससे दवाई चिपकी रहे उस पर, तो ये क्या है कि सूजन कम करने में सहायता करता है।
1: तो ये बीमारी होती कैसे है?
0: ये एक्चुअल में बाहर से लगने वाली बीमारी है। जहाँ पर जानवर बनता है वहाँ पर गंदगी रहती है, और जब हम दूध निकालते हैं उस टाइम पर कुछ हमारे किसान भाई क्या है कि जानवर को खाने के लिए कुछ नहीं डालते, तो जब दूध निकालने के बाद में जब जानवर बैठता है नीचे तो उस टाइम पर उसके जो थन का जो छेद है वो चौड़ा रहता है, तो उसमें से नीचे से गंदगी के साथ में बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं।
1: जी
0: इसलिए किसान भाइयों को सलाह है कि जब हम दूध निकालते हैं उस टाइम पर जानवर को बैठने न दें, उसके लिए कुछ खाने के लिए डालें, जिससे कि कम से कम अगर जानवर आधा घंटा नहीं बैठेगा नीचे तो उसके जो थन जो है ना वो सिकुड़ जाएंगे, उसमें बीमारी होने की संभावना कम हो जाएगी।
1: जी
0: तो गर्मियों में जो पशुओं में एक बीमारी होती है सर्रा रोग, जिसको इंग्लिश में ट्रिपेनोसोमियोसिस बोलते हैं, ये लगभग सभी पशुओं में पाए जाने वाला गंभीर संक्रामक रोग है जो ट्रिपेनोसोमा इवेन्साई नामक प्रोटोजोआ के कारण फैलता है। ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, ऊँट एवं हाथी सभी जानवरों में होता है। यह रोग गर्म व नमी वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। इसके लक्षण हैं, पशु सुस्त एवं कमजोर हो जाता है, रुक रुक कर बुखार आता है, एनीमिया हो जाता है, मुंह से लार गिरती है, पशु दांत पीसता है, बार बार गोबर एवं मूत्र करता है। बीमारी की अधिकता में नर्वस सिस्टम के लक्षण आ जाते हैं, पैरों में कमजोरी, लड़खड़ाना, पशु गोल घेरे में घूमता है, सिर को दीवार से टकराता है। किसान भाइयों, इसके उपचार के लिए गाय भैंसों में तीव्र से तेज फीवर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रहता है, आंखें लाल तथा जीभ में सूजन आ जाती है, घोड़ों में पैर एवं पैरों पर स्वेलिंग आ जाती है एवं पीलिया हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण देखने पर तुरंत निकटतम पशु चिकित्सालय में संपर्क करें। सर्रा रोग से ग्रसित पशु के शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु ग्लूकोज सलाइन का प्रयोग किया जाता है। बचाव, मक्खियों की संख्या को नियंत्रण, कीटनाशक का छिड़काव पशु आवास के अंदर एवं आसपास करके, पशु के मल को समुचित निस्तारण करके पशु आवास के आसपास जल जमाव रोककर इस बीमारी को रोका जा सकता है। गर्मियों में पशु रोगों से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपाय, बरसात में

0: बरसात से पहले गर्मी के मौसम में मुख्यतः जून जुलाई में ही गलगोटू, खुरपका, मुंहपका एवं फड़ सूजन का टीका पशुओं में लगवा देना चाहिए। पीपीआर जो भेड़ बकरी में होता है उसका टीका अप्रैल मई में लगवा लेना चाहिए। अंतः परजीवी कीड़ों से बचाव हेतु मई जून तक कृमिनाशक दवा पिला देनी चाहिए। पशुशाला में बोरे का पर्दा तथा उसमें पानी छिड़क कर ठंडा रखें। तेज धूप में आने के बाद तुरंत पानी न पिलाएं, थोड़ी देर बाद पानी पिलाएं। चरी चारा गर्मी के मौसम में फूल वाली अवस्था में आने से पहले पशुओं को न खिलावें, अन्यथा विषाक्तता हो सकती है। गर्मी के हरे चारे की कमी हो जाती है, जिससे गर्मी के मौसम से पूर्व साइलेज बनाकर चारा संरक्षित कर सकते हैं। कोई भी पशु रोग होने पर पास के निकटतम पशु चिकित्सालय से किसान भाई संपर्क कर सकते हैं। गर्मियों में पशुओं को किस तरह का आहार दिया जाना चाहिए, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि गर्मियों में दुग्ध उत्पादन बनाए रखने के लिए पशुपालकों को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पशु के दाने में ज्यादा ऊर्जा वाला दाना जैसे मक्का, जौ आदि का प्रयोग करें। संभव हो तो चारे का प्रयोग करें, क्योंकि चारे के पाचन से पशुओं में दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। पशु का आहार संतुलित होना चाहिए। पशु को आवश्यकता अनुसार प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज, विटामिन आवश्यक मात्रा में उपलब्ध हो। जहाँ तक संभव हो पशु को हरा चारा खिलाएं। गर्मी के मौसम में मक्का, लोबिया, चरी, ज्वार लगाएं, जिससे पशुओं को लगातार हरा चारा मिलता रहे। इससे पशुओं को पोषण मिलता है और पानी की पूर्ति होती है। गर्मी के दिनों में पशुओं को नमक की आवश्यकता बढ़ जाती है। प्रत्येक पशु को 25 से 30 ग्राम नमक जरूर खिलाना चाहिए, साथ ही पानी भरपूर मात्रा में पिलाना चाहिए। पशु को आहार 3 से 4 बार देना चाहिए। अगर पशु को चराना है तो सुबह शाम को चराएं। तेज धूप में पशु को निकालना पशु के स्वास्थ्य एवं उत्पादन दोनों के लिए हानिकारक होता है। पशुशाला में साफ ताजा पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। सामान्य दिनों में पशु को पानी की आवश्यकता लगभग 35-40 लीटर होती है, जो कि गर्मी के दिनों में बढ़कर दुगनी हो जाती है। गायों की अपेक्षा भैंसें गर्मी से ज्यादा प्रभावित होती हैं, इसलिए गर्मियों में भैंसों को कम से कम एक बार जरूर नहलाएं। इसके अलावा एक बीमारी और है किसान भाइयों, मैं उसके बारे में और आपको बता रहा हूं। एक होती है साइनाइड पॉइजनिंग, जिसको बोलते हैं SCN विषाक्तता। यह एक प्रकार की विषाक्तता है जो कि गर्मी में अधिक होती है, जो कि ज्वार, बाजरा, मक्का के चारे को खा लेने से होती है। गर्मियों में कई बार पानी की कमी के कारण पौधे छोटे रह जाते हैं, जिनमें ग्लूकोसाइड अधिक होता है, जो कि साइनाइड विषाक्तता के लिए जिम्मेदार होते हैं। इस बीमारी के लक्षण अधिक मात्रा में पौधे खाने से शरीर में ऐंठन उत्पन्न होती है तथा श्वसन क्रिया के बंद हो जाने से पशु की तुरंत मृत्यु हो सकती है। शरीर में उत्तेजना तथा पैरों को पटकता है जानवर। पशु अधिक लार गिराता है, सांस लेने में भारी तकलीफ होती है। पशु मुंह खोलकर सांस लेता है, आंखें तेज लाल रंग की हो जाती हैं, आंख की पुतलियां फैलकर बड़ी हो जाती हैं और शरीर में कंपन होता है। गर्दन को एक ओर मोड़कर पेट की तरफ रखता है। किसान भाइयों, अगर इस बीमारी में हमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो पशु की जान भी जा सकती है, इसलिए उपचार के लिए निकटतम पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बारिश होने से पहले अपने पशु को ज्वार का चारा न खिलाएं, या फिर यदि सिंचाई की व्यवस्था हो तो फसल को एक दो बार सिंचाई के बाद ही काट कर खिलावें।
1: तो डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने बताया कि गर्मी में पशुओं को प्रमुख कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, उनके क्या लक्षण हैं और रोकथाम के लिए क्या कुछ उपाय करना चाहिए। ये लाभकारी जानकारी सुनकर के किसान भाई जरूर अपने पशुओं की देखभाल ठीक से कर सकेंगे। आपको जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो भैया, अब अपन सुन रहे थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण भेंटवार्ता, जाको विषय है तो गर्मियों में पशुओं को होने वाली बीमारियां एवं बचाव, और जहाँ में अपन को जानकारी दे रहे थे डॉक्टर मुकेश कुमार गुप्ता जी, और इनसे बातचीत कर रहे थे SS चौधरी। तो भैया, आप लोगों ने ध्यान से सुनी होगी और आप लोगों को पसंद भी आई होगी। अब अपन भैया आगे बात करेंगे ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के बारे में। भैया, जा टैम अपने खेत खाली पड़े हैं, और भैया जा टैम ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई कर वो बहुत लाभकारी होते हैं। जैसे भैया अपने माटी में जो छिपे भए कीड़े, अंडे, प्यूपा, लार्वा जो सब होते हैं, वे गहरी जुताई करवे से सब ऊपर आ जाते हैं और तेज घाम से वे सब नष्ट हो जाते हैं। और भैया गहरी जुताई में पुराने खरपतवार की जो जड़ें हैं, बीज सब ऊपर आ जाते हैं और वे सूख जाते हैं, जैसे भैया खरपतवार नियंत्रण भी होते हैं। और भैया अपन देखेंगे अब बारिश भी आवे बारी है, तो जब अपन गहरी जुताई करके रखेंगे तो जब बारिश होगी तो वो पानी अपनों खेत अच्छे से सूख पाएगा, वो माटी भैया अच्छे से पानी सोख पाएगी और बाकी जल धारण क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। तो गहरी जुताई से अपनी माटी भैया भुरभुरी भी होते हैं और जामे वायु को संचार अच्छा हो जाते हैं। गहरी जुताई भैया बहुत ही अच्छी होते हैं। गहरी जुताई के लाने अपन को मिट्टी पलटवे बारे हर को उपयोग करना चाहिए और जुताई गहरी होनी चाहिए। लगभग भैया 6 से 8 इंच गहरी जुताई होना चाहिए, जब ही अपन को बाको फ़ायदा हो सकत है। तो अपने किसान भैया जा टाइम गहरी जुताई करें, जैसे भैया अपनी मिट्टी में जो कौन परेशानी है वो सब, जो गुली कीड़े मीड़े अंडे वो सब हैं ऊपर आ जाएंगे और वो नष्ट हो जाएंगे। और भैया जब बारिश होगी तो अपनी मिट्टी जो है जल को अच्छे से अवशोषित कर पाएगी। अब भैया अपन आगे तो और बात करेंगे, पहले सुन लें अपन जो बहुत ही बढ़िया एक

रहो 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहो 34 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता मतलब कि नमी रही 20% और हवा की गति रही 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो ये तो हती भैया आज के मौसम की जानकारी। और अब अपने कार्यक्रम का समय भी हो रहा है समाप्त, तो अपनी साधना बहन को दी इजाजत। राम राम, जय जवान।

0: सुर्खियों में।
1: सुर्खियों में
2: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
3: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
2: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
3: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है और 1 जुलाई से इस अधिनियम का कार्यान्वयन होने जा रहा है। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और ग्रामीण रोजगार और आजीविका के क्षेत्र में यह एक बहुत ही ऐतिहासिक पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ, क्योंकि इस गारंटी फ्रेमवर्क जो होता है रूरल एम्प्लॉयमेंट का, जिसमें पहले एमजी नरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार हमारे श्रमिक भाई बहनों को मिलता था जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अब वह गारंटी जो है वह 100 से बढ़कर जो है 125 होने जा रही है। सो 125 दिन का रोजगार हर एक वित्तीय वर्ष में इन ग्रामीण परिवारों को देने की गारंटी जो है, यह एक वैधानिक गारंटी है जो इस अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। दूसरे प्रावधान की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि हम कहते हैं कि गारंटी है, गारंटी का मतलब ही यह होता है कि अगर गारंटी फुलफिल नहीं होती तो कुछ दिया जाता है। तो इस अधिनियम में यह प्रावधान है कि अगर 15 दिन के अंदर किसी श्रमिक को काम मांगने पर अगर काम नहीं मिलता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा। अगर कोई श्रमिक भाई हमारा या बहन काम करती है तो 15 दिन के अंदर अंदर उनके बैंक के खाते में सीधे मजदूरी पहुंच जाएगी और यह वेजेस का जो रेट होगा, मतलब मजदूरी दर जो होगा, वह भी पहले एमजी नरेगा के अंदर जितनी मजदूरी मिलती थी उससे ज्यादा होने की संभावना है। कुछ ही दिनों में भारत सरकार मजदूरी दर भी नोटिफाई करने वाली है, तो बेहतर मजदूरी मिलेगी और बेहतर गारंटी मिलेगी। अब मैं आती हूँ दूसरे प्रावधान की ओर, जो कि लोगों के श्रम को एक सम्मान देगा और गांवों के विकास को जो है चालना देगा। आपको पता है कि एक्ट के नाम में ही विकसित भारत है, तो काम ऐसे होंगे जिससे कि पंचायतों का विकास हो। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स की बात इस एक्ट में कही गई है। कोई भी ऐसे अनप्रोडक्टिव काम नहीं लिए जाएंगे, ऐसे काम लिए जाएंगे जिससे कि ग्रामीण एरिया का विकास हो और ऐसे काम लिए जाएंगे जिसमें आजीविका के भी कई अवसर उससे पैदा हो। से फॉर एग्जाम्पल, अगर एक गाँव में कोई फूड प्रोसेसिंग का अगर कोई प्लांट लिया जाता है तो उससे और भी हमारे किसान भाई बहनों को आगे जाके आजीविका के अवसर उसे उपलब्ध हो सकते हैं। हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की दीदियां हैं, लखपति दीदियां बन रही है, उसमें से करोड़ों दीदियां, तो उनको भी आजीविका के कई साधन बनाने के लिए विकसित भारत जी राम जी के अंदर जो है वह काम लिए जा सकेंगे। 4 प्रकार के काम है मेनली। सबसे पहला, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं, जल है तो कल है, वाटर सिक्योरिटी के काम जो है हमारे गाँव में बहुत जरूरी होते हैं क्योंकि हमारा किसान भाई भी वहीं पर बसता है, तो जल सुरक्षा के काम हमारा का पहला क्षेत्र है। दूसरे काम जो होंगे वो कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे गाँव में अगर बुनियादी ढांचा रहेगा, बुनियादी अवसंरचना रहेगी, तभी हमारे किसान भाइयों को या फिर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इकोनॉमी को भी चालना मिल सकती है, इसलिए कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर यह एक इम्पोर्टेंट क्षेत्र है। लाइवलीहुड रिलेटेड, जिसकी मैंने हल्की से अभी बात की, कि आजीविका मूलक गतिविधियां कई सारी करने के लिए विकसित भारत जी राम जी के एक्ट में प्रावधान है। और चौथा जो है, आपने देखा होगा सोनू जी, कई बार यह हो रहा है, आजकल ज्यादा हो रहा है कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जिसे कहते हैं, प्राकृतिक आपदाएं फ्रिक्वेंटली जो है फेस करना पड़ रहा है देश को, तो एक्सट्रीम वेदर से निपटने के लिए भी जो काम जरूरी है वह काम भी इसमें जो है लिए जाएंगे। तो एक तरीके तरीके से मैं अगर इसे समप करना चाहूंगी तो विकसित भारत जी राम जी में श्रम भी है, उसका सम्मान भी है और उससे विकास की भी जो है एक इन्विसाज किया गया है। तो ऑल इन ऑल भारत देश के ग्रामीण एरिया के लिए विकसित भारत जी राम जी एक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक विकसित भारत बनने की ओर जाने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, ऐसा मैं मानती हूँ।
2: जी बिल्कुल, ये आउटकम ओरिएंटेड है ये स्कीम और ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा आप बता रही है चार प्रायोरिटी एरियाज में इससे विकसित होगा। एक और चीज जो है कि सेंटर ने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट रूल्स और उसमें उन्होंने पब्लिक फीडबैक मांगा है 30 जून तक की कोई भी सुझाव हो या कोई आपत्ति हो, तो ये भी एक बहुत ही डेमोक्रेटिक अप्रोच है सरकार का जिसमें वो सबको साथ लेकर चल रहे हैं।
3: बिल्कुल, जैसा कि प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हमें बॉटम अप मतलब गांव के लोगों को क्या चाहिए यह गांव के लोगों से हमें पता चलना चाहिए, इसलिए जो विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स भी बनेंगे वो भी ग्राम सभा ही बनाएगी। तो जो आपने नियमों के बारे में पूछा कि अभी हमने 22 तारीख को 8 ऐसे नियम जो बने हैं विकसित भारत जी राम जी के अंतर्गत, उन नियमों को हमने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए वाइडर कंसल्टेशन के लिए जो है पब्लिक डोमेन में डाला है और हमारे भारत देश के ई गैजेट में भी वो पब्लिश हो चुके हैं। इसके माध्यम से हम फीडबैक मांगना चाह रहे हैं लोगों से, प्रैक्टिशनर से, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल से, जो श्रमिक इसमें काम कर रहे हैं उन भाई बहनों से, जो हमारे ग्राम रोजगार सहायक जो है जो कि यह योजना चलाने वाले हैं उनसे। तो ये वाइडर या फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो, हमारे एकेडमिशियंस हो या फिर जितना भी वाइडर पब्लिक कंसल्टेशन इसमें हो सकता है वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। यह एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है टू इंश्योर कि ऑपरेशनलाइजेशन जो है वो बहुत ही स्मूथली हो जाए ताकि हमें अच्छे कंस्ट्रक्टिव सुधार इसमें मिल जाए। तो 30 दिन तक यह रूल्स जो है पब्लिक डोमेन में रहेंगे और हम आपके इस कार्यक्रम के द्वारा मैं सभी से अपील करूंगी कि इन रूल्स के ऊपर आपके जो भी सुझाव होंगे वो हमने वेबसाइट का एड्रेस भी दिया है और कई सारे बाकी मोड्स भी है जिससे कि आप हम तक पहुंच सकते हैं और आपके सुझाव हमें दे सकते हैं ताकि यह जो विकसित भारत जी राम जी है वो अपने एक होलिस्टिक रूप में लोगों के लिए बेहतर बने, यही हमारी इससे अपेक्षा है।
2: रोहिणी जी, बेहतर व्यवस्था की और सुचारू रूप से बदलाव हो और सभी जो मौजूदा कार्य चल रहे हैं वो विधिवत पूरे हो, रोजगार सृजन ट्रांजिशन पीरियड जो है खासकर जून में वो निरंतर बना रहे, इस पर भी बल दिया जा रहा है, किस तरह की वित्तीय व्यवस्था या अन्य व्यवस्था की गई है?
3: सोनू जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। जब भी कोई बड़ा बदलाव आता है जिसे रिफॉर्म हम कहते हैं और यह एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो इस बदलाव के टाइम, इस रिफॉर्म के टाइम यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है कि इसमें जो हमारे सबसे इम्पोर्टेंट हितधारक है जो कि हमारे श्रमिक भाई बहन है उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। जब ये ट्रांजिशन होता है, एमजी नरेगा यह स्कीम चल रही है पिछले ऑलमोस्ट 20 साल से, तो इन 20 साल का यह जो एक चल रहा है उसको जब हम एक नए तंत्र में ट्रांजिशन करते हैं तो यह भारत सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी तरह की दिक्कत या किसी भी तरह की छोटे से जिसे फ्रिक्शन पॉइंट कहते हैं ये बिल्कुल भी हमारे श्रमिक भाई बहनों को उनका सामना ना करना पड़े। इसीलिए एक सुचारू और एक निर्बाध तरीके का एक ट्रांजिशन का प्लान भारत सरकार ने बनाया है जिससे कि हमें इंश्योर कर रहे हैं कि जो श्रमिक आज, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी कि 30 जून तक एमजी नरेगा रहेगा, 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा। तो मैं एक एग्जांपल ये देना चाहूंगी कि जो हमारा श्रमिक भाई अगर 30 तारीख को एक कार्य पर जा रहा है और वह कार्य अपूर्ण है, वो आगे भी चलता रहेगा, तो वह श्रमिक दूसरे दिन भी 1 जुलाई को भी जब विकसित भारत जी राम जी आ जाएगा तब भी बिना किसी दिक्कत के एमजी नरेगा का वह जो उसका जॉब कार्ड अभी उसके पास है उसी का सत्यापन हमने और रखा है, तो उसी जॉब कार्ड को एक वैलिड डॉक्यूमेंट मानते हुए वह आगे भी कुछ दिनों तक विकसित भारत जी राम जी में निर्बाध तरीके से काम पा सकेगा। यह हमने केवल इसीलिए किया है, पीपल सेंट्रिक जो अप्रोच है प्रधानमंत्री जी का भी, सिटीजन सेंट्रिक, ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, तो हम ये चाहते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो जबकि ये ट्रांजिशन आए अंडर विकसित भारत जी राम जी। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों का ट्रांजिशन जो है वो भी स्मूथली मैनेज करने की कोशिश है, परंतु सबसे इम्पोर्टेंट है कि श्रमिक भाई को इस ट्रांजिशन में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसीलिए यह अपूर्ण काम भी जो है वो नए फ्रेमवर्क में माइग्रेट करके हम उसे जल्द ही पूरा करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को जो है बिल्कुल सुचारू रूप से निर्बाध तरीके से एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूअसली मिलती रहे, रोजगार कंटिन्यूअसली मिलता रहे
2: और जो लंबित देनदारियां हैं उनका भी निपटारा सुव्यवस्थित तरीके से हो जाए।
3: बिल्कुल सही बात कही, यह भी एक ट्रांजिशन का इम्पोर्टेंट पहलू है कि एमजी नरेगा में राज्यों की कुछ देनदारियां होती है जो कि कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, या ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने पिछले दशक में 10-12 साल में जो है 8-10 लाख करोड़ का खर्चा जो है एमजी नरेगा पर किया है और कोविड में भी 1,11,000 करोड़ से ऊपर की बहुत बड़ी धनराशि भारत सरकार ने राज्यों को और श्रमिकों के खाते में पहुंचाई है, तो यह कमिटमेंट भारत सरकार की इसमें भी बनी रहेगी कि एमजी नरेगा में जितनी देनदारियां हैं उनका भी सुचारू रूप से जो है सेटलमेंट किया जाएगा। और इस वर्ष विकसित भारत जीराम जी में अगर आप देखें सुनो जी, तो 95,692 करोड़ का एक बड़ा वित्तीय प्रावधान जो है विकसित भारत जीराम जी के लिए भारत सरकार ने किया है। तो इस 95,692 करोड़ दैट इज द बजट दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अलॉटेड, तो इस धनराशि का उपयोग भी जो है लोगों को 125 दिन के एनहांस गारंटी देने के लिए भी किया जाएगा।
2: जैसा आप कह रही थी कि किसानों को रूरल इकोनॉमी को बहुत फायदा होने वाला है, इसमें ट्रांसफॉर्मेटिव बदलाव है। एक जो पीक एग्रीकल्चर सीजन जो 60 दिन विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत काम नहीं होगा, इस एस्पेक्ट के बारे में थोड़ा बता सकती हैं?
3: सोनू जी, जब मैंने कहा कि हमारे किसान भाई ग्रामीण एरिया में ही बसते हैं और वहाँ वहीं के श्रमिकों को हम यह रोजगार 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं, तब यह देखना बहुत जरूरी था कि क्या इस एनहांस गारंटी की वजह से हमारे जो किसान भाई हैं, ऑलमोस्ट 86% जो हमारे किसान हैं वो लघु और सीमांत किसान हैं, जिन्हें स्मॉल एंड

0: सुर्खियों में
1: नमस्कार। सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी।

0: Giorgione.
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के मुख्य प्रावधानों और उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव रोहिणी आर भाजी भाकरे। रोहिणी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी में।
2: नमस्कार, थैंक यू सोनू जी।
1: रोहिणी जी, ये जो अधिनियम आया है विकसित भारत गारंटी रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025, ये अब क्रियान्वित होने जा रहा है 1 जुलाई से, सो इसके बारे में बहुत उत्साह है। आप हमें अगर बता सकें कि जो महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना थी उसकी जगह इसको लाया गया है, इसे एक बहुत बड़ा सुधार माना जा रहा है रोजगार आजीविका और ढांचे में, तो आप हमें बताएं कि इसके प्रमुख महत्वपूर्ण सुधारात्मक प्रावधान कौन से हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्रभावी कह सकते हैं कि जिनके कारण हमें सुधार देखने को मिलेंगे हमारे पूरे रूरल इकोनॉमी में, रूरल एम्प्लॉयमेंट इकोसिस्टम में।
2: सोनू जी, आपने बिल्कुल सही कहा, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे बहुत ही प्यार से विकसित भारत जी राम जी नाम से जाना जा रहा है, यह अधिनियम 11 मई को भारत सरकार ने नोटिफाई कर दिया है।
0: सुर्खियों में
1: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनू सूद और आज के कार्यक्रम में हम विकसित भारत जी।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब आप सुनेंगे कार्यक्रम डगर विकास की। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति है।
4: डगर विकास की, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम जल जीवन मिशन के कार्यों पर केंद्रित है। प्रस्तुति आकाशवाणी इंदौर की।

0: नमस्कार, आज हम उस अंचल की यात्रा पर हैं, जहां रेवा की लहरें संस्कृति की कहानी सुनाती है। इंदौर की आधुनिकता से लेकर उज्जैन के महाकाल लोक तक और बुरहानपुर के ऐतिहासिक दर्रों से लेकर खंडवा के किशोरदा की यादों तक आज एक ही चर्चा है। वो चर्चा है जल जीवन मिशन की, एक ऐसा मिशन जिसने मालवा की पथरीली जमीन और निमाड़ की तपती धरती पर ठंडे पानी की फुहार पहुंचा दी। ये केवल पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं, बल्कि करोड़ों सपनों में विश्वास का रंग भरने की कहानी है।
1: हर घर में नल लग गई है, साफ सुथरा पानी है, मशीन लगी है, उसके बाद दिक्कत खत्म हो गई।
2: अब ये यहाँ सुविधा होने से बहुत आनंद है गाँव में।
3: अभी तो अच्छी व्यवस्था होगी, अब नल चालू हो गए हैं ना।
4: अभी नल लगी है तो अच्छा सुचेत करिए सरकार।
5: जो टंकी से नल का पानी हो गया ना, बढ़िया हो गया,
6: नल लगी गया।
0: जब हम जल जीवन मिशन की बात करते हैं तो गौरव से सीना तब चौड़ा हो जाता है जब बुरहानपुर का नाम आता है। जुलाई सन 2022 में बुरहानपुर देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बना। यहाँ के 254 गांवों के सभी 1,01,000 से अधिक ग्रामीण घरों में अब नल से शुद्ध जल पहुँच रहा है। मलय श्रीवास्तव, अतिरिक्त मुख्य सचिव PHED मध्य प्रदेश।
7: मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले को माननीय राष्ट्रपति महोदया द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पूरे देश का सर्वप्रथम हर घर जल प्रमाणित होने का पुरस्कार दिया गया है। उसके लिए ना सिर्फ बुरहानपुर, पूरा मध्य प्रदेश काफ़ी प्रसन्न है, खुश है, क्योंकि हर घर जल प्रमाणित होना अर्थात बुरहानपुर जिले के पूरे 1,00,000 से अधिक ग्रामीण घरों में हमने शुद्ध जल टोटी के माध्यम से उपलब्ध कराया है। और ये पूरे प्रदेश के लिए इसलिए भी बहुत ही शुभ होगा और लोगों को मोटिवेट करेगा, क्योंकि ये हमारे राज्य के अन्य जिलों को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि आज बुरहानपुर को ये सम्मान मिला है, कल मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को भी ये सम्मान प्राप्त होगा।
0: बुरहानपुर के तत्कालीन कलेक्टर प्रवीण सिंह,
8: जब हमने ये काम शुरू किया था तब हम लोग लगभग 37,000 कनेक्शन बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और आज हमने जो जितनी भी पात्र जनसंख्या है जो JJM के मापदंड को पूरा करती है, लगभग 1,00,000 कनेक्शन ऐसे लोगों को दिए हैं। और बुरहानपुर की सबसे विशेषता ये है कि इन जल जीवन मिशन की योजनाओं को चलाने की जिम्मेदारी भी हमने ग्राम पंचायतों में महिला स्वयं सहायता समूह को दी है। इससे न केवल लोगों को पानी तो मिलेगा ही मिलेगा, बल्कि ये जल जीवन मिशन एक तरह से ग्राम पंचायतों में महिला सशक्तिकरण का जरिया भी बनेगा। और जल जीवन मिशन के साथ में हमने एक और महत्वपूर्ण भारत सरकार की स्कीम को जोड़ा है, वो है जल शक्ति मिशन। क्योंकि जल जीवन मिशन जो है वो जल शक्ति मिशन के बिना अधूरा है। जल शक्ति मिशन के तहत हम लोग जल जीवन मिशन के स्रोतों के चारों तरफ कुंडी, बावड़ियाँ, नए जल संरचनाओं का निर्माण, तालाब, पुरानी जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार, चेक डैम, स्टॉप डैम, गली प्लग और बहुत से जल संरक्षण की संस्थाओं पर काम कर रहे हैं। तो उससे ये जो जल शक्ति के तहत जो संस्थाएं बन रही है उससे जल जीवन मिशन का स्रोत में पानी बना रहेगा, और जब जल जीवन मिशन के स्रोत में पानी बना रहेगा तो उस पानी से हम गाँव में 12 महीने लोगों को पानी पिला पाएंगे। तो मेरा बुरहानपुर की जनता से अनुरोध रहेगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमको मिली है, पूरे देश में इसका नाम हुआ है, तो हम लोग पानी को सहज के रखें, धरती के अंदर पानी को वापस जाने दें, क्योंकि जितना पानी धरती माता में होगा उतना ही हम पानी वापस ले पाएंगे। तो हम लोग बहुत ही समझदारी से काम लेंगे और अच्छे से जल जीवन मिशन और जल शक्ति मिशन में काम करेंगे।
0: लेकिन ये सफर आसान नहीं था। धार और अलीराजपुर की पहाड़ियों पर जहाँ रास्ता बनाना भी एक चुनौती थी, वहाँ पानी चढ़ाना नामुमकिन लगता था। यहाँ काम आए हमारे इंजीनियर्स और सोलर तकनीक। शुद्ध जल का अर्थ है बीमारियों से मुक्ति। आंकड़े बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में नल से जल पहुंचा है वहां जल जनित रोगों में 40% तक की कमी आई है। डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, खंडवा।
9: पानी केवल जीवन नहीं बल्कि हर माँ की चिंता, हर बच्चे की मुस्कान और हर परिवार की सेहत से जुड़ी सबसे बड़ी जरूरत है। एक समय था जब गाँव की पगडंडियों पर सिर पर मटके उठाए महिलाएं दूर दूर तक पानी लेने जाती थी। कई बार वही पानी बीमारियों का कारण बन जाता था, लेकिन अब घर घर पहुंचा स्वच्छ जल केवल प्यास नहीं बुझा रहा बल्कि स्वस्थ और खुशहाल जीवन की नई उम्मीद भी जगा रहा है। स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है स्वच्छ जल। वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में लोग कुओं, तालाबों और हैंडपंपों पर निर्भर रहे, जहां कई बार दूषित पानी के कारण डायरिया, टाइफाइड, पीलिया और हैजा जैसी बीमारियां फैलती थी। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी को नल से जल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन की घोषणा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ पेयजल पहुंचाना है, अर्थात हर घर जल। अब जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल योजना ने इस स्थिति में बड़ा बदलाव लाना शुरू कर दिया है। घर घर नल से स्वच्छ पेयजल पहुंचने का सबसे बड़ा लाभ लोगों के स्वास्थ्य पर दिखाई दे रहा है। साफ पानी मिलने से जल जनित रोगों में कमी आई है, विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार देखा जा रहा है। पहले महिलाओं और बच्चियों को दूर दूर तक पानी लेने जाना पड़ता था, जिससे उनका समय और ऊर्जा दोनों खर्च होते थे। अब यह समय शिक्षा, रोजगार और परिवार की देखभाल में उपयोगी हो रहा है। श्रोताओं, स्वच्छ जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि स्वस्थ समाज की नींव है। जब पानी साफ होता है तो भोजन स्वच्छ बनता है, हाथ धोने और साफ सफाई की आदतें बढ़ती हैं तथा संक्रमण का खतरा कम होता है। मिशन की शुरुआत के बाद से ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में खंडवा जिले में जल जनित बीमारियां जैसे एक्यूट डायरियल डिसीज, टाइफाइड और कॉलरा या हैजा केसों की संख्या में बहुत बड़ी कमी दर्ज की गई है। एक्यूट डायरियल डिसीज के आउटब्रेक 2019 के पहले काफी संख्या में हुआ करते थे, जिसमें की लगभग 60% की कमी दर्ज की गई है। इसके साथ में जो जॉइंटिस और टाइफाइड बीमारियां हैं, इनके आउटब्रेक वर्ष 2019 के बाद से जिले में एक भी आउटब्रेक रिपोर्ट नहीं किया गया है और पिछले 2 वर्षों में कॉलरा या हैजा बीमारी का भी एक भी आउटब्रेक जिले में रिपोर्टेड नहीं है। इस प्रकार स्वच्छ जल उपलब्ध होने से जल जनित बीमारियों की संख्या और उनके आउटब्रेक में बड़ी कमी देखी गई है। नल से जल योजना सामाजिक और आर्थिक विकास का भी माध्यम बन रही है। स्वस्थ नागरिक ही मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम पानी की बर्बादी रोकें, जल स्रोतों को स्वच्छ रखें और इस योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी निभाएं। स्वच्छ पानी की हर बूंद अब केवल सुविधा नहीं बल्कि बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य का संदेश बन चुकी है। जब घर के आंगन में नल से साफ जल बहता है, तब बच्चों की मुस्कान, माताओं की राहत और परिवार की खुशहाली भी साथ बहती है। आइए जल को सहेजें, स्वच्छता अपनाएं और स्वस्थ भारत के इस सपने को मिलकर साकार करें।
0: जल जीवन मिशन ने महिला सशक्तिकरण को एक नया आयाम दिया है। उज्जैन संभाग में हजारों जल सखियां आज इस मिशन की रीढ़ है।
6: सरकार तरफ से नल जल की योजना आई है तो अपने सभी ग्रामवासियों को सभी को साथ देना है और सभी का साथ चाहिए
10: कि हमारे वार्ड क्रमांक 1 में जो हमारे को जल कर वसूलना था उसमें से वार्ड क्रमांक 1 के 1200 रुपये आ गए हैं, वार्ड क्रमांक 2 में 790 रुपये आ चुके हैं और वार्ड क्रमांक 3 में 2780 रुपये आ गए।
11: सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जल कर अपने को जमा करना है जिससे अपनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। उनकी जो समस्या है उसके विषय में भी जो वो बताते हैं, उसके निदान के लिए हम जलकर समिति को अवगत कराते हैं। जलकर समिति और हम साथ में जाकर के पानी के वेस्टेज नहीं जाने दें, इसके विषय में भी हम सभी बहनों को भी समझाते हैं, सभी भाइयों को भी समझाते हैं, पानी की बचत करना है, पानी का दुरुपयोग नहीं होने देना है, नल अगर पानी भर जाए तो बंद कर देना है, ऐसी समझाइश भी देते हैं जलकर समिति द्वारा।
12: जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिन भी गाँव में ये दिक्कत आ रही है, पहले से टंकी है या वाटर सप्लाई है और वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के कारण अगर पानी पीने में समस्या आ रही है, पानी घर घर पहुँचने में समस्या आ रही है, तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत एक नई टंकी का निर्माण करेंगे यहाँ पर।

0: इंदौर और उज्जैन संभाग के हर घर से आती पानी की ये कलकल दरअसल आत्मनिर्भर भारत की धड़कन है। जहां कभी सूखे के कारण पलायन होता था, आज वहां हरियाली और मुस्कान है।
1: पहले हम कुएं से पानी पीते थे, पेट दर्द होने लग जाता था, बीमार होने लगते थे हम। नल जल का शुद्ध पानी पीने लग गए हैं, अब डॉक्टरी खर्च भी हमारा आधा हो गया है।
2: मजदूरी पहला सर जवाब तो भी नहीं था, पानी में दिन भर हो जाते, हमारे टाइम बहुत व्यस्त हो जाता पहले। और अब पानी वही गयो तो नल चालू करो, पानी भरियो और मजदूरी भी चले जाओ।
3: जब से घर घर नल से जल आ रहा है, तब से बहुत ही खुशहाली आ गई है और पूरा परिवार मजदूरी पे जा पाता है और शुद्ध पानी मिल रहा है, स्वास्थ्य भी अच्छा है।
0: इस मिशन का लक्ष्य था हर घर जल, जिसे मध्य प्रदेश के इन जिलों ने एक जन आंदोलन बना दिया। पर याद रखिए, ये नल की टोंटी से गिरता पानी केवल एक सुविधा नहीं, एक अमानत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ी के लिए बचाना है। प्रशासन ने रास्ता बनाया है, अब उस रास्ते पर जल संरक्षण के साथ चलना हमारा कर्तव्य है। विकास के ये रंग यूं ही खिलते रहे, अमृत की ये धारा यूं ही बहती रहे। आज की इस विशेष कार्यक्रम डगर विकास की में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए सफर पर। तब तक सुनते रहिए आकाशवाणी और सहजते रहिए जीवन की सबसे अनमोल बूंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम डगर विकास की। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति था। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। इस समय रात के 8:30 हुए हैं। आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत।

मुकेश और आशा भोसले की आवाजों में अभी आपने आनंद बख्शी का लिखा गीत सुना। धुन बनाई थी राजेश रोशन ने और फिल्म का नाम था तुम्हारी कसम। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाती हैं देवता फिल्म से। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें हैं। गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन।

0: के साथ मैं जया भारती। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल में फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को संदिग्ध अवैध प्रवासियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के थट्टे हक्कालू नदी में तेज बहाव के कारण 8 लोग डूबे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। अगले 7 दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी। और वियतनाम में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, गतिशीलता तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनके अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने राष्ट्रहित और इन देशों के साथ संबंधों का संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता तथा भारतीय समुदाय के कल्याण के साथ साथ ईंधन की कम कीमतें चाहता है।
1: हम इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते हैं। दूसरा, हमारे लिए प्रवासी समुदाय का कल्याण और भलाई बहुत आवश्यक है। तीसरा, हम चाहते हैं कि ईंधन की कीमतें कम हों क्योंकि हम इसके बहुत बड़े आयातक हैं और इसका अधिकतर हिस्सा इसी क्षेत्र से आता है।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
2: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के 2 सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
0: बाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच मुख्य रूप से रक्षा, सुरक्षा और रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग पर चर्चा हुई। अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। बैठक 26 मई को होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सी मोतेगी भी भाग लेंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार शंभुनाथ कुर्मी को बड़े अंतर से हराया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: तृणमूल कांग्रेस के तथाकथित डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने फलता विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। देवांशु पांडा को 1,49,666 वोट मिले। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान केवल 7,783 वोट के साथ चौथे स्थान पर रहे। कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। इस चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। इस जीत के साथ विधानसभा की 294 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की

0: सीटों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देश में अधिकारियों को भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और रोहिंग्याओं के निर्वासन तथा स्वदेश वापसी प्रक्रियाओं के संबंध में गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य पुलिस अधिकारियों को अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को अदालत में पेश करने के बजाय सीधे सीमा सुरक्षा बल को सौंपने का निर्देश दिया था। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सीमा सुरक्षा बल को 27 किलोमीटर भूमि सौंपने के बाद सिलीगुड़ी उपमंडल के फांसी देवा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ का काम भी शुरू हो गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय CBSE के परीक्षा परिणाम सेवा पोर्टल के संबंध में विद्यार्थियों और अभिभावकों की चिंताओं और समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों IIT के विशेषज्ञ दल प्रणाली में तकनीकी सुधार लागू करेंगे और विशेष रूप से पोर्टल की स्थिरता तथा सर्वर के सुचारू संचालन की जाँच करेंगे। इस बीच शिक्षा मंत्री ने आज वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारामन से मुलाकात की और CBSE परिणाम और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान तकनीकी और भुगतान से संबंधित चुनौतियों के बारे में बातचीत की। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि विचार विमर्श के दौरान यह तय किया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, बड़ौदा बैंक, कैनरा बैंक और इंडियन बैंक CBSE की भुगतान प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद करेंगे। श्री प्रधान ने CBSE को अपनी भुगतान प्रणाली में पूरी तरह बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने आज सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। UPSC ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। UPSC के अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने परीक्षा में के सफल आयोजन के लिए UPSC टीम के साथ साथ राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के प्रयासों की सराहना की है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की 4 सदस्यों की मेडिकल टीम ने आज भोपाल में पूर्व मॉडल और अभिनेत्री ट्विशा शर्मा के कथित दहेज हत्या मामले में दूसरा पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 3 घंटे तक चला। कानूनी

औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया। 33 वर्षीय ट्रिशा की 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इस बीच सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में एक पीठ कल इस मामले की सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी इस मामले की जाँच सीबीआई को सौंपने पर सहमति व्यक्त की है। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालू नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए, इनमें 7 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे, लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के निकटतम परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। अगले 7 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी भीषण लू का प्रकोप जारी है। वहीं मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई इलाके इस समय भीषण लू की चपेट में हैं।
2: प्रदेश के ज्यादातर शहरों में पारा 43 डिग्री सेल्सियस के पार जा चुका है। मौसम विभाग ने आज टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तेज लू का रेड अलर्ट जारी किया था। विभाग ने दतिया, निवाड़ी, सागर समेत 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन समेत 22 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया। प्रदेश के कुल 37 जिले हीट वेव की जद में रहे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 दिनों तक गर्मी और लू से कोई राहत नहीं मिलेगी। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर आकाशवाणी अपनी श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहा है। इन एपिसोड में हम प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेताओं के कार्यों और जीवन के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कार्यक्रम के लिए कल सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड से जुड़े रहें। वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। पुरुषों के ग्रीको रोमन वर्ग में सुमित दलाल ने 63 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में उजुदबेक खालिम्बेक को हराया और 55 किलोग्राम में नीरज पटेल ने, वहीं रोहित बोरा ने 87 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। IPL क्रिकेट में राजस्थान रॉयल्स ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। मुंबई में आज हुए मुकाबले में राजस्थान ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। इस बीच कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अंतिम लीग मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 150 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और अमेरिका ने नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय वार्ता में व्यापार समझौते, ऊर्जा सुरक्षा और गतिशीलता को सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों के रूप में महत्वपूर्ण बताया। पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा पुनर्मतदान में भाजपा उम्मीदवार देवांशु पांडा ने 1 लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की। सरकार ने CBSE पुनर्मूल्यांकन पोर्टल की खामियों को दूर करने के लिए IIT मद्रास और कानपुर के विशेषज्ञों को शामिल किया। देश के मध्य और उत्तर पश्चिमी भागों में भीषण लू के कारण जनजीवन प्रभावित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग।

0: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमद और रफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। टीएमसी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो मुशतबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में वसी मौजूदात पर बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने भारत अमरीका दिफाई शराकतदारी की ताकत का एक बार फिर जिक्र किया और तिजारत, तवानाई, नखलो हमल, नेज इलाकाई सलामती समेत तआवुन के अहम मैदानों का खाका पेश किया। वफ्द की सतह की बातचीत के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जल्द अज जल्द एक तजारती मुआहदे की तकमील की जरूरत को उजागर किया। तवानाई की तिजारत में तोसी का खैर मकदम किया और जोर देकर कहा कि मुख्तलिफ किस्म की तवानाई सप्लाई भारत में तवानाई की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए अहम है। ईरान के साथ तनाजे के बारे में जनाब जयशंकर ने कहा कि भारत और अक़्वामे मुत्तहिदा को इस बात को यकीनी बनाने में काफी दिलचस्पी है कि तवानाई की आलमी कीमतें कम रहें। उन्होंने मुज़ाकरात, सिफारती कोशिशों, महफूज और बिला रुकावट समंदरी तजारत के हक में भारत के मौकिफ को भी एक बार फिर दोहराया। उन्होंने ये भी इशारा दिया कि भारत दुनिया के उन चंद मुल्कों में से एक है जिसके ताल्लुकात अमरीका, इसराइल, ईरान नेज दिगर खलीजी मुल्कों के साथ मजबूत हैं। उन्होंने ये बात दोहराई कि भारत खित्ते में अमन इस्तेहकाम, बैरून मुल्क भारतीय बिरादरी की फलाह और तवानाई की कीमतों में कमी चाहता है। डॉक्टर जयशंकर ने अवाम से अवाम के दरमियान रिश्तों को उजागर किया और कहा कि कानूनी तौर पर की जाने वाली आमदोरफ्त पर कोई मनफी असर नहीं पड़ना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने शराकतदारी के दिफाई पहलुओं की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने भारत को दुनिया में अमरीका के सबसे अहम शराकतदारों में से एक करार दिया। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और अमरीका उन सभी अहम मामलों पर दिफाई तौर पर मुत्तफिक हैं जिनसे नई सदी की वजाहत होती है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों मुल्कों ने दहशतगर्दी के नतायज बर्दाश्त किए हैं। उन्होंने ये बात भी जोर देकर कही कि अमरीका ने दुनिया में किसी भी मुल्क के साथ ताल्लुकात भारत के साथ उसके दिफाई इत्तेहाद की कीमत पर नहीं किए हैं। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो क्वाड वजराय खारजा की मीटिंग में शिरकत के लिए कल भारत के 4 रोजा दौरे पर आए हैं। ये मीटिंग इस महीने की 26 तारीख को होगी। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में अमरीकी वजीर खारजा और कौमी सलामती के मुशीर मार्को रूबियो से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजारत खारजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में दिफा, सलामती और दिफाई टेक्नोलॉजी के शोबों में तआवुन पर तवज्जो मरकूज की गई जिनमें ट्रस्ट पहल भी शामिल है। वजारत ने मजीद बताया कि कौमी सलामती के दोनों मुशीरों ने दो तरफा जामे आलमी दिफाई शराकतदारी के मुताबिक आला तरजीहात का एक बार फिर जिक्र किया। उन्होंने मकामी और आलमी मामलात पर भी तबादला ख्याल किया। मगरबी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिवानशु पांडा ने फाल्टा असेंबली सीट के लिए दोबारा हुई पोलिंग में जबरदस्त जीत हासिल की है। जनाब पांडा ने 1,09,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। ये सीट तृणमूल कांग्रेस का अहम गढ़ तस्वुर की जाती है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान वोटिंग में बड़े पैमाने पर मुबैना धांधली के वाकयात के बाद 21 मई को दोबारा पोलिंग कराई गई। फाल्टा सीट जीतने के बाद 294 नशिस्तों वाली असेंबली में बीजेपी के अराकीन की तादाद 208 हो गई है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: तृणमूल कांग्रेस के मुबैना डायमंड हार्बर मॉडल को तोड़ते हुए बीजेपी ने आज फाल्टा असेंबली सीट पर दोबारा कराई गई पोलिंग में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पार्टी के उम्मीदवार दिवांशु पांडा ने अपने करीबी हरीफ सी

0: सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,000 से ज्यादा वोटों के भारी फर्क से हराकर ये सीट जीत ली। शंभुनाथ कुर्मी को 40,645 वोट मिले जबकि दिवांशु पांडा को 1,49,666 वोट हासिल हुए। तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान 7,783 वोट पाकर चौथे मकाम पर रहे। उनकी जमानत जब्त हो गई जबकि कांग्रेस तीसरे मकाम पर रही। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बे।
1: मगरबी बंगाल हुकूमत ने सभी जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो उन मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्कियों नेज गैर मुल्की कैदियों के लिए हिरासती मरकज कायम करें जिन्हें वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक जिला वतन किया जाना है या उनके वतन वापस भेजा जाना है। दाखिली और पहाड़ी अमूर के महकमे की तरफ से जारी एक सरकारी ऐलामिया के मुताबिक जिलों से कहा गया है कि वो उन अफराद को उन मरकजों में भेजने के लिए जरूरी इकदाम करें जिनकी शनाख्त मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों की हैसियत से की गई है। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिनकी कैद की मुद्दत पूरी हो गई है और उन्हें जिला वतन किया जाना है। हिदायतनामे में हुक्काम से कहा गया है कि वो उन बांग्लादेशी शहरियों और रोहिंग्या अफराद को जिला वतन करने और उनके वतन वापस भेजने के लिए वजारत दाखिला के तरीके कार के मुताबिक कार्रवाई करें जो भारत में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इम्तिहान के पर्चों को दोबारा जांचने के अमल की खामियों को दूर करने के लिए CBSE की मदद की गरज से IIT मद्रास और IIT कानपुर के प्रोफेसर्स और तकनीकी माहिरीन की एक टीम तैनात करने की हिदायत दी है। यह फैसला CBSE के नतायज के बाद की खिदमात से मुतालिक पोर्टल के बारे में तलबा और वालिदैन की तरफ से जाहिर की गई तशवीश के पेश नज़र किया गया है। तालीम की वजारत ने एक बयान में कहा है कि IITs के माहिरीन की टीम निज़ाम में तकनीकी बेहतरी लाने नेज खास तौर पर इम्तिहान के पोर्टल के इस्तेहकाम और सर्वर की कारकर्दगी को तकनीकी तौर पर बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के नतायज और दोबारा जांच के अमल के दौरान तलबा के सामने पेश आने वाले तकनीकी और अदायगी से मुतल्लिक मसाइल पर मालियात और कॉरपोरेट उमूर की वजीर निर्मला सीतारमन से आज बातचीत की। वजारत तालीम ने कहा कि बातचीत के दौरान यह फैसला किया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक और इंडियन बैंक अदायगी के बुनियादी ढांचे और इम्तिहान के बाद की खिदमात से मुतल्लिक पोर्टल के साथ जरूरी इंजमाम में CBSE की मदद करेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। गर्मी की शिद्दत ने वस्ती और शुमाल मगरबी भारत के बड़े हिस्से में मामूलात जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। कई इलाके खुश्क हवाओं और शदीद गर्मी का सामना कर रहे हैं जिससे लोग दोपहर के औकात में घर के अंदर रहने पर मजबूर हो गए हैं। कौमी राजधानी दिल्ली भी शदीद गर्मी की जद में है। आज कौमी राजधानी खित्ते के बेशतर इलाकों में दर्जे हरारत 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड की गई। महकमे मौसमियात ने कल उत्तर प्रदेश, मशरकी मध्य प्रदेश और विदर्भ खित्ते में शदीद गर्मी की पेशगोई की है जबकि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बंगाल के हिमालयी इलाके, आसाम और मेघालय में कल शदीद बारिश की पेशगोई की गई है। मध्य प्रदेश शदीद गर्मी की लपेट में है। पूरी रियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और कई शहरों में दर्जे हरारत 43 डिग्री से तजावुज कर गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मध्य प्रदेश को इस वक्त शदीद गर्मी का सामना है। बेशतर शहरों में दर्जे हरारत 43 डिग्री सेल्सियस से तजावुज कर गया है। आज महकमा मौसमियात ने 4 अजला टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना के लिए शदीद गर्मी की वजह से रेड अलर्ट जारी किया है। ततैया, नेवाड़ा और सागर समेत 11 अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन समेत 22 अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस तरह रियासत के 37 अजला गर्मी की शिद्दत से जूझ रहे हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम अगले 4 रोज तक शदीद गर्मी से राहत का कोई इम्कान नहीं है। लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो दोपहर के वक्त बाहर निकलने से गुरेज करें, बहुत ज्यादा पानी पिएं, नीज बच्चों और बुजुर्गों को खसूसी निगहदाश्त में रखा जाए। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
1: महाराष्ट्र में अमरावती, वर्धा और चंद्रपुर जिलों में शदीद गर्मी के पेश नजर मंगल तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस मुद्दत के दौरान अकोला, नागपुर और गढ़चिरौली जिलों के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कर्नाटक के एक कुनबे के 8 अफराद जिनमें 7 खवातीन थीं आज उत्तर कन्नड़ा जिले के थट्टे हक्कालू दरिया में डूब गए। ये लोग ताजा पानी की सीपियां चुन रहे थे कि तेज हवा की वजह से बहकर दरिया में चले गए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने करना

0: कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ा जिले में डूबने से हुए जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। वजीर आजम ने इस हादसे में मरने वालों के कुनबों के तहत ताजियत का इजहार किया है और मुतासरीन की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की है। जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली की एक 4 रुकनी मेडिकल टीम ने भोपाल में मॉडल से अदाकारा का पेशा अख्तियार करने वाली त्रिशा शर्मा का दूसरी बार पोस्टमार्टम किया। ये पोस्टमार्टम सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दौरान तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहा। कानूनी तरीक़ेकार मुकम्मल करने के बाद ट्रिशा का जस्ते खाकी उनके कुनबे के सुपुर्द कर दिया गया और उनकी आखिरी रसूम भोपाल में भदभदा क्रिमेशन में अदा की जाएंगी। 33 साल ट्रिशा की मौत भोपाल में उनके मायके में हो गई थी और उनके कुनबे ने उनके ससुराल वालों पर जहेज के लिए हरासा करने ने उन्हें खुदकुशी पर उकसाने के इल्जाम आयद किए हैं। पुलिस ने ट्रिशा के शौहर समर्थ सिंह के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है जो खुद वकील हैं। उनकी सास गिरिबाला सिंह साबिक जिला जज हैं। उन पर भी जहेज के लिए हिरासा किए जाने के इल्जाम हैं। बहरीन की एक अदालत ने 9 लोगों को उम्र कैद और दीगर 2 अफराद को 3 साल की जेल की सजा सुनाई है। इन अफराद पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से मुआवनत करने का इल्जाम था जिसे हुक्काम ने मुल्क के खिलाफ साजिश और एक दहशतगर्दाना अमल करार दिया था। बहरीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक ये अफराद हसास मकामात के बारे में मालूमात जमा करने और उससे मुतालिक पैसों के लेन देन में मदद करने में शामिल थे। बहरीन की वजारत दाखिला ने इस माह की 9 तारीख को बताया था कि उसने ऐसे 41 अफराद को गिरफ्तार किया है जिनके मुबैना तौर पर ईरान के सिपाही पासदारा ने इनकलाब इस्लामी से रवाबित थे। 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की पहलवानों ने अपनी उम्दा कारकर्दगी जारी रखते हुए आज वियतनाम के शहर डानांग में सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे जीते। खवातीन के फ्री स्टाइल मुकाबलों में मानसिला थेरा और काजल ढोजक ने सोने के तमगे, स्वीटी और नेहा सागवान ने चांदी के तमगे, जबकि अहिल्या शिंदे ने कांसे का तमगा जीता। मर्दों के ग्रेग रोमन जुमरे में सुमित दलाल ने सोने का तमगा जीता, जबकि नीरज पटेल और रोहित बोहरा ने कांसे का तमगा अपने नाम किया। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में आज एक रेल लाइन पर ताकतवर धमाका होने से कम 24 अफराद की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी हुए। ये धमाका राजधानी क्वेटा में चमन फाटक रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। इस धमाके में एक रेलगाड़ी को जुजवी नुकसान पहुंचा, जबकि इलाके में खड़ी हुई 10 मोटर गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। इस वाकये के बाद पूरे क्वेटा शहर के सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है और सूरत हाल से निपटने के लिए डॉक्टरों और तिब्बी अमले को तलब किया गया है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक इस धमाके के बाद एहतियाती इकदाम के तौर पर पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को क्वेटा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के नजदीक गोलियां चलने के वाकये के बाद तेजी के साथ कार्रवाई करने पर कानून नाफिज करने वाले हुक्काम और खुफिया सर्विस के अहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर ट्रंप ने कहा कि मुश्तबा शख्स की पुरतशद्दुद तारीख रही है और ये वाकया वाशिंगटन में सिक्योरिटी से वाबस्ता गोलीबारी के एक और हालिया वाकये के चंद रोज बाद पेश आया है। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में आला सतह की बातचीत में तजारती मुआहदे, तवानाई की यकीनी फराहमी और एक दूसरे के यहाँ आमदोरफ्त को तआवुन के अहम शोबों के तौर पर गर्दाना है। बीजेपी उम्मीदवार दिग्वांशु पांडा ने मगरबी बंगाल के फाल्टा असेंबली हलके के लिए दोबारा कराई गई पोलिंग में 1 लाख से ज्यादा वोटों से जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। TMC उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है। मगरबी बंगाल सरकार ने सभी जिला मजिस्ट्रेट को हिदायत की है कि वो मुश्तबा गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के लिए हिरासती मराकज कायम करें। हुकूमत ने CBSE के पर्चे दोबारा जांचने से मुतल्लिक पोर्टल की खामियां दूर करने के लिए IIT मद्रास और IIT कानपुर के माहरीन की खिदमात हासिल की हैं। वस्ती और शुमाल मगरबी भारत में शदीद गर्मी के सबब मामूल की जिंदगी मुतासर हुई है। अगले 7 दिन तक यही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है और वियतनाम में 23 साल तक की उम्र वाली एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने सोने के 3, चांदी के 2 और कांसे के 3 तमगे हासिल किए। इसी के साथ खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। इस समय रात के 9:30 हुए हैं। अब से लेकर 10 बजे तक हम आपको सुनवाते हैं फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने दिल एक मंदिर फिल्म का गाना सुना। शैलेंद्र के बोल थे शंकर जयकिशन की धुन। और इसे सुनने के लिए पत्र आप सभी ने लिखे। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु और तासु, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश मिस्त्री। इसी गीत को पसंद किया था राजा रामनगर देवास से राजू अग्रवाल, शांति महाजन और मुकेश महाजन ने। उपाध्याय नगर देवास से

मुरारी लाल वर्मा, मनीष वर्मा और कमल निगम। कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, जिसे हमने लिया है साहिब बीवी और गुलाम फिल्म से। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ें हैं, शकील बदायूनी के बोल, हेमंत कुमार की धुन और फरमाइश आप सभी की। जयराज प्लॉट राजकोट से मधुसूदन भट्ट, आरती पूजा जास्मीन और प्रयागराज भट्ट। लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्रा। और इसके साथ ही सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सालिया, शोएब खान। गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर और वैशाली कटनकर। आप सभी सुनिए आशा भोसले की आवाज़ में साहिब बीवी और गुलाम फिल्म का ये

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अभी आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम का अगला नगमा इन सभी श्रोताओं की पसंद पर पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी गगनदीप बेबी आरजू जाजोरिया, सारणी जिला बैतूल से अमित खातरकर, निहारिका शिवपाल यादव, अनामिका अमंतिका शिवालिका पारसमणि बाघ पंजाब राव निम्बालकर और संदीप पाटिल। इसके साथ ही दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, हिरिंगनी से दिनेश वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और मावली सिंगालपुर से सालिक पुजारी। आप सभी की फरमाइश पर हम पेश कर रहे हैं दिले नादान फिल्म का नगमा, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ों में। नक्श लाइलपुरी के बोल हैं और संगीत खयाम का।

कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाते हैं इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीति, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया। सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारिणी, सूरज, ज्योति और बाबू रेयांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा। आप सभी ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और आशा भोसले की मिलीजुली आवाज़ों में उत्सव फिल्म का गाना, वसंत देव के बोल और धुन लक्ष्मीकांत प्यारे।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंत में हम सुनवा रहे हैं दिल्ली का ठग फिल्म का गाना, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ों में। SH बिहारी के बोल हैं और संगीतकार हैं रवि। गीत को सुनना चाहते हैं गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयनंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप और राशि राजेश। प्रभाकर जोंधले, आरती जोंधले, आप हैं गौतम नगर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से। और नेपाल पैलेस सागर के हमारे श्रोता हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रोबिन। आप सभी की फरमाइश पर पेश है आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में दिल्ली का ठग फिल्म का ये गाना।

दिल्ली का ठग फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

ये प्रसारण आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश से। रात के 10 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में अगला प्रसारण हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे। कृपया अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रस्तुत है सितार वादन। कलाकार हैं पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। जाने माने संगीतज्ञों वाले विशिष्ट परिवार में जन्मे पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के दादा श्री लाल मोहन भट्टाचार्य जाने माने सितार वादक थे, जिन्होंने इस सांगीतिक विरासत की नींव रखी। अपने पिता श्री गंगा शंकर भट्टाचार्य के मार्गदर्शन में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य ने शुरुआती तालीम हासिल की। आगे चलकर आपको विष्णुपुर घराना के श्री मुरलीधर ठाकुर से सीखने का सुअवसर भी प्राप्त हुआ। 1968 में पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य उस समय के बंबई यानी मुंबई रवाना हुए। आपने वहां बीनकार शैली के लिए प्रसिद्ध इंदौर घराने के प्रवाद प्रतिम सितार वादक पद्म भूषण उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान से सितार वादन सीखना आरंभ किया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के शीर्ष श्रेणी के कलाकार पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य की जाफर खानी बाज के तौर पर एक विशिष्ट पहचान है। आपने देश और विदेश के तमाम संगीत समारोहों में अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां दी हैं। पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR के सूचीबद्ध कलाकार हैं। साथ ही आपको अनगिनत पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। यही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा आयोजित अपना उत्सव समारोह में आपने संगीत निर्देशक की भूमिका भी निभाई है। आज रात पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य के साथ तबले पर संगत करेंगे प्रशांतो दे रॉय।
1: इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा टुनाइट वी प्रेजेंट सितार रिसाइटल बाय पंडित हौरू शंकर भट्टाचार्य। बोर्न इन अ डिस्टिंग्विश्ड म्यूजिकल फैमिली ऑफ अकॉम्प्लिश्ड म्यूजिशियंस वेयर हिज ग्रैंडफादर द रिनाउंड सितारिया श्री लाल मोहन भट्टाचार्य इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन of this rich legacy, and Pandit Hauru Shankar Bhattacharya stepping into this world of music with initial training under the able guidance of his father Sri Ganga Shankar Bhattacharya. Further, he also received training from Sri Murali Das Thakur of the Bishnupur Gharana. Later in 1968, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya moved to Bombay, present day Mumbai, to undergo intensive talim under the legendary sitar maestro Padma Bhushan Ustad Abdul Halim Zafar Khan of the Indore Gharana, famous for his Beenkar style. A top grade sitar artist of Akashvani and Doordarshan, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya, with his unique artistic identity as a Zafar Khani Baj, has performed extensively at major classical music concerts and festivals across India and abroad. An empaneled artist of the Indian Council for Cultural Relations, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya has received several awards and accolades and has also contributed as a music director for Apna Utsav, a festival organized by the government of West Bengal. In tonight's presentation, Pandit Hauru Shankar Bhattacharya is accompanied on the tabla by Prashanto De Roy.
0: Pandit Hauru Shankar Bhatt दरबारी के साथ करेंगे। यह बंदिश आलाप और जोड़ के साथ शुरू होगी, जो गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात मध्य लय तीन ताल में आबद्ध है।
1: पंडित हर शंकर भट्टाचार्य स्टार्ट्स हिज सितार रिसाइटल विद राग दरबारी। बिगिनिंग विद आलाप एंड जोड़, द कंपोजिशन ऑफ द राग इज सेट टू गत इन विलंबित तीन ताल फॉलोड बाय मध्य लय तीन ताल।

0: सितार वादन के अंतर्गत आप पंडित हरशंकर भट्टाचार्य से राग दरबारी सुन रहे थे। आपकी अगली प्रस्तुति है राग छायानट, जो आप आलाप से शुरू करेंगे। यह बंदिश गत में विलंबित तीन ताल तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आबद्ध है।
1: You are listening to Rag Darbari on the sitar by Pandit Harishankar Bhattacharya. He continues with his presentation in Rag Chayanat, which begins in Alap with a composition set to Gat in Vilambit and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप राग छायानृत सुन रहे थे। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य आज की इस प्रस्तुति का समापन राग जिला काफी के साथ करेंगे। शुरुआत आलाप से होगी और यह बंदिश गत में दीप चंदी, तत्पश्चात द्रुत तीन ताल में आवत है।
1: यू आर लिसनिंग टू राग छायानृत इन द सितार रिसाइटल। Pandit Harishankar Bhattacharya concludes his presentation with Rag Zila Kafi. Beginning with Alap, the composition of the Rag is set to Gat in Deep Chandi and Drut Tintal.

0: सितार वादन के इस कार्यक्रम में आप पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य से राग जिला काफी सुन रहे थे। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे प्रशांत दे रॉय।
1: यू आर लिसनिंग टू राग जिला काफी इन द सितार रिसाइटल बाय पंडित हरो शंकर भट्टाचार्य। ही वॉज अकम्पनीड ऑन द तबला बाय प्रशांत दे रॉय।
0: इसी के साथ रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा आज रात यही संपन्न होती है।
1: एंड विद दिस वी एंड टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। दिस प्रोग्राम वाज रिकॉर्डेड एट द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 11 बजे आप सुनेंगे समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: ईरान संघर्ष पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जिनका अमेरिका, इसराइल, ईरान और अन्य खाड़ी देशों के साथ मजबूत रिश्ते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया।
3: जिन मुद्दों पर हम भारत के साथ मिलकर काम करते हैं उनकी व्यापकता और दायरा ही इस बात को दर्शाता है कि भारत दुनिया में हमारे सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारों में से एक है। इसकी शुरुआत हमारे साझा मूल्यों से होती है। हम दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 109,021 वोटों के अंतर से हराया जिन्हें 40,645 वोट मिले। पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार संदिग्ध अवैध प्रवासियों और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे विदेशी कैदियों के लिए हिरासत केंद्र स्थापित करने का निर्देश दिया है। सभी जिलों को देश में अवैध रूप से रह रहे व्यक्तियों, कारावास की सजा पूरी कर चुके और निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को वापस भेजने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई को त्रुटि रहित पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने में सहायता के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी मद्रास और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसरों और तकनीकी विशेषज्ञों का एक दल तैनात करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक पाठ्यक्रम के लिए सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 के अंतर्गत 28 मई को होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। एजेंसी ने बताया कि ये फैसला सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल जुहा, बकरी ईद की छुट्टी की तारीख में हुए बदलाव को देखते हुए लिया गया है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने आज सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा और भारतीय वन सेवा की प्रारंभिक परीक्षा 2026 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। आयोग ने बताया है कि ये परीक्षाएं देश के 83 शहरों में 2000 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई। अंतिम आंकड़ों के अनुसार 8 लाख से अधिक आवेदकों में से लगभग 5,49,000 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में आज थट्टे हक्कालु नदी में एक ही परिवार के 8 सदस्य डूब गए जिनमें 7 महिलाएं शामिल थे। पुलिस के अनुसार शिराली गांव के लगभग 14 लोग सीप इकट्ठा करने के लिए नदी में उतरे थे लेकिन रात्रि में तेज बारिश के बाद पानी के बहाव की चपेट में आ गए। उन्हें बचाने के लिए पानी में उतरे अन्य सदस्य भी तेज धारा में बह गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। देश के मौसम के मध्य और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर से देर शाम तक धूप से बचने और बच्चों, बुजुर्गों तथा पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोगों को विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar and U.S. Secretary of State Marco Rubio held wide-ranging discussions in New Delhi today. Both the leaders reaffirmed the strength of the India-U.S. strategic partnership and outlined key areas of cooperation, including trade, energy, mobility, and regional security. Addressing a press conference following delegation-level talks, Dr. Jaishankar highlighted the need to conclude a trade agreement at the earliest, welcomed the expansion in energy trade, and stressed that diversified energy supplies are vital for India's energy security.
5: Our government's fundamental responsibility is to address the needs of 1.4 billion people. Obviously, ensuring the accessibility and affordability of energy for them is our prime objective. Secretary and I therefore welcome the expansion in our energy trade in recent months. Diversified supplies are at the heart of energy security for India.
4: On the Iran conflict, Dr. Jaishankar said, both India and the United States have a strong interest in ensuring that global energy prices remain low and that there is unimpeded commerce. India's position in favor of dialogue and diplomacy, as well as safe and unimpeded maritime commerce, was also reiterated. The West Bengal government has directed all district magistrates to set up holding centers for suspected illegal foreigners and foreign prisoners awaiting deportation or repatriation in line with Ministry of Home Affairs, that is MHA, guidelines. According to an official communication issued by the Home and Health Affairs Department, districts have been asked to take necessary steps for housing individuals identified as staying illegally in the country, including those who have completed prison sentences and are awaiting deportation. Union Home Minister Amit Shah today said, government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, that is UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said, the UCC will not infringe upon any tribal rights. The National Testing Agency, that is NTA, today postponed the Common University Entrance Test undergraduate, that is CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha, that is Bakrid holiday, as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, that is CBSE, today extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for Class 12th board examinations by one more day until tomorrow. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. The board advised candidates to avail of this extended timeline and submit their applications accordingly. Union Education Minister Dharmendra Pradhan has given directions to depute a team of professors and technical experts from Indian Institute of Technology, that is IIT Madras and IIT Kanpur, to assist the Central Board of Secondary Education, CBSE, in ensuring a glitch-free re-evaluation process. The decision has been taken in view of the developments and concerns raised by students and parents regarding the CBSE post-result services portal. In Karnataka, 8 members of a family, including 7 women, drowned in the Thatte Hakalu River in Uttara Kannada district today. The mishap occurred when they were collecting freshwater mussels and were swept away by strong currents. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the incident. Mr. Modi announced an ex gratia of 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund for the next of kin of each deceased. Chief Minister Siddaramaiah also announced an ex gratia of 5 lakh rupees for the next of kin of each deceased. The India Meteorological Department, that is IMD, has forecast that severe heat wave conditions are likely to persist over central and northwest India for the next 7 days. The weather agency also issued a red alert for severe heat wave conditions over east Uttar Pradesh, east Madhya Pradesh and Vidarbha for tomorrow. At the Asian Under 23 Wrestling Championships, Indian grapplers continued their impressive run, securing 3 gold, 2 silver and 3 bronze medals in Vietnam's Da Nang today. And that is the end of this news bulletin.
6: ये आकाशवाणी भोपाल है, मीडियम वेव 188.32 मीटर, डीटीएच की ऑडियो चैनल, न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन और वेब्स ओटीटी ऐप पर। इस समय रात के 11:10 हुए हैं। हमारी आज की सभा समाप्त होती है। कल सुबह 5:53 पर आपकी सेवा में हम फिर उपस्थित होंगे।

हेमलता और यसुदास की आवाजों से सजा ये गीत चितचोर फिल्म से अभी आपने सुना। 1976 में ये फिल्म रिलीज हुई थी साथियों। रविंद्र जैन का गीत संगीत था।

0: बहुत ही सुंदर स्नेह भावों से सजा ये गीत अभी आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज, 1969 रिलीज फिल्म, सचिन देव बर्मन का संगीत और आनंद बख्शी की लिखी रचना, फिल्म का नाम आराधना।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।